मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज सोमवार है। राष्ट्रीय शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 20 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी इंदौर है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन तीन देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया, जिस आकाश ने हमें सपने दिए और जिस संस्कृति ने हमें मनुष्य बनाया, उसका स्मरण हमारा प्रथम कर्तव्य है। भारत केवल सीमाओं में बंधा राष्ट्र नहीं है, यह एक चेतना है, एक संस्कार है, एक निरंतर चलती साधना है। यह वह भूमि है जहां राष्ट्रभक्ति नारों में नहीं जीवन व्यवहार में बसती है, जहां सेवा पूजा है और त्याग गौरव। इसीलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत हम राष्ट्र वंदना से करते हैं, क्योंकि जब राष्ट्र हृदय में होता है तो जीवन स्वयं पवित्र हो जाता है।

सेवा कोई बड़ा कार्य नहीं, यह एक दृष्टि है। दूसरे के दुख को अपना मान लेने की क्षमता, जहाँ सेवा है वहीं ईश्वर है, और जहाँ करुणा है वहीं सच्ची भक्ति।

जीवन की हर राह सरल नहीं होती, कभी कभी अंधकार लंबा हो जाता है, पर विश्वास वह दीपक है जो बुझने नहीं देता। ईश्वर पर भरोसा मतलब यह नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि यह कि हम टूटेंगे नहीं।

श्रद्धा बिना अनुशासन की अधूरी है और अनुशासन बिना श्रद्धा के कठोर। जब दोनों साथ हों तो जीवन स्वयं साधना बन जाता है।

जब संकल्प शुद्ध होता है तो दिशा स्वयं स्पष्ट हो जाती है। भक्ति हमें सिखाती है कि संकल्प केवल मन से नहीं हृदय से लिए जाएं। जय जय।

0: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर। लीजिए अब सुनिए चिंतन। आलेख ऐश्वर्या भोसले का है और वाचक स्वर है अमृता विक्रम सिंह का।
1: संयम मनुष्य के जीवन का वह अनमोल गुण है जो उसे सही मार्ग पर चलना सिखाता है। जिस व्यक्ति के भीतर संयम होता है वह हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेता है। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल ज्ञान या शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती बल्कि अपने मन वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। यही नियंत्रण संयम कहलाता है। आज के समय में मनुष्य के पास सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना, बिना सोचे बोल देना, लालच में आकर गलत कार्य करना, ये सब असंयम के उदाहरण हैं। संयम हमें सिखाता है कि हर कार्य को सोच समझ कर करें और अपनी भावनाओं को संतुलित रखें। संयम केवल भोजन या बोलने तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। विद्यार्थी यदि पढ़ाई में संयम रखे, समय का सही उपयोग करे और अपने लक्ष्य पर ध्यान दे तो वह अवश्य ही सफल होता है। इसी कारण परिवार में भी संयम का बहुत महत्व है। जहाँ लोग एक दूसरे की बात को धैर्य से सुनते हैं और समझदारी से व्यवहार करते हैं वहाँ प्रेम और शांति बनी रहती है। संयम मनुष्य के चरित्र को मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है। जैसे नदी अपने किनारों के भीतर रहकर बहती है तभी वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। यदि वह अपने किनारों को छोड़ दे तो बाढ़ बनकर विनाश कर देती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी संयम के बिना दिशाहीन हो जाता है। महापुरुषों ने भी संयम को जीवन का सबसे बड़ा आभूषण बताया है। भगवान बुद्ध ने क्रोध पर विजय पाने के लिए संयम का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के साथ संयम को अपने जीवन का आधार बनाया। उनका मानना था कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह संसार को भी कभी दिशा नहीं दे सकता है। संयम हमें कठिन समय में सही निर्णय लेने के लिए शक्ति देता है। यदि कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेता है और बाद में पछताता है, यदि वह संयम रखे और शांत मन से विचार करे तो समस्याओं का समाधान सरलता से मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संयम सफलता की पहली सीढ़ी है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में संयम का महत्व और भी बढ़ गया है। मोबाइल, इंटरनेट और आधुनिक साधनों ने जीवन को आसान तो बनाया लेकिन लोगों का ध्यान और धैर्य कम कर दिया। ऐसे समय में आवश्यक है कि हम अपने समय, शब्दों और व्यवहार पर संयम रखें। जो व्यक्ति समय का संयमित उपयोग करता है वही अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाता है। संयम का अर्थ अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। यह हमें सिखाता है कि हर वस्तु और हर भावना का उपयोग

अधिक क्रोध, अधिक लालच या अधिक बोलना हमेशा हानि पहुंचाता है। इसलिए संतुलन और मर्यादा ही संयम का वास्तविक रूप है। अंत में यही कहा जा सकता है कि संयम जीवन को सुंदर और सफल बनाने की कुंजी है। यह मनुष्य को सम्मान, शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम होता है, वह हर कठिनाई का सामना मुस्कान के साथ कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में संयम को अपनाना चाहिए, क्योंकि संयमित जीवन ही सच्चे सुख और सफलता का आधार है।

0: लीजिए अब सुनिए खेती की बातें।
1: किसान भाइयों के राम राम। किसान भाइयों, खेती के बात में आज अपन बात करांगा कि इना बरसात का मौसम का साथे साथ ये जो जुलाई को महीनों है एका में अपना किसान भाइयों जो खरीफ की फसल और सब्जियों की बुवाई करेनी वो सबसे उपयुक्त वक़्त होवे है, क्योंकि अगर इन्हीं वक़्त कहीं होवे है कि मौसम और मिट्टी की स्थिति को अपना किसान भाइयों पूरो फ़ायदा उठा ही सके है। और देखो नहीं, जुलाई का मौसम में अपना किसान भाइयों जो चाहे जैसे कि बरसात भी होवे, नमी भी मिली जाए उनके और गर्मी को मिश्रण भी होवे, एका सारू जो अपन फसल हुन बोईरा हाँ वह ओका मान से घनी अच्छी होवे हैं। तो अपना किसान भाइयों अगर इन्हीं वक्त फसल बोवे है, खरीफ की फसल लेवे है, तो अक्टूबर नवंबर तक वे फसल कटाई सारू तैयार हुई जावे है। जैसे कि धान की फसल हुई, मूंगफली की फसल हुई, रागी एक पौष्टिक और कम पानी वाली फसल होवे है, या भी जुलाई में बोई सके है। उड़द, काली उड़द की दाल या एक प्रोटीन युक्त फसल है जो जुलाई में बोई जा सके है। मूंग एक जल्दी तैयार होने वाली दाल है जो जुलाई में बोने के लिए घनी अच्छी होवे है। साथ ही साथ जुलाई को जो महीनों है नहीं उनमें मौसम कई सब्जियों की बुवाई सारू भी अच्छो होवे है। जैसे कि अपन इन सब्जियों के घरेलू उपयोग के लिए भी काम में ली सका हाँ, और चाहवा तो बाजार में बेची के भी मुनाफा कमाई सका हाँ। जैसे कि भिंडी गर्मी और नमी वाला मौसम में अच्छी तरह से उगी जावे है, तो या जुलाई में बोने सारू घनी अच्छी होवे है। साथ ही साथ लौकी, जिसके अपन आल के वहाँ, तो आल की खेती भी जुलाई में आसानी से करी सका हाँ, या भी तेजी से बढ़े है और अच्छे उत्पादन देवे हैं। बैंगन भारतीय रसोई को एक महत्वपूर्ण हिस्सा होए और जुलाई में की बुवाई अच्छी होवे है। मूली एक जल्दी तैयार होने वाली सब्जी है जो जुलाई में बोई जा सके है। पालक की खेती जुलाई में शुरू में ही करी सका हाँ, और यह पौष्टिक और आसानी से उगने वाली सब्जी होवे है। तो भाइयों, इस तरह से अपन अपना खेत में इस तरह की सब्जी साग भाजी ने फसल ली सका हाँ। देखो भैया, जुलाई में खेती की तैयारी सारू ही अपने किसान भाइयों के ध्यान रखना है कि सबसे पहला मिट्टी की जांच करवाई ले, ताकि उर्वरकता और पीएच स्तर की जांच से उनके पतो चली जावे कि खाद या गोबर की खाद कसी डालनी है। बीज की गुणवत्ता हमेशा प्रमाणित और अच्छा गुणवत्ता वाला बीज को इस्तेमाल करें। जल निकासी की अपना खेत में व्यवस्था करें। कीट नियंत्रण सारू जैविक कीटनाशक को उपयोग करें, ताकि जो फसल है वह सुरक्षित रहे। निंदई गुड़ाई समय समय पर खेत करता रहे और खरपतवार नहीं बढ़े को भी ध्यान रखें। देखो नहीं भाई, आजकल जैविक खेती को घनों प्रचलन हुई रहो है, और यो केवल पर्यावरण सारू अच्छो नहीं है बल्कि मिट्टी की उर्वरकता के भी बनाए रखने सारू घनों अच्छो है। तो जुलाई में बोई जाने वाली फसल और सब्जियों के लिए जैविक खाद, जैसे कि गोबर की खाद का साथ साथ वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली को उपयोग करा, इक्का से फसल की गुणवत्ता भी

0: और बाजार में अच्छा मूल्य भी एको मिले वो इका सारू जो है कीटनाशक को भी कम से कम उपयोग करा सही फसल मट्टी के तैयारी जैविक खेती का तरीका से आप जो अपने किसान भाइयों ने जुलाई में अपन अगर खेती करा तो उन्हीं पर्यावरण को ध्यान रखनो घनो जरूरी होवे है। रासायनिक कीटनाशकों को कम से कम उपयोग करा बारिश का पानी के संरक्षित करने सारू तालाब या लाशय बने बनावा इका से कहीं हो कि जब अपना के पानी के आपदा आवे तो अपन उन्ना पानी को उपयोग करी सका हाँ। और जुलाई को जो महीनों है भारतीय किसान सारू खेती को सुनहरो बखत है। इन इस बखत पे अपना किसान भाई धान मूंगफली रागी उड़द मूंग जैसी खरीफ फसल उन बोई सके है। साथ ही अगर साग भाजी चावे तो भिंडी लौकी बैंगन मूली और पालक जैसी सब्जियों की भी के भी अच्छी तरह से उगने का से भी मुनाफो पाई सके हैं। तो आज अपना किसान भैया उनसे इतना ही कहना थो राम राम।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती की बातें, ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, स्वर था ए हरिहरन का और संगीत नियोजक थे सतीश भाटिया। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए अब सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

गुड मॉर्निंग इंदौर प्रोग्राम आप सुनेंगे 7:20 पर। 8:30 का समय होगा फिल्म संगीत के लिए। मराठी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9 बजे और 9:30 पर हम आपके लिए लाएंगे शास्त्रीय संगीत। इसमें सुनिएगा बांसुरी वादन, कलाकार होंगे रवि गरुड़। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन होगा 10:05 पर। इसमें कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के हिंदी फिल्मी गाने। कॉल करने के लिए टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का STD कोड है 0731। प्रसारण समय होगा सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक। 11 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। भोपाल केंद्र से दिन में 12:02 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। अब में सांध्यकालीन सभा की शुरुआत हम करेंगे शाम 5 बजे से युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी के साथ। इसमें सुनिएगा विश्व शतरंज दिवस पर की गई आज की बात, साथ ही कुछ बातें कुछ गीत।

0: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग होगा शाम 6 बजे। शाम 6:30 पर सुनिएगा सुगम संगीत। कलाकार होंगे सुरेश वाडेकर। शाम 7:20 पर हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। इसमें आप सुनेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर की गई आज की बात, डिजिटल युग से ग्रामीण महिलाओं की नई उड़ान। ये भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे मेघा धामू से की गई थी। जो साथ ही आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में कुछ घरेलू टिप्स, काली मिर्च के फायदे, घरेलू व्यंजन क्रम में सुनिएगा मूंग दाल का हलवा। साथ ही आप सुनेंगे
1: अथ वार्ताः। संसदः प्रावृट सत्रम् अद्यारभ्य अगस्त मासस्य 13 दिनांक पर्यन्तं प्रचलिष्यति। 25 दिनानां सत्रेस्मिन् 21 उपवेशनानि भविष्यन्ति। सत्रे अनेकानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि चर्चायै अंगीकरणाय च उपस्थापितानि भविष्यन्ति इत्यपेक्षते। अद्य लोकसभायां सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या संशोधन विधेयकं 20-26, राज्यसभायां च राष्ट्रिय सम्मानस्य अपमान निवारणस्य संशोधन विधेयकं 20-26 उपस्थाप्येते। सहैव जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयकं, आयकर संशोधन विधेयकं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयकं 20-26 चेत्येतानि अपि प्रावृट सत्रेस्मिन् उपस्थापितानि भविष्यन्ति। प्रावृट सत्रस्य पूर्व संध्यायां ह्यः सर्वकारेण संसद भवने सर्वदलीयोपवेशनम् आहूतम्। सम्मेलनस्य अध्यक्षः रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः आसीत्। अस्यां सभायां 40 राजनैतिक दलानां 50 तोप्यधिकाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजुः सर्वान् राजनैतिक दलान् संसदः कार्याचरणं निर्विघ्नं प्रचालयितुं प्रमुख विषयेषु रचनात्मक चर्चासु भागग्रहीतुं च आग्रहम् अकरोत्।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे।
1: लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः ह्यः लोकसभायाः व्यापार परामर्श समितेः सभायाः अध्यक्षताम् अकरोत्। सभायां सर्वकारस्य प्रतिनिधि सदस्याः अपि च विभिन्नानां राजनैतिक दलानां च सदस्याः सत्रावधौ प्रस्तावितस्य विधेयकेषु अन्येषु च कार्येषु विचाराणाम् आदानं प्रदानं कृतवन्तः। श्री बिरला वर्यः रचनात्मक विचार विमर्शाणां सार्थक सहभागित्वस्य सर्वोच्च संसदीय परम्पराणां पालनस्य च महत्वमपि अधोरेखितवान्। दिल्ल्यारक्षिबलेन स्पष्टीकृतं यत् अद्य आरभ्यमाणस्य संसद सत्रस्य दृष्ट्या नवदिल्लीमण्डले कस्यापि विरोधयात्रायाः प्रदर्शनस्य च अनुमतिः न प्राप्तास्ति न प्रदत्तास्ति। सामाजिकान्तर्जालीय पटले दलेन उक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 23-2000 धारा 63-शतम् अनुवर्तितास्ति, अतः जंतर मंतर क्षेत्रं विहाय अस्मिन् क्षेत्रे 5 वा 5+ जनानां विरोधयात्राः शोभायात्राः प्रदर्शनानि सभाः च कठोरतया निषिद्धाः सन्तीति। दिल्ल्यारक्षकैः सर्वे नागरिकाः विधेः सम्मानं कुर्वन्तु, कस्यापि अनधिकृत सभायां पदयात्रायां च भागं न गृह्णन्तु, सार्वजनिक शान्तिं सुरक्षां च रक्षयितुं सहयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थितमस्ति। भोपालनगरस्य समीपे ऐतिहासिके जगदीशपुरे आयोजिते विशेषसभायां मध्यप्रदेशस्य मन्त्रिमण्डलेन यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC इति विधेयकं स्वीकृतम्। वार्ताहरान् संबोधयन् मुख्यमंत्री मोहन यादवः अवदत् यत् यूसीसी सर्वेभ्यः समुदायेभ्यः समानावश्यकान् अधिकारान् च प्रदातुं शक्नोति। सः अवदत् यत् यूसीसी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से ज्यादा नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परम्पराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्रवाई को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मॉल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इन तीनों देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मालदोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। स्पेन ने अतिरिक्त समय में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं

पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में यह खिताब जीता था और इस जीत के साथ ही स्पेन एक समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: श्रोता, आपको जानकारी दे दें कि आज सुबह 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में कॉल करके आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के फरमाइशी हिंदी फिल्मी गाने। इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए हम आपको हमारे टेलीफोन नंबर बताते हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपनी पसंद के गीत सुन सकते हैं। तो हमारे टेलीफोन नंबर कृपया नोट कीजिए, हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। जी हाँ, 2710223 और 2710224। इंदौर शहर का STD कोड कृपया नोट कीजिए, STD कोड है 0731 0731। यह है इंदौर शहर का STD कोड। तो हमारे वो श्रोता जो इंदौर शहर के बाहर निवास करते हैं और वहाँ से हमें कॉल करते हैं इस प्रोग्राम में, तो कॉल करने से पहले, टेलीफोन नंबर से पहले 0731 STD कोड लगाएं और उसके बाद आप हमारा ये जो टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224, इन दोनों ही टेलीफोन नंबर्स में से आप किसी भी एक नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के हिंदी फिल्मी गाने। कार्यक्रम का नाम है MH हॉटलाइन। इसका प्रसारण समय है आज सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक। तो हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर फ़ोन कीजिएगा और सुनिएगा अपनी पसंद के गाने। सूचना समाप्त हुई।
2: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: ये आकाशवाणी इंदौर है। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को दी बधाई। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू, 24 जुलाई तक चलेगा। अब तक कुल 1756 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त। प्रदेश में समान नागरिक संहिता की दिशा में बड़ा कदम, कैबिनेट ने यूजीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को दी मंजूरी, आज विधानसभा में होगा पेश। और मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 90% हिस्से में अगले 4 दिन हल्की बारिश का जताया अनुमान, दमोह मंडला और डिंडौरी में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में भारत का यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम की काबिलियत और विज्ञान के प्रति जुनून ने देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने लिथुआनिया में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में पदक जीतने वाली भारतीय टीम को भी बधाई दी। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होकर 24 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल विधानसभा पहुंचकर सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को सत्र के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद अब तक कुल 1756 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव और शून्यकाल की भी कई सूचनाएं मिली हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूजीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल के पास जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूजीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। अब ये विधेयक आज से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। यूजीसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
1: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा, जो उत्तराधिकारी आमतौर पे होते हैं। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक के बाद प्रदेश के 10,54,000 किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। ये राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ट्रांसफर की गई। कृषि मंत्री इंदल सिंह कंशाना ने बताया कि प्रदेश में 2016 से 2025 तक फसल बीमा योजना के तहत करीब 30,942 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल झाबुआ में बलराम कृषि महोत्सव के तहत किसानों से ऑनलाइन चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को 3 लाख रुपए तक का कृषि ऋण 0% ब्याज पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि झाबुआ जिले में करीब 3000

0: 125 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती हो रही है। उन्होंने कहा कि जिले का कड़कनाथ मुर्गा और टमाटर देश भर में पहचान बना रहे हैं। ये महोत्सव अब अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी आयोजित होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बैतूल जिले में महिलाओं को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिले के 12 क्लस्टर लेवल फेडरेशन और खेती ऑर्गेनाइजेशन के बीच 4 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हुआ है। इससे 300 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं जुड़ेंगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं बैतूल से हमारे संवाददाता मयंक भार्गव। पेश एक रिपोर्ट।
2: बैतूल जिले की 300 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्राकृतिक खेती के जरिए आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े की मौजूदगी में 12 क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF और खेती ऑर्गेनाइजेशन के बीच करीब 4 करोड़ का MOU हुआ है। परियोजना के तहत महिलाओं के यहाँ नेट शेड स्थापित किए जाएंगे, जहाँ वे साल भर सब्जियाँ और अन्य धान की फसलों का उत्पादन कर सकेंगी। कलेक्टर ने कहा कि परियोजना जिले में महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं संस्थानों से समन्वित रूप से कार्य करने और कार्यक्रम को प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जीवन ज्योति CLF की सचिव दीदी राधिका भगत ने बताया कि इस योजना से दीदियों की आय बढ़ेगी।
3: जो फसल अपन लगाते हैं उसमें इल्लिया, कीटनाशक, सारी प्रकार की बीमारियां होती है। सेटनेट में यह बीमारियां नहीं होती और फसल सुरक्षित रहती है, जिससे दीदियां अच्छी आय अर्जित कर सकती है। अब इसी प्रकार की प्राकृतिक खेती करके अपना परिवार को स्वच्छ और सुरक्षित रख सकती है।
2: बैतूल से मयंक भार्गव।
0: प्रदेश पुलिस ने बीते 6 दिनों में संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 70 लाख रुपए से अधिक की चोरी की गई संपत्ति बरामद कर 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुना पुलिस ने चेन चोरी के 8 मामलों का खुलासा कर 3 अंतर्राज्यीय गिरोहों के 13 आरोपियों को पकड़ा। वहीं भोपाल GRP ने ट्रेनों में चोरी करने वाले गैंग के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिवपुरी, बड़वानी, सीहोर और खरगोन में भी पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बैतूल जिले से मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत कल करीब 260 श्रद्धालु हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने बुजुर्ग यात्रियों का स्वागत कर हरी झंडी दिखाई। प्रदेश की पन्ना टाइगर रिजर्व में कल एक 4 वर्षीय बाघ की मौत हो गई। बाघ का शव किशनगढ़ कोर क्षेत्र के ब्रजपुरा वन परिक्षेत्र में मिला है। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। उप संचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि बाघ के शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट नहीं मिली है, इसलिए प्रथम दृष्टया यह प्राकृतिक मौत लग रही है। पन्ना जिले की मझगवा हीरा खदान से एक बड़ा हीरा मिला है। ये हीरा 13.16 कैरेट का है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। वर्ष 2024 में खदान का संचालन दोबारा शुरू होने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा हीरा है। टैलेंट सर्च अभियान के तहत एथलेटिक्स के चयन ट्रायल्स आज से 22 जुलाई तक भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में होंगे। इसमें बालक और बालिका दोनों वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश के करीब 90%

रोहित शर्मा ने शतक लगाया लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव आज और कल 2 दिवसीय शिवपुरी प्रवास पर आएंगे। इस दौरान वे जनप्रतिनिधियों और आमजन से बातचीत करेंगे। बालाघाट में जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर ने हाल ही में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की शालाओं, छात्रावासों और आश्रमों का औचक निरीक्षण किया। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत खंडवा जिले में ऑटो रैली, पोस्टर अभियान, नुक्कड़ नाटक, छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। वहीं मंडला जिले की बिछिया पुलिस ने अवैध गांजे की खेती का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डिंडौरी में आकांक्षी विकासखंड महेंद्रवानी के ग्राम सारसडोली में पशु चिकित्सा शिविर और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जबलपुर में केंद्र सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 314 करोड़ 18 लाख रुपए की परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। छिंदवाड़ा में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित पर्यटन क्विज 2026 की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 7 अगस्त को शहर के एक्सलेंस स्कूल में आयोजित की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर।

0: गुड मॉर्निंग इंदौर,
1: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
0: गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुषमा व्यास का प्यार भरा नमस्कार।

0: श्रोताओं, 20 जुलाई यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि जीत सिर्फ तेज चलने वालों की नहीं होती बल्कि सही समय पर सही चाल चलने वालों की होती है। शतरंज सिर्फ 64 खाने और 32 मोहरों का खेल नहीं है बल्कि ये खेल धैर्य, दूरदृष्टि, अनुशासन और निर्णय क्षमता की सबसे बड़ी पाठशाला है। और गर्व की बात ये है श्रोताओं कि जिस खेल को आज पूरी दुनिया चेस के नाम से जानती है उसकी जड़ें हमारे भारत की चतुरंग परंपरा में है। आज भारतीय खिलाड़ी विश्व शतरंज की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं और लाखों युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। तो आज के गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम में बातें होंगी शतरंज की, मिलेंगे इस खेल से जुड़े अनुभवी लोगों से। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले मिलते हैं धर्मेंद्र सिंह मौर्य जी से, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता तो हैं ही, साथ में शतरंज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। धर्मेंद्र जी, बताइए शतरंज को आप इतना पसंद क्यों करते हैं?
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आकाशवाणी इंदौर को और आज विश्व शतरंज दिवस की सभी को, सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। चूंकि आप मैं पसंद क्यों करता हूँ इस दृष्टि से बात आई है, तो मैं शतरंज का बहुत बड़ा उस्ताद अपने आप को नहीं मानता लेकिन मैं जीवन भर के लिए शतरंज का एक छात्र जरूर मानता हूं। और शतरंज चूंकि

0: ये मस्तिष्क का व्यायाम है, और चूंकि मेरे मस्तिष्क से नहीं, सारे जो भी शतरंज के जगह पर बैठता है उसके लिए ये शारीरिक व्यायाम के लिए उसे मैदान में जाना पड़ता है, लेकिन अगर उसको मस्तिष्क का विकास करना है और मस्तिष्क का व्यायाम करना है तो शतरंज से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं मानता हूं। दूसरी विशेष बात कि एक भारतीय होने के नाते आज का दिन और भी खास है। खास इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं भी भारतीय हूं, और चूंकि शतरंज को प्राचीन काल में चतुरंग कहा जाता था, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, और देश के प्रति श्रद्धा भक्ति आत्मीयता ये मैंने शुरुआती काल से हमारी संघ की शाखाओं में और दर जाकर के सीखा। हम जो संघ की शाखाओं में खेल के विषय में और ये सारी चीजें कई बार मस्तिष्क का विकास देखते हैं, ये सारी चीजें हमें हमारे शतरंज के अंदर भी दिखाई देती है। और चूंकि हमारे देश का निर्मित, हमने एक गीत भी सुना है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, अब और भी गर्व इस बात पे होता है कि शतरंज, और मतलब जिसे दुनिया चेस कह रही है, शतरंज कह रही है, चतुरंग मेरे देश ने दिया, मेरे भारत ने दिया, इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ।
1: और ग्रैंड मास्टर भी हमारे ही देश के हैं।
0: हाँ, ग्रैंड मास्टर हमारे देश के हैं, ये अपने लिए और गर्व की बात यहाँ होती है, क्योंकि भारत विश्व गुरु और दुनिया को सीख देने वाला। आज अगर और देखा जाए, दुनिया को सीख देना, और मुझे लगता है कि दुनिया को विचार करना अगर किसी खेल ने सिखाया है, विचार का कोई खेल है, दुनिया को सोचना अगर किसी ने सिखाया है, तो वो भी मैं कहूंगा भारत ने सिखाया है, इसलिए भी मैं पसंद करता हूँ।
1: आज है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारे युवा हैं जो इस खेल की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्या लगता है आपको कि हमारे इंदौर में भी आजकल बहुत ज्यादा क्रेज है इसका?
0: जी बिल्कुल ठीक कहा, इंदौर में भी और मुझे लगता है पूरे देश भर में भी, लेकिन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये एक धैर्य का खेल है, योजना का खेल है, कि शतरंज सिखाता है कि बिना सोचे समझे उठाया गया एक भी कदम हमारे जीवन के लिए और आने वाले करियर के लिए नुकसान दे सकता है, इसलिए धैर्य और सोच समझ करके रखा हुआ कदम ही हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। फिर हार से भी सीखना है, और अगर हार से सीखना है तो बोर्ड पर जब हम कोई मोहरा खोते हैं तो खेल खत्म नहीं होता है, खेल समाप्त नहीं होता है, हमको और प्रेरणा मिलती है, इसलिए जीवन में छोटी मोटी चुनौतियां युवाओं को और बच्चों को इस खेल से इसलिए भी प्रेरणा लेनी चाहिए, इसलिए भी खेलना चाहिए कि जीवन भर में चुनौतियां समस्याएं आती है, जीवन का नाम है, आना ही है, लेकिन उससे हारना उसके बाद खेल समाप्त नहीं होता है, बल्कि अगली पारी की शुरुआत होती है, अगली पारी को और अच्छे से खेलने की शक्ति मिलती है, योजना बनाने की हिम्मत मिलती है, इसलिए भी मुझे लगता है कि ये युवाओं के लिए और हम सब श्रोताओं के लिए आवश्यक ध्यान में आता है।
1: देखिए ना, आजकल जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो ज्यादातर बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, तो एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है चेस, मोबाइल गेम की जगह पर हम ऐसे खेलों में उनका ध्यान बटाएं कि उनसे जो मानसिक विकास भी बहुत अच्छी तरह से हो और दिमागी शक्ति भी बहुत अच्छी तरह से विकसित हो जाए। तो आपके आसपास अगर बच्चे हैं तो उनको आप प्रेरित करते हैं इसको लेकर?
0: जी बिल्कुल, मेरा चूंकि सामाजिक जीवन है और सामाजिक जीवन में मैं भिन्न भिन्न बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ, और जब भी मैं बच्चों से मिलता हूँ, विद्यार्थियों से मिलता हूँ, तो एक ही चीज ध्यान में आती है कि हम सब लोगों का ये आज बचपना छीन रहा है मोबाइल, और इससे अगर बचना है तो मुझे लगता है चतुरंग से अच्छा खेल, शतरंज से अच्छा खेल हो ही नहीं सकता, और वो उससे प्रेरणा भी लेगा, हाथ से मोबाइल भी छूटेगा, और प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखना है। शतरंज ऐसा खेल है कि मुझे लगता है कि इसमें कोई भी बनी बनाई चीज है ही नहीं, आप हर दिन और हर चाल के बाद नया विचार, नया भाव सीख सकते हैं। और मैं अपने प्रत्येक जिन घरों में जाता हूँ, जहां पर भी मेरा बच्चों से मिलना होता है, मैं उनसे कहता हूँ कि सारे खेल तो खेलिए ही आप। मुझे गर्व अपना होता है कि ये भारत का खेल है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत की खेल की अपने आप में ही ये विशेषता है कि ये हम सबको मस्तिष्क को तो मजबूत करेगा ही, और अपना गर्व भी महसूस होगा, तो आप ये खेलिए, और मैं इसके लिए प्रेरित भी करता हूँ।
1: स्पेशली हम बच्चों की जैसे बात कर रहे हैं, अगर घर का बड़ा कोई खेल सिखा रहा है तो वाकई में निश्चित तौर पे बच्चे मोबाइल की दुनिया से बाहर जरूर आ सकते हैं।
0: आपने बिल्कुल घर के बड़े से बात कही, तो मेरी शुरुआत, चूंकि मेरे परिवार में और उसमें कोई शतरंज के खिलाड़ी नहीं रहे, लेकिन मुझे ध्यान है जब मैं विद्यार्थी काल में छोटा था, पिताजी की जहां नौकरी चलती थी, और हम जब पढ़ाई के साथ साथ देखते थे कि हमारे पड़ोस में और बहुत सारी जगह पर कुछ बड़े उम्र के और ऐसे कुछ बच्चे वो चेस खेल रहे होते हैं, अब उस समय समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन देख करके लगता था अरे कौन सा खेल, इतना चिंतन क्यों करते, इतना विचार क्यों करते, इतना विचार करके और फिर चाल चलते हैं, मालूम कुछ नहीं है, लेकिन उस समय समझ में नहीं आता। उस समय से थोड़ा सा विचार जागृत हुआ, और देख करके, क्योंकि देख करके भी अगर हम ऐसे शतरंज चतुरंग जैसे खेल खेलेंगे, घर में अगर बड़े भी खेलेंगे कुछ समय के लिए, तो बच्चे देखेंगे तो मोबाइल से दूर रहेंगे। मुझे लगता है अगर

0: बच्चे शतरंज देखते हैं सीखते हैं तो वो विचार करना सीखते हैं और वो इस खेल के प्रति और ज्यादा उनका भाव विकसित होगा,
1: और वैसे
0: ऐसा
1: भी
0: मुझे।
1: शतरंज जो कहा जाता है धीरज का खेल है,
0: बिल्कुल धैर्य
1: जितना
0: का।
1: शांत धैर्य मन से आप खेलते हैं वो वास्तविक जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शतरंज का जो खेल है वो आपको ध्यान करना सिखाता है,
0: जी
1: धीरज रखना सिखाता है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको भारी पड़ सकती है।
0: जैसे जीवन के लिए तो ये जीना सिखाता है, ये जीवन का ध्येय बन सकता है ये।
1: तो देखिए, सीखिए और खेलिए। तो बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी आपसे बात करके। तो इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: मेरी भी इच्छा के आधार पर आप मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, वो गीत सुनाइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनवाते हैं हम आपको आपकी पसंद का गीत। एक बार मेरे साथ कहिए गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: गुड मॉर्निंग इंदौर।

0: तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुनील सोमानी जी। डॉक्टर सोमानी शिक्षा जगत की एक प्रतिष्ठित हस्ती होने के साथ आप एक शतरंज खिलाड़ी और कोच भी हैं। आप भारत का प्रतिनिधित्व कॉरेस्पोंडेंस चेस ओलंपियाड सहित कई प्रतियोगिता में कर चुके हैं और वर्तमान में ऑल इंदौर चेस एसोसिएशन और चेस फेडरेशन फॉर फिजिकली डिसेबल्ड के उपाध्यक्ष हैं। श्रोताओं, विश्वनाथ आनंद जैसे महान खिलाड़ी के साथ भी मुकाबला कर चुके हैं ये, तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनील सोमानी जी का।
1: नमस्ते, धन्यवाद आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत विश्व शतरंज दिवस पर बधाई।
0: तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल चेस डे। तो डॉक्टर सोमानी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जुड़ाव शतरंज से कैसे जुड़ा।
1: शतरंज से मेरा जुड़ाव 1978 के करीब हुआ था, जब मैं मात्र 11 साल का था। और उस जमाने में शायद 11 साल का कोई बच्चा शतरंज खेलना चालू करता था, ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता था। तो जुड़ाव तो घर के दोस्तों से और पिताजी के कुछ दोस्तों के साथ ही हुआ था, पर शतरंज मुझे बड़ा अच्छा खेल लगने लगा था, क्योंकि उसमें उस समय भी ऐसा लगता था कि हमें बड़ी सोचने की समझने की क्षमता इसके द्वारा होती है। तो ये जुड़ाव का पहला पॉइंट हुआ था।
0: तो बचपन से आप जुड़ गए थे इस खेल से, है ना?
1: जी, जी, जी।
0: और आज उम्र के इस पड़ाव पर हैं, आज भी उतना ही लगाव है शतरंज को लेकर आपका?
1: आज शायद ऐसा मुझे लगता है कि शतरंज से लगाव उससे भी बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि जैसे ही शतरंज चालू किया था उससे जो शिक्षा मिलती रही उसने मुझे एक एक सीढ़ी आगे बढ़ाते हुए और वाइस चांसलर तक की पोस्ट तक पहुंचाया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शतरंज जो लॉजिकल थिंकिंग का एक बड़ा अच्छा, खासकर युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि उन्होंने अपने शुरू

0: के जीवन में यदि शतरंज को अपना लिया तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं।
1: कहा जाता है कि शतरंज हमें चाल चलने से पहले सोचना सिखाता है, तो आपके अनुसार शतरंज जीवन को किस तरह से बेहतर बनाता है?
0: शतरंज से आप और हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जिसमें हर पल आगे क्या होने वाला है उसका कैलकुलेशन शतरंज बताता है। तो यही जीवन धारा में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां पे आपको बहुत क्रिटिकल डिसीजंस लेना होते हैं, तो शायद आप शतरंज सीखते हैं और शतरंज का ब्रेन आपके पास है तो बहुत जल्दी आप ये समझ लेते हैं कि कौन सी दिशा में जाना ज्यादा बेहतर होगा। तो ये हमेशा शतरंज आपको एक गाइडेंस देता है कि आप किस दिशा में और सही दिशा में कैसे जाएं।
1: आज का जो युग है, दुनिया है जो डिजिटल हो चुकी है, तो बच्चे भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो दिन भर मोबाइल पर गेम खेलते हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरह से उनके दिमाग को बढ़ाने के लिए वो शतरंज से जुड़ जाए?
0: बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई है जिसमें ये निष्कर्ष निकला है कि यदि कोई बच्चा शतरंज के साथ जुड़ाव यदि कर लेता है तो उसका मोबाइल का जो टाइम है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है और वो पढ़ाई में इतना अच्छा हो जाता है कि ऑटोमेटिकली उसका मन जो है ये बाकी चीजों में या बाकी भटकाओं में नहीं होता है। डिजिटल युग होने के कारण शतरंज के बहुत सारे पोर्टल्स भी अब अवेलेबल है जहां पे वो बच्चा जो है डायरेक्टली चेस प्ले कर सकता है। तो इसके कारण उसके जो बाकी निरर्थक गेम्स हैं मोबाइल पे जो होते हैं वो वाले सारे गेम से वो ऑटोमेटिक दूर होने लगा है।
1: और वैसे भी कहा जाता है ना कि जो मोबाइल है उससे बच्चों की जो सोचने समझने की शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है, और चेस जो है वो आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, कि शतरंज जैसा खेल दिमाग को कई गुना बढ़ा देता है।
0: निश्चित रूप से ये निर्विवाद सत्य है कि शतरंज ही एक ऐसा गेम है जहां पे लॉजिक और क्रिएटिविटी जो है वो काफी इम्प्रूव होती है।
1: आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज खेला है, क्या कोई ऐसी बाजी या कोई अनुभव है आपका जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं?
0: जब हमारे जमाने में हम खेला करते थे तब जो वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद खुद जिस टूर्नामेंट में खेले थे तो मुझे अच्छे से याद है कि वो टूर्नामेंट नेशनल का जो जूनियर चैंपियनशिप हुआ करती थी उसमें विश्वनाथन के साथ जो बाजी हुई थी वो मुझे आज भी बड़ा फैसिनेटिंग लगती है कि हम मुझे मेरा भाग्य है कि हम जो है वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेले हुए हैं। तो ऐसे कई गेम्स हैं और उसके अलावा जब ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में हम रनर अप हुए थे जिसमें मध्य प्रदेश पहली बार ऑल इंडिया लेवल पे रनर अप हुआ, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी सदर्न इंडिया की यूनिवर्सिटी तो जो है वो चेस में अपना प्रतिनिधित्व करती ही है और आती है, पर यदि नॉर्थ इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी को मैं रिप्रेजेंट करता था तो उसमें जो बाजी एक क्रिटिकल बाजी थी जो टाई वाला मैच था वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसके कारण हम जीते थे तो सागर विश्वविद्यालय जो है वो रनर अप बना था।
1: तो जो मैच आपने विश्वनाथ आनंद जी के साथ खेला था, जीत किसकी हुई थी?
0: नहीं, विश्वनाथ आनंद ही जीते थे उसमें।
1: मैं वही जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ, कि जीत और हार दोनों शतरंज का हिस्सा होते हैं। आपने अपनी हार से सबसे बड़ा सबक क्या लिया?
0: कभी भी यदि कोई मैच यदि हारते हैं तो बुरा तो लगता है परंतु उस मैच में हमने क्या गलती की यदि हम उसको असेस करें और नेक्स्ट टाइम केवल वो गलती नहीं दोहराएं तो आप ये मान के चलो कि जीवन में भी इसी ढंग से सफलता की सीढ़ी आदमी चढ़ता जाता है। तो किसी भी हार में एक जीत का संदेश छुपा होता है कि
1: बिल्कुल।
0: आप कैसे उसको और बेहतर बना सकते हैं।
1: अगर हम आज इंदौर की बात करें, हमारे अपने शहर की बात करें, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस खेल की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहते हैं? क्या लगता है इंदौर के लिए?
0: मुझे ऐसा लगता है कि शतरंज में चूंकि भारत विश्व के पटल पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर ही चुका है, हमारे जो है पुरुष वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन गुकेश है, महिला वर्ग में हम दिव्या का नाम ले सकते हैं, हमने ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों का स्वर्ण पदक भी हासिल किया है, टीम चैंपियनशिप में हम बेहतर करते आए हैं, तो इन सब का प्रभाव हर जगह पड़ा है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अपनी 11 वर्ष की आयु में शतरंज चालू किया था। विश्वनाथन आनंद का

0: है कि 5 और 6 साल में यदि आपने शतरंज चालू नहीं किया तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के तो ख्वाब ही भूल जाओ। इसका मतलब है कि आज जो है वो 5 साल या 6 साल की एज से यदि कोई बच्चा शतरंज खेलना चालू कर दे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसी की प्रेरणा लेके हम लोग ने ऑल इंदौर चेस एसोसिएशन या मालवांचल चेस परिवार की तरह हमने बच्चों को ऐसा प्रोत्साहित किया है कि वो जो है 5-6 साल की उम्र से, अभी जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें 3.5 साल और 4 साल का बच्चा चेस खेलना चालू कर दिया है, वो मध्य प्रदेश की ही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य तो निश्चित रूप से उज्जवल है। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश के भी कुछ आपको ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर और दिखेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल दिखने चाहिए, बच्चे प्रयास कर रहे हैं और हम सभी चाहते हैं कि हर खेल हम लोगों से छूटे ना। और इंदौर की जब बात की जाती है तो यहाँ के बच्चे, यहाँ के युवा और यहाँ का हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज चूंकि हम मना रहे हैं इंटरनेशनल चेस डे, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को?
0: मेरा तो यही कहना है खास कि जीवन में जो कुछ करें उससे बदलाव और अच्छाई लोगों के बीच में फैले, इसी का प्रयास करते रहें। इंदौर चूंकि क्लीनेस्ट सिटी पूरे इंडिया की है तो वो जो स्वच्छता है वो मन की स्वच्छता भी साथ में आए। और शतरंज जैसे खेल निश्चित रूप से बच्चों को आप प्रोफेशनल चाहे ना बनाएं परंतु उनको अपने इनिशियल डेज में शतरंज जरूर खिलाएं जिससे कि उनका पूरा मानसिक विकास हो सके। तो यही इस विश्व शतरंज दिवस पे मेरी एक तो पुनः बधाई और आकाशवाणी के पूरे जो श्रोता जो सुन रहे हैं उन तक हमारी ये बात पहुंचे, पुनः बधाई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, वाकई में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने हमारे साथ साझा की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गीत इस कार्यक्रम में जो आप सुनना चाहते हैं।
2: इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
1: अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये बहुत प्यारा सा गीत। एक बार मेरे साथ कहिए गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: गुड मॉर्निंग इंदौर।

श्रोताओं, बातें शतरंज की हो रही है तो मध्य भारत के पहले इंटरनेशनल मास्टर, एक उत्कृष्ट खिलाड़ी, सफल कोच और शतरंज के समर्पित प्रचारक अक्षत खंपारिया जी आज हमारे साथ हैं। श्रोताओं, अपनी उपलब्धियों के साथ साथ इन्होंने कई युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और

0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है अक्षत जी आपका।
1: धन्यवाद आकाशवाणी इंदौर। ये सौभाग्य की बात है कि वर्ल्ड इंटरनेशनल चेस डे पर एक इतना बड़ा इवेंट रखा है आकाशवाणी ने।
0: जी, तो सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके लिए ये दिन कितना विशेष है?
1: ये पूरे विश्व में मनाया जाने वाला इंटरनेशनल चेस डे है, जो 1924 पे वर्ल्ड चेस फेडरेशन, जिसे हम फीडे बोलते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डे एक्ट, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, तो वहां से स्टार्ट हुआ है। हम लोग के लिए तो काफी विशेष है क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल चेस प्लेयर हैं और चेस प्लेयर के लिए एक प्रकार से ये हमारे फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कह सकते हो आप इसको।
0: क्या बात है। ये बताइए अक्षत जी कि शतरंज से आपका परिचय कैसे हुआ? आपको याद है कि पहली बार इस खेल ने आपको कब आकर्षित किया?
1: मैं जब काफी छोटा था, मतलब 4-5 साल का होगा, तो मैं अपने ननिहाल गया हुआ था, तो वहां पे मैंने अलग अलग गेम्स अपने रहते हैं, जैसे लूडो, स्नेक लैडर्स, तो वो खेलते थे। पर एक दिन कुछ मिल नहीं रहा था, तो वहां चेस बोर्ड रखा हुआ था, तो उस समय तो इतनी मेरी समझ थी नहीं कि इसको कैसे मूव करते हैं, क्या करते हैं, पर जस्ट मैंने देखा, थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट लगा, तो फिर मैंने अपने वहां रिलेटिव से पूछा कि ये कैसा गेम है, क्या इसको कैसे खेलते हैं, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया। फिर वो मेरे लाइफ में एक पार्टी बन गया मेरी लाइफ का, और मुझे काफी पसंद है चेस। मैं बचपन से हम लोग ने काफी टूर्नामेंट्स खेले हैं इंडिया अब्रॉड, तो ट्रैवलिंग काफी रहती थी, तो एक अच्छा लगता था कि आप टूर्नामेंट के, मतलब चेस के साथ आप कई अलग अलग जगह भी घूम रहे हैं, तो चेस एक आपको एक काफी अच्छा एक्सपोजर तो देता है, प्लस आप पूरी दुनिया भी घूम सकते हैं अगर आप चेस में अगर आगे बढ़ते हैं।
0: तो अपनी उपलब्धियों के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं भी चेस पे इंटरनेशनल मास्टर हूँ और साथ में मेरे पास एक ग्रैंड मास्टर नॉम है, तो मैं भी प्रयासरत हूँ ग्रैंड मास्टर टाइटल के लिए। पर अभी एमपी में अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम चल रहा है। लास्ट 4-5 साल से काफी बड़े बड़े इवेंट्स हो चुके हैं और एमपी में आयुष शर्मा, अनुशिव रात्रे, माधवेंद्र प्रताप शर्मा, ओजस सिंह, इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंटली। अभी अपने इंदौर की लड़की है सीरा डागरिया, शी इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल, और ये सब प्लेयर्स काफी क्लोज हैं टू बिकम ग्रैंड मास्टर। तो एमपी में इतने सालों से जो मेरा ड्रीम था, और अपने सेंट्रल इंडिया से कोई अभी ग्रैंड मास्टर नहीं है, तो मुझे लगता है जल्दी ये पूरा होगा। और अनुज, आयुष से हमको काफी उम्मीदें हैं, माधवेंद्र से, कि वो जल्द से जल्द एमपी को पहला ग्रैंड मास्टर टाइटल दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदें जरूर पूरी होंगी। एक अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनने तक का जो आपका सफर है, कितना चुनौतीपूर्ण रहा? कोई ऐसा अनुभव आपको याद आता है जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रेरित किया हो?
1: इंटरनेशनल चेस में मैं बताना चाहूंगा, इंटरनेशनल रेटिंग रहती है पहले, तो ये 1400 से स्टार्ट होती है, और इसके बाद जब आपकी 2200 रेटिंग रहती है, 2200, तब आपको पहला टाइटल मिलता है, दैट इज कैंडिडेट मास्टर।
0: अच्छा।
1: एंड इन 2300 यू बिकम फीडे मास्टर। इन 2400 आपको इंटरनेशनल मास्टर टाइटल मिलता है, जो अभी मेरे पास है। एंड 2500 जिसको 2500 करते हैं, कि इस पे और प्लस आपके पास 3 GM नॉर्म्स रहना चाहिए, देन यू गेट द चेस में जब हाईएस्ट टाइटल है, दैट इज ग्रैंड मास्टर। तो ये काफी, मतलब टफ रहता है कि आपको कोई भी टाइटल चेस में लेना हो। और अभी प्रेजेंटली इंडिया में 90th ग्रैंड मास्टर रिसेंटली बने हैं, और जल्दी इंडिया 100 ग्रैंड मास्टर का लक्ष्य पूरा करेगी, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है किसी भी देश के लिए। ये कुछ ही कंट्रीज हैं विश्व में, जैसे रशिया थी जिसने ये कीर्तिमान हासिल किया था, और यूरोप में एक दो कंट्रीज हैं जिन्होंने 100 ग्रैंड मास्टर प्लस है उनके पास। और मेरे पर्सनल के लिए इंटरनेशनल मास्टर टाइटल अचीव करना मैंने 2011 में किया था, उस समय थोड़ी परिस्थितियां अलग थी, थोड़े मैचेस कम होते थे, तो आपको काफी बाहर ही ट्रेवल करके आपको लेना पड़ता था टाइटल। और चेस कंपेरेटिवली अब जिस स्थिति पे है, उसमें थोड़े से और ज्यादा चैलेंजेस थे टू गेट द ट्रेनिंग, और आपको बेस्ट ट्रेनर से आपको ट्रेन करना है। आजकल हर चीज थोड़ी इजिली अवेलेबल है, तो हर चीज आती है, पर वो भी एक अच्छा टाइम था उस समय जब हम लोग ने वर्क किया, और इंजिन्स थे कंप्यूटर में, जैसे आज के टाइम पे इंजिन्स बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, उनको बीट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नो वन कैन बीट इंजिन्स। हम लोग के टाइम पे वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो क्रिएटिविटी का थोड़ा और चांस रहता था।
0: इंटरनेशनल भी आपने बहुत खेला, नेशनल भी आपने खेला है, कोई अनुभव याद आ रहा है, कोई बाजी याद आ रही है, कोई खेल याद आ रहा है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
1: मेरे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में मैंने नेशनल 2013 पे भोपाल पे खेला था, उस पे मैं नेशनल सीनियर्स पे आई बिकेम थर्ड, दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट। एंड जब मैं इंटरनेशनल मास्टर टाइटल

0: लिया था मैंने सिडनी ओपन जीत के। तो वो मैं आपको वाकया कहना चाहूंगा कि मेरा बिल्कुल भी ऐसा प्लान नहीं था वो टूर्नामेंट खेलने का। एक तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया से काफी दूर है, एक अलग ही पार्ट है, और मैं उस समय एमबीए कर रहा था अपना। तो लास्ट का कुछ मेरे को 1 मंथ का स्टडी लीव था, उसके बाद मेरे
1: अच्छा
0: एग्जाम्स थे एमबीए के फाइनल। तो 1 मंथ का मैंने प्लान किया कि ठीक है, मैंने काफी पढ़ाई कर ली है तो मैं थोड़ा रिलैक्स के हिसाब से मैंने प्लान किया कि आई विल गो ऑस्ट्रेलिया, आई विल प्ले सम गुड इवेंट्स, देन आई विल कम बैक और मैं अपना इवेंट, अपना जो एग्जाम्स है वो दूंगा। पर लकीली मैं जो वहां इवेंट्स खेला, सिर्फ 2 इवेंट, उसमें मैंने आउट ऑफ द वे जाके अपने नॉर्म्स भी कंप्लीट किए, रेटिंग भी कंप्लीट किए, और सिडनी इंटरनेशनल जो वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट इवेंट रहता है उसको मैंने विन किया। और वो एक काफी बड़ा मेमोरेबल इवेंट था क्योंकि जस्ट मैं एक विदाउट एनी होप और उससे गया था
1: हाँ
0: वो लेके, और उसके बाद फिर मैंने आके अपने एग्जाम्स भी दिए आराम से, बहुत रिलैक्स था क्योंकि काफी सालों से मेरा टाइटल रुका हुआ था। तो एक रहता है जब आप कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जाते, आप जस्ट फोकस के साथ जाते हो, जस्ट यू नीड टू प्ले, तो मेरे को लगता है कि उसमें रिजल्ट्स के काफी अच्छे चांसेस रहते हैं होने के। मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि वहां जाके मेरा ऐसा परफॉर्मेंस हो
1: सिलेक्शन हो
0: सकता
1: जाए,
0: है।
1: क्या बात है। जिस तरह से सिलेक्शन हुआ, जिस तरह से आपने उसको जीता, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे कहा जाता है कि शतरंज जो है ना, दिमाग का खेल है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दिमाग को स्ट्रोंग बनाने के लिए आप क्या खाते हैं। वैसे कहा जाता है ना कि बादाम खाने
0: जी
1: से दिमाग तेज होता है, तो ऐसा कुछ
0: जी
1: है क्या?
0: थोड़ा आपको न्यूट्रिशियस डाइट तो लगती है कि इफ यू वांट टू प्ले इन अ वेरी हाई लेवल, क्योंकि इसमें मेंटल प्रेशर काफी रहता है। और ऐसा देखा गया है कि जब हम लोग काफी बड़े इवेंट्स खेलते हैं तो लोगों को लगता है कि चेस आप खेल रहे हो तो सिर्फ आप टेबल में अपने चेयर में बैठे हैं, उतना नहीं हो रहा, पर आफ्टर अ गैप ऑफ लाइक 7-8 डेज वेट लॉस भी काफी होता है जस्ट बाई सिटिंग। तो ये एक है, तो आपको फिजिकली भी फिट रहना काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप फिजिकली फिट रहेंगे देन ओनली आप 5 से 6 घंटे एक जगह होके कंसंट्रेट होके आप बैठ के खेल सकते हैं खेल।
1: और शांत होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है वो भी अपनी चाल के लिए
0: जी
1: तैयार
0: जी
1: बैठा हुआ है, और आपको उससे बेहतर चलना होता है, तो उस समय दिमाग में क्या चल रहा होता है?
0: जब हम लोग खेलते हैं चेस तो यूजुअली जैसे लोग ध्यान लगाते हैं, तो अगर आप चेस खेल रहे हैं, अगर आप उस लेवल पे हैं, तो आपका अपने आप सबकॉन्शियसली आप उस ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं अगर आप उसको कंसंट्रेट होके खेल रहे हैं। और उसमें मेन रहता है कि आपको यू हैव टू क्रश योर ओपोनेंट माइंड, कि उसकी जो आपको बेस्ट मूव चलना है वहां पे, और जो भी रिजल्ट हो, आप हारो जीतो, अगर आप अच्छा खेल के भी हारते हो तो भी इस लेवल के बाद हम लोग को एक अच्छा फील आता है। इवन आफ्टर लूजिंग, अगर आपने बहुत अच्छा फाइट दिया, आपके ओपोनेंट ने ही प्लेड वेरी वेल, तो भी यू सेटिस्फाइड। इवन अगर आप खराब खेल के जीतो कि ओपोनेंट ने थोड़ा मिस्टेक किया और आपने उतना अच्छा नहीं खेला, तो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। तो मेरा जो खुद का मानना है कि अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो, रिजल्ट कुछ भी हो, तो इट इज स्टिल आपको एट द एंड ऑफ द डे यू फील हैप्पी।
1: तो जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, शतरंज को खासा पसंद करते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: मेरा है कि चेस को अगर आप प्रोफेशनल लेवल से चाहते हैं खेलना तो उसके थोड़ा सा आपको शुरू से आपको डिसिप्लिन पे रहना है, एंड यू हैव टू स्टडी चेस थोरोली, तब जाके आफ्टर द एज ऑफ 12-14 यू कैन बी श्योर कि आप इसमें अपना करियर बना सकते। और चेस में भी सर काफी अच्छा करियर ग्रोथ है, आप एज एन प्लेयर तो है बेस्ट, कि अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर बनते हैं देन यू कैन कंटिन्यू योर लाइफ। और भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। इंडियन रेलवेज है सबसे बड़ा इंडिया का जो जॉब प्रोवाइड करता है चेस प्लेयर्स को,
1: क्या बात है।
0: और मैं भी एक इंडियन रेलवेज का ही एम्प्लॉय हूँ, और साथ में LIC है, पेट्रोलियम सेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट उस पे वैकेंसीज रहती है, इनकम टैक्स है, तो वो एक आपको सपोर्ट रहता है। प्लस एज अ चेस अगर आप अच्छा इस लेवल में खेलते हैं तो यू कैन ऑल्सो अर्न बाई गिविंग चेस कोचिंग, और एज एन आर्बिटर, एज एन ऑर्गेनाइजर, देयर आर सो मेनी स्कोप। और ऐसा कहा जाता है कि अगर चेस में कोई आता है तो उसके पास एम्प्लॉयमेंट की कोई दिक्कत नहीं रहती, देयर आर सो मेनी डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल इन चेस।
1: अंत में चलते चलते हमारे श्रोताओं को इंटरनेशनल चेस डे पर क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे?
0: मेरा तो जो अभी अपकमिंग बच्चे हैं जिनका चेस पे रुझान है, उनसे कहूंगा कि चेस को आप काफी अगर प्रोफेशनल वे में अगर आप जाना चाहते हैं तो अच्छे से स्टडी करें और एंजॉय के साथ आप करें चेस, तब आप काफी फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं। और जो क्लासिक चेस है उसको पहले स्टडी करें, क्योंकि अभी का मॉडर्न चेस है ये एंजिन्स और इससे रिलेटेड है, तो इसको समझना इवन टॉप प्लेयर्स हम लोग के लिए भी काफी टफ है। तो अगर आप शुरू से उसमें जाते हैं तो थोड़ा सा आपको इश्यूज आ सकते हैं। तो मेरा है कि आप पहले से अपनी क्लासिक स्टडी करें, पुराने खिलाड़ियों की गेम स्टडी करें, और चेस इतना है कि आपके अगर प्रोफेशनल भी नहीं करते

0: अगर आपको खेलते भी है तो आपकी पढ़ाई और बाकी फील्ड में भी काफी सपोर्ट करता है। इवन आपकी स्टडीज में आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होता है। यूजुअली जैसे कहा जाता है कि अपन जिम जाते हैं टू बिल्ड अवर फिजिकल मसल्स,
1: हाँ
0: तो सेम अगर आप चेस खेलते हैं तो यू कैन मेक योर मेंटल मसल स्ट्रांग। तो ये चेस आपके ओवरऑल में भी काफी सपोर्ट करता है। और इंटरनेशनल चेस डे पे मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, पूरे जो भी श्रोताए हैं अपने आकाशवाणी इंदौर के और भी पूरे वर्ल्ड में चेस प्लेयर्स को। चेस का हम लोग का फीडे का एक कोट है जिसको कहते हैं टैगलाइन है कि वी आर वन फैमिली।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जानकर, बहुत अच्छा लगा अक्षत जी आपसे बात करके। अब हम जानना चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गीत जो आप इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं।
0: इकबाल मूवी का एक सॉन्ग है आशाएं, तो वो काफी मुझे पसंद है। और जस्ट इससे रिलेटेड मैं एक अभी बताऊंगा, एक काफी बड़ी न्यूज है, मैं उसे स्लिप हो गई। रिसेंटली एमपी के एक प्लेयर हैं आशुतोष सिंह जी, उनका इंडियन ओलंपिक टीम में सिलेक्शन हुआ है फ्यू डेज बैक। तो ये एमपी के लिए काफी गौरव का विषय है। और मई में काफी बड़ा चैंपियनशिप हुआ था इंदौर में, नेशनल CFPD, जो फिजिकली डिसेबल्ड, जो स्पेशली एबल्ड प्लेयर्स हैं उनके लिए होता है। तो उन्होंने उसमें खेल के अपना जगह कंफर्म की है। और ये एमपी के लिए बहुत गौरव की बात है कि इतना बड़े ओलंपियाड में एमपी के प्लेयर जा रहे हैं, और मेरी नजर में वो सेकंड प्लेयर हैं एमपी से जो ओलंपियाड में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पहले मोहम्मद रफी खान जी थे भोपाल से, उन्होंने 1982 पे माल्टा ओलंपियाड में एमपी को रिप्रेजेंट किया था और इंडिया के लिए पहला ओलंपियाड मेडल वो जीत के लाए थे, सिल्वर मेडल। तो मुझे भी आशाएं हैं आशुतोष सिंह जी से कि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और एमपी और देश का नाम रोशन करेंगे कजाकिस्तान ओलंपियाड में।
1: क्या बात है, बिल्कुल हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, उम्मीद करते हैं, पूरी आशा रखते हैं कि वो जीत कर जरूर आए, हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन करे। आपको सुनवाती हूँ आपकी पसंद का गीत, मेरे साथ एक बार कहिए गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: गुड मॉर्निंग इंदौर।

0: आखिर में चलते चलते आप सभी श्रोताओं को सुनवाती हूँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी सैरा डगरिया का ये बहुत ही प्यारा सा संदेश।
1: नमस्ते, मैं सैरा डगरिया इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और वुमन फिडे मास्टर हूँ। मुझे शतरंज का शौक बचपन से ही रहा है और मैंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में भारत के लिए खेला है। मैं 20 बार स्टेट चैंपियन रह चुकी हूँ और पिछले ही साल मुझे 2 टाइटल्स प्राप्त हुए हैं, वुमेन कैंडिडेट मास्टर और वुमेन फिडे मास्टर का। मैंने वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप, वेस्टर्न एशियन चेस चैंपियनशिप और एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप में भारत के लिए खेला है और कई मेडल्स प्राप्त किए हैं। आज विश्व शतरंज दिवस की मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं बच्चों और युवाओं से सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि शतरंज जरूर सीखें। शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं, एक सोचने और सही फैसले लेने की कला है। हर जीत हमें खुशी देती है और हर हार हमें नई सीख की प्रेरणा देती है। शतरंज हमें सिर्फ तेज नहीं बनाता बल्कि हर चुनौती का सामना हिम्मत और समझदारी से करना सिखाता है। आइए इस विश्व शतरंज दिवस पर हम सभी मिलकर शतरंज को हर घर तक पहुँचाएं और भारत को चेस की दुनिया में अलग ऊंचाइयों तक पहुँचाएं।
0: तो सैरा बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी सैरा डगरिया। श्रोताओं, शतरंज हमें जीतने से पहले सोचना सिखाता है, हारने के बाद सीखना सिखाता है और हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना सिखाता है। शायद यही वजह है कि इसे खेल नहीं जीवन की कला भी कहा जाता है। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए

0: विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए सुषमा व्यास को, नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर,
2: गुड मॉर्निंग,
3: गुड मॉर्निंग,
1: गुड मॉर्निंग।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे समाचार प्रभात, और 8:15 पर सुनिएगा मॉर्निंग न्यूज़।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमरीका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
2: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
3: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए

0: जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
1: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
2: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
1: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाओ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्डोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्डोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
2: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार 8वीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
3: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं

0: ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
1: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से चार बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई, पांच अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले तीन दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ते ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल

0: landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. 8 people still missing. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं, आपकी रेडियो साथी वंदना तिवारी। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 2 अलग अलग प्रकार के गीत। एक तो हम आपको सुनवाएंगे गीता दत्त की आवाज़ के कुछ गाने, और साथ ही हम आपको सुनवाएंगे फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए कुछ फिल्मी गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम इस गीत के साथ कर रहे हैं, लीजिए सुनिए।

दोस्तों, गीता दत्त का नाम लेते ही सबसे पहले जो बात हमारे मन में आती है वो है उनकी आवाज़ की सादगी। उन्होंने कभी भी अपनी गायकी पर बनावटीपन का रंग नहीं चढ़ाया। उनकी आवाज़ सीधे दिलों तक पहुंचती थी। यही वजह है कि इतने दशकों बाद भी आज भी उनके गीत पुराने नहीं लगते। अभी जो गीत आपने सुना, ये गीत ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ समय पहले ही हमने सुना था, लेकिन जबकि इसे हम कब से सुनते चले आ रहे हैं। संगीतकार सचिन देव बर्मन, ओपी नैयर, हेमंत कुमार और मदन मोहन जैसे दिग्गज संगीतकारों ने गीता दत्त की आवाज़ का भरपूर उपयोग किया। हर संगीतकार के साथ

उनकी गायकी का एक अलग रंग दिखाई देता है। अगर हम बात करें ओपी नैयर की, तो ओपी नैयर के संगीत में उनकी आवाज़ चंचल और मादक हो जाती थी, तो सचिन देव बर्मन की धुनों में उन्हीं गीता दत्त की आवाज़ बेहद संवेदनशील और आत्मीय लगती थी। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
2: सीकेवाईसी मतलब?
3: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
2: वाह, आरबीआई कहता है
3: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला।

0: कदम।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: श्रोताओं, हम आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त के गाए हुए कुछ फिल्मी गीत। श्रोताओं, भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में गीता दत्त का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। अपनी मधुर, भावपूर्ण और दिल को छू लेने वाली आवाज़ के कारण उन्होंने हिंदी सिनेमा को अनेक कालजयी गीत दिए। गीता दत्त का मूल जो नाम था वो था गीता घोष रॉय चौधरी। उनका जन्म 23 नवंबर 1930 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल, जो अब बांग्लादेश में है, वहाँ के फरीदपुर में एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था। 1942 में उनका परिवार मुंबई आकर बस गया और यहीं से उनके संगीत के जीवन की शुरुआत हुई। मुंबई में एक दिन संगीतकार हनुमान प्रसाद ने गीता की आवाज़ को सुना और उन्हें फिल्मों में गाने का अवसर दिया। 1946 में फिल्म भक्त प्रहलाद से उनका फिल्मी सफ़र शुरू हुआ, लेकिन 1947 में फिल्म दो भाई के गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया, इस एक गीत ने उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे हिंदी सिनेमा की अग्रणी पार्श्व गायिकाओं में शामिल हो गईं।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, बहुत कम लोग जानते हैं कि गीता दत्त ने हिंदी के अलावा बंगाली भाषा में भी बहुत सारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत गाए हैं। बंगाल में आज भी उनके गीत उतने ही सम्मान और प्रेम से सुने जाते हैं जितने हिंदी फिल्मों के गीत। उनकी आवाज़ में एक ऐसी आत्मीयता थी जो सीधे श्रोता के मन को छू लेती थी, और यही कारण है कि उनके गीतों को आज भी लोग उतने ही प्यार से सुनते हैं, सराहते हैं। एक कलाकार के जीवन में सफलता और संघर्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। गीता दत्त का जीवन भी इससे अछूता नहीं रहा। व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने संगीत के प्रति अपना समर्पण कभी नहीं छोड़ा। उनकी आवाज़ में जो दर्द सुनाई देता है वो शायद उनके जीवन के अनुभवों की ही गूंज थी, इसीलिए उनके गाए विरह गीत आज भी श्रोताओं की आँखें नम कर देते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं ऐसा ही एक गीत।

श्रोताओं, गीता दत्त ने 1953 में अपने समय के प्रसिद्ध फिल्म कलाकार और फिल्म निर्देशक गुरु दत्त से विवाह किया। उनके निजी जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए जिसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। फिर भी संगीत के प्रति जो उनका समर्पण था वो उन्होंने बनाए रखा, जैसा कि हमने आपसे अभी पहले भी कहा। और केवल 41 वर्ष की आयु में उन्होंने 20 जुलाई 1972 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। श्रोता, उनका जीवन भले ही छोटा रहा लेकिन उनकी आवाज़ आज भी भारतीय संगीत प्रेमियों के दिलों में अमर है। वे एक ऐसी गायिका थीं जिन्होंने अपनी गायकी से हर भावना को जीवंत कर दिया और भारतीय फिल्म संगीत को अमूल्य धरोहर प्रदान की। हम आकाशवाणी परिवार की ओर से अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करते हैं।

श्रोताओं, आज 20 जुलाई है और आज हम गीता दत्त के साथ साथ याद कर रहे हैं फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार को। श्रोताओं, जिंदगी में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनकी फिल्मों से नहीं होती बल्कि उन भावनाओं से होती है जो वो अपने दर्शकों के दिलों में छोड़ जाते हैं। राजेंद्र कुमार ऐसे ही कलाकार थे। उनकी मुस्कान में अपनापन था, उनकी आंखों में संवेदना थी और उनके अभिनय में सहजता। शायद यही कारण है कि उन्हें केवल एक सफल अभिनेता नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग का एक ऐसा सितारा माना जाता है जिसकी चमक आज भी बरकरार है।

0: इसे पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, राजेंद्र कुमार ने अपने लंबे फिल्मी सफर में अनेक यादगार फिल्में दी। धूल का फूल, दिल एक मंदिर, आरजू, मेरे महबूब, आई मिलन की बेला, सूरज, झुक गया आसमान और कन्यादान जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और सफलता के उस मुकाम पर वो पहुंचे जहां हर निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करना चाहता था। राजेंद्र कुमार के अभिनय की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सादगी। वे बिना ज़्यादा संवादों के सिर्फ अपनी आँखों और चेहरे के भाव से दृश्य को जीवंत बना देते थे। शायद यही वजह है कि उनके निभाए किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार के सुनहरे दौर में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ उनकी पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बन गई थी। रफ़ी साहब की मधुर आवाज़ और राजेंद्र कुमार की भावपूर्ण अदायगी ने मिलकर ऐसे गीत दिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुनगुनाए जाते रहेंगे।

श्रोताओं, समय के साथ कलाकार विदा हो जाते हैं, लेकिन उनकी कला हमेशा जीवित रहती है। राजेंद्र कुमार भी ऐसे ही कलाकार थे, जिनकी फिल्में और गीत आज भी उसी अपनत्व के साथ सुने और देखे जाते हैं। आज उनकी जन्म तिथि है, आज उनकी जन्म जयंती पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके अभिनय तथा हिंदी सिनेमा में दिए गए उनके अमूल्य योगदान को नमन

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, इस संदेश

देश के साथ ही इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम से हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन फिल्म गीत हम आपको और भी सुनवाएंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम में, जिसका नाम है MH हॉटलाइन। और ये कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 10:05 पर। 10:05 से लेकर 11 बजे तक ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आप ज़रूर इस कार्यक्रम से जुड़ें और हमें कॉल करें और सुनें अपनी पसंद के गाने। इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। जी हाँ, 2710223 और 2710224 यह है टेलीफोन नंबर। STD कोड है 0731। इस STD कोड के बाद आप टेलीफोन नंबर लगाएं और हमें कॉल करें और सुनें अपनी पसंद के हिंदी फिल्मी गाने। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए मराठी कार्यक्रम।

0: अभी आपने सुना मराठी कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बांसुरी वादन। कलाकार हैं रवि गरुड़। इनसे सुनिए राग यमनी बिलावल। लेकिन शास्त्रीय संगीत के पहले आइए सुने ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी

0: फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: संदेश की बात लीजिए, आप सुनिए बांसुरी वादन, कलाकार हैं रवि गरुड़। इनसे सुनिए राग यमनी बिलावल।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, कलाकार थे रवि गरुड़। इनसे आपने सुना राग यमिनी बिलावल। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: कटनी जिले की चिट्ठी। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कटनी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मानसून की। जिले में इस साल मानसून की रफ्तार

0: पिछले साल के मुकाबले काफी धीमी रही है। 1 जून से 19 जुलाई तक जिले में सिर्फ 245.4 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 606 मिलीमीटर बारिश हुई थी। सलीमनाबाद में सबसे ज्यादा और बड़वारा में सबसे कम बारिश दर्ज की गई। अब बात एक और बड़ी और ऐतिहासिक परियोजना की। कटनी के सलीमनाबाद में बन रही देश की सबसे लंबी भूमिगत जल सुरंग अब लगभग पूरी हो चुकी है। करीब 12 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में सिर्फ 2 मीटर खुदाई बाकी है। सुरंग पूरी होने के बाद पहली बार बरगी बांध का पानी बिना किसी पंप या लिफ्ट के सीधे विंध्य क्षेत्र तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी इस मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। करीब 15 साल से बन रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना से हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। सुरंग के जरिए कटनी सहित जबलपुर, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा जिले के 1450 गांवों तक नर्मदा का पानी पहुंचेगा। इससे करीब 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। अकेले कटनी जिले की 21,823 हेक्टेयर जमीन को पहली बार नर्मदा का पानी मिलेगा। जिला प्रशासन का ये कहना है कि परीक्षण के बाद अक्टूबर 2026 से पानी की आपूर्ति शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। कटनी जिले में बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए दस्तक और स्टाफ डायरिया अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। स्वास्थ्य विभाग और आंगनवाड़ी की संयुक्त टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों की स्वास्थ्य जाँच कर रही है। बच्चों को ORS, जिंक की गोलियाँ, विटामिन ए और आयरन सिरप भी दिया जा रहा है। बारिश के पानी को बचाने के लिए नगर निगम ने शहरवासियों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की अपील की है। निगम का कहना है कि बारिश के हर बूंद भविष्य के लिए बेहद कीमती है। घरों, दुकानों, संस्थानों और सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा और आने वाले समय में पानी की कमी से राहत मिलेगी। कटनी जिले के ग्रामीण इलाकों में अब शौचालय निर्माण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आज से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान जिन पात्र परिवारों के पास अब तक शौचालय नहीं है उनका सर्वे किया जाएगा। ऐसे परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए सरकारी सहायता भी दी जाएगी। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को नई सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि DAP की जगह 3 बोरी SSP और 20 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इससे खाद का खर्च कम होगा और फसल को जरूरी पोषक तत्व ही मिलेंगे। SSP में फास्फोरस के साथ सल्फर और कैल्शियम भी मिलता है, जिससे पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। कटनी में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 37 पात्र हितग्राहियों का परीक्षण कर उन्हें जरूरत के अनुसार उपकरण देने के लिए चयनित किया गया। इसके बाद बरही और डीमरखेड़ा में भी ऐसे शिविर लगाए जाएंगे। जिले के सभी पात्र दिव्यांगों का चरणबद्ध तरीके से परीक्षण कर उन्हें उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। कटनी पुलिस को बेहतर कार्यप्रणाली के लिए बड़ी उपलब्धि मिली है। जिले के 13 पुलिस थानों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय और 2 SDOP कार्यालयों को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ये सम्मान साफ सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन, बेहतर व्यवस्था और जनता के अनुकूल माहौल के आधार पर दिया गया है। अब बात पशुपालकों के लिए चलाई गई खास पहल की। कटनी जिले में 13 से 18 जुलाई तक दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान विभाग की टीमों ने 5,515 पशुपालकों के घर पहुंचकर आधुनिक पशुपालन की जानकारी दी। पशुओं की बेहतर नस्ल, संतुलित आहार और दूध उत्पादन बढ़ाने के आसान तरीके भी बताए गए। विभाग का कहना है कि आधुनिक तकनीक अपनाने से पशुपालकों की आय बढ़ेगी और डेयरी व्यवसाय अधिक लाभकारी बनेगा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे कटनी जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।
2: MH हॉटलाइन के सभी श्रोताओं को वंदना तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं हाजिर हैं लेकर हम आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर नोट कीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। जी हाँ, 2710223 और 2710224 ये है हमारे टेलीफोन नंबर जिन पर कॉल करके आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के हिंदी फिल्मी गाने। और STD कोड है इंदौर शहर

0: 0731 एसटीडी कोड है। तो वो श्रोता जो इंदौर शहर के बाहर रहते हैं वो कृपया वो एसटीडी कोड 0731 ज़रूर लगाएं और फिर हमसे बात करें कॉल करके। तो आइए देखें कि हमारा ये जो पहला कॉल है ये कहाँ से है और किसने किया है। हेलो एमएच हॉटलाइन। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार, छिपा कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री बोल रहा हूँ।
0: ओहो खत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हैं तिवारी मैडम जी, अब आपकी मधुर आवाज सुन रहे हैं।
0: धन्यवाद खत्री जी, कार्यक्रम में पहला कॉल है।
1: बहुत अच्छी आवाज आपकी है
0: जी, थैंक यू।
1: अच्छी लगती है।
0: देखिए हमारी आवाज तब और भी अच्छी हो जाती है जब हमसे हमारे ऐसे पुराने पुराने प्यारे प्यारे श्रोता जुड़ जाते हैं।
1: जी जी जी जी,
0: आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं।
1: पुराने, हाँ जी, पुराने चावल क्या होता है, जल्दी पक जाते हैं, स्वाद भी अलग रहता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: और हमारे भी क्या है कि भाई जब सुनने में अच्छा लगता है कि भाई नए नए हमसे भी जुड़े हैं
0: जी,
1: तो हमको भी लगता है कि भाई हमारी नया परिवार जुड़ते जा रहा है
0: जी। खत्री जी, अगर आप रेडियो के आसपास हैं तो कृपया थोड़ा सा दूर हो जाएं वहाँ से।
1: जी मैं तो बहुत दूर हूँ।
0: अच्छा चलिए ठीक है,
1: रेडियो घर के अंदर चल रहा है, मैं घर से करीब 25 मीटर दूर हूँ।
0: अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये मुझे गीत सुना है अपनापन का।
0: जी कौन सा?
1: आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है
0: जी,
1: आते
0: बहुत
1: जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
0: बहुत बहुत बढ़िया गाना है।
1: आपका कार्यक्रम नए नए श्रोता भी सुन रहे हैं
0: जी,
1: हमारी मुबीन आपा है, नसरीन है, वसीम है, कबीर है और सब सुन रहे हैं।
0: अच्छा चलिए, सबको हमारी तरफ से सप्रेम नमस्ते जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं
1: जी।
0: तो आपकी पसंद का गीत सुने
1: जी। जी
0: जी, जी।

0: हेलो, MH हॉटलाइन। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, MH हॉटलाइन।
1: जी, वंदना जी को नमस्कार।
0: जी
1: हेलो
0: नमस्कार, कौन
1: अरमान
0: बोल रहे हैं?
1: जी, मैं अरविंद अग्रवाल जी।
0: जी अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद। मैं एकदम
0: कैसे हैं आप अग्रवाल जी?
1: बढ़िया है, आप कैसे
0: जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा,
1: हैं?
0: कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी, फिल्म का नाम रहेगा आशिकी।
0: जी, और गाना कौन सा?
1: नजर के सामने जिगर के पास।
0: जी हम जरूर सुनवाएंगे, कुमार सानू की जो आवाज़ में, ये
1: जी
0: अनुराधा पौडवाल है ना?
1: जी
0: जी, हम जरूर सुनवाएंगे। अच्छा, तो हमें याद है आपने बताया था पहले कि आपकी शायद वहाँ कोई दुकान है ना?
1: जी किराना की दुकान
0: जी
1: है।
0: जी जी अच्छा, पिछली बार कब आपने कॉल किया था हमें?

0: दिन हो गया लग नहीं रहा था, अभी ये बंद था 23-2-3 वाला नंबर, काफी दिन से नहीं लग रहा था।
1: अच्छा,
0: तो अब इसमें लग जाता था, उठ जाती थी तो वो रिंग जाती रहती, उठता नहीं था फोन।
1: अच्छा चलिए, अच्छा अग्रवाल जी आपका जो गीत है वो हम आपको सुनवाते हैं, लीजिए अपनी पसंद का गाना सुनिए।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो, MH हॉटलाइन। हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही हूँ।
0: जीनत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ।
0: अच्छे हैं? अच्छा, चलिए, हमेशा आप अच्छी ही रहे, हमारी यही दुआ है
1: जी।
0: अच्छा बताएं, क्या कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है बलमा और

0: वाह, बड़ा अच्छा अंदाज है आपका फरमाइश करने का। वैसे ये गाना कितना अच्छा है ना, हम यही चाहते हैं हमारे अपनों के लिए कि अगर जीवन जब तक रहे तो पहले हम इस दुनिया से जाएं, है ना, बाकी सब सलामत रहें।
1: जी, और आप कैसी हैं?
0: जी मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, जैसी आप एकदम प्यारी वैसे मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा जीनत जी, हम आपके पसंद का गाना आपको सुनवाते हैं, लीजिए सुनिए।
1: जी

0: हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: वंदना जी, मैं आप बोल रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव महू से। कैसी हैं आप?
0: जी मैं अच्छी।

0: के ऐसे प्यार को भूल जाओ भूल जाओ, हम तेरे प्यार में तारा आलम पर आप हमें मत भूलिएगा।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा लग रहा था, आप गा रहे थे, मेरा तो मन कर रहा है कि यही चलने दीजिए, हम नहीं सुनाते लता जी की आवाज का गाना, आप ही गा दीजिए। चलिए ठीक है, हम आपकी इच्छा पूरी करते हैं फिर, क्या हम आपको सुनवाते हैं लता जी की आवाज का ये गीत। और रही बात भूलने की, तो हम आपको कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपका और हमारा एक अटूट नाता है, रेडियो और श्रोता जी, रेडियो और श्रोता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
0: एक दूसरे के पूरक हैं।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने,
0: धन्यवाद
1: जी, नमस्कार।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: अच्छा, आपके पास रेडियो चल रहा है?
1: थोड़ा सा दूर में है।
0: अच्छा, चलिए ठीक है, थोड़ा सा दूर होना जरूरी है, वरना फिर वो इको का साउंड आता है तो फिर ठीक से समझ नहीं आती आपकी बात।
1: हाँ जी।
0: अच्छा बताइए कि क्या हालचाल है आपके?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: अच्छा, और आपके वहाँ कैसा है मौसम छत्तीसगढ़ में?
1: अभी 3-4 दिन में अच्छी बारिश हुआ है
0: जी,
1: तो ये थोड़ा सा काफी जरूरत था।
0: जी हाँ, बारिश की जरूरत तो इस समय पूरे देश में है, सभी को जरूरत है बारिश की, क्योंकि बारिश रूठ गई है थोड़े दिनों से। नाराज हो गई है।
1: अब उम्मीद भी कर सकते हैं, प्रकृति के साथ तो कोई जबरदस्ती होता नहीं।
0: जी,
1: और प्रकृति से हमेशा लगाव रखें, और हम तो जैसे खेती बाड़ी करते हैं तो लगातार प्रकृति के बीच में रहना होता है, जाना होता है
0: जी।
1: और उस हरियाली को नजदीक से हमेशा महसूस करते हैं
0: जी।
1: तो प्रकृति से काफी प्यार है।
0: बिल्कुल जी, होना ही चाहिए। प्रकृति से अगर हम लगाव नहीं रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि हम प्रकृति के बिना अलग होकर, मतलब दूर होकर प्रकृति से हम नहीं जी सकते
1: जी,
0: है ना। तो प्रकृति से लगाव होना हर एक के लिए जरूरी है। हर एक को चाहिए कि पेड़ लगाएं, मतलब यथासंभव जितना हम कर सकते हैं वो हम करें
1: जी,
0: वरना फिर ऐसे ही उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे कि बस बारिश हो जाए तो अच्छा, और उसके लिए कुछ प्रयास तो हम करते नहीं
1: जी।
0: अच्छा योगेश जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है निगाहें और गीत के बोल हैं, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया।
0: अच्छा,
1: और एक दो नाम, दो तीन नाम लेना चाहेंगे अगर आपकी अनुमति हो तो।
0: जी प्लीज।
1: हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के तमाम साथी, और श्रीपाल गोयल जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, रंजीता जी हैं, रानू जी हैं, इन सभी के लिए।
0: बिल्कुल जी, आप सभी के लिए हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना, लीजिए सुनिए।
1: शुक्रिया।

0: हेलो MH हॉटलाइन। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार नमस्कार बहन जी, नमस्कार
0: जी। कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश से हमारी वंदना दीदी का भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
0: अच्छा बहुत बहुत स्वागत है आपका चंदेल जी, बड़ा अनोखा अंदाज है आपका।
1: सब सब आप लोगों की दुआ है, आशीर्वाद है।
0: अच्छा बताएं आप कैसे हैं मांगीलाल जी?
1: मैं आपकी दुआ और भगवान की कृपा से बड़ी, और मैं ईश्वर से यही आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया हों।
0: जी जी जी, बस भगवान सबको अच्छा रखें, सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, है ना जी। अच्छा आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज फिल्म का नाम तो है प्यार का मौसम
0: जी,
1: और गाने के बोल हैं तुम बिन जाऊं कहां दुनिया में, ऐसा ही कुछ बोल है मतलब।
0: जी हाँ जी हाँ, बहुत प्यारा गाना है ये, अच्छा गाना है।
1: रफी साहब की आवाज में है ये।
0: जी जी जी,
1: अच्छा लगता है मुझे, मैं पुराने गीत ज्यादा सुनता हूँ, बहुत बढ़िया लगते हैं मतलब।
0: अच्छा अच्छा, तो पुराने कौन कौन से मतलब जो गायक कलाकार हैं, कौन से आपको पसंद है?
1: ये पुराने में तो ये रफी साहब है, लता जी है, आशा भोंसले, किशोर कुमार है, मुकेश जी है, यही इनके ही ज्यादा अच्छे लगते हैं।
0: जी हाँ सही बात है, जो पुराने गाने में जो बात है वो मतलब कभी हम भूल नहीं पाते, उनका जो गीत है संगीत बोल है, हाँ उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता।
1: संगीत ये बोल संगीत बढ़िया होते, हालांकि नए गानों में भी कुछ गाने बढ़िया हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: 20% तक नए भी बढ़िया हैं, लेकिन नए में कुछ ज्यादा धूम धड़ाका है, अच्छा नहीं लगता है।
0: देखिए हर तरह के लोग होते हैं ना, किसी को धूम धड़ाके गाने पसंद है, किसी को जैसे आपकी पसंद जैसे है पुरानी तो वैसे पसंद है,
1: अपनी अपनी पसंद।
0: जी जी जी बिल्कुल, वही बात है कि अपनी अपनी पसंद है,
1: तो जी कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज बोलिए।
1: लोकेन वर्मा जी हैं नाना खेड़ा बस स्टैंड उज्जैन से, शेख हैदर खान जी हैं सुराना जिला रतलाम से, और गजराज लोधी जी हैं, कीर्ति सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी ठीक है, तो सुनिए अपने दोस्तों के साथ ये गाना
1: जी।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन, हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो नमस्ते दीदी
0: जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से आपको नीम श्रोता लतीफ अहमद रैना।
0: जी लतीफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कश्मीर से बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ, कश्मीर सोनामर्ग, यहाँ पे आज सुबह से बारिश, दो दिन से बारिश ही बारिश।
0: ओहो क्या बात है। अभी हम हमारे किसी श्रोता से बात कर रहे थे बारिश के बारे में, यहाँ बारिश नहीं हो रही है और देखिए वहाँ दो दिन से लगातार बारिश हो रही है।
1: हाँ, यहाँ पे जम्मू में और रजौरी, पुंछ और डोडा, कश्तवाड़ में बहुत बाढ़ आया है।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, बहुत नुकसान भी हुआ है।
0: जी हाँ, ये तो हमें पता है।
1: हाँ, वो तो मोबाइल पे आपने देखा होगा।
0: जी जी जी,
1: बाढ़ आया है
0: जी,
1: बहुत नाला आया उतर के, उसमें बहुत बाढ़ आया।
0: तो आप और आपका परिवार सब ठीक है वहाँ पे?
1: हाँ, यहाँ पे यहाँ कश्मीर में तो अभी मौसम ठीक ही है, लगभग बारिश तो आता है
0: जी,
1: मगर वहाँ पे मौसम गड़बड़ी है।
0: जी हाँ जी हाँ, कहीं कहीं पे बहुत तेज बारिश है तो उसके कारण फिर सैलाब भी आ जाता है ना वहाँ पे।
1: नहीं, आसमानी बिजली गिरा ना वहाँ पे, उसी वजह से इतना पानी आया वहाँ रजौरी पुंछ।
0: जी
1: हाँ, बहुत नुकसान, गाड़ी भी उसमें गया और बहुत लोग भी मारा है वहाँ पे।
0: जी
1: हाँ जी, इतना नुकसान हुआ है। अभी यहाँ कश्मीर में तो अभी बचा है
0: जी,
1: हमारे जिले में भी यात्रा करने के लिए आते हैं ना बहुत यात्रा।
0: आप कौन से जिले से हैं लतीफ जी?
1: जिला गांधरबल, जो सोनामर्ग अमरनाथ यात्रा करने के लिए आते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी जगह से आप बात कर रहे हैं। जब आप हमसे बात करते हैं वहाँ कश्मीर से, तो हमारे जो आँखें हैं हमारी आँखों में कश्मीर का कहीं ना कहीं कोई सीन हमारी आँखों में आ जाता है और हम सीधे वहीं पहुँच जाते हैं।
1: अच्छा, कभी आइए ना कश्मीर में यात्रा करने के लिए।
0: जी हम आ चुके हैं वहाँ पे यात्रा के लिए एक बार। अच्छा लतीफ जी, अभी ये बताएं कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: हमने सुना है गाना दिल तो पागल है, हाँ ये पागल है, वो गाना सुना है, टाइटल सॉन्ग सुना, ये गाना इस फिल्म का ही नाम है।
0: टाइटल सॉन्ग सुनना है आपको? बिल्कुल, हम आपको जरूर सुनवाते हैं।
1: और मेरे साथ है लोकिंदर वर्मा, नाना खेड़, बस स्टैंड उज्जैन
0: जी,
1: बहुत बड़ा श्रोता है वो।
0: देखिए हमारे लिए सभी श्रोता हमारे एक बराबर हैं और सभी हमारे से एक समान प्रिय हैं, क्योंकि सभी हमें पत्र लिखते हैं, हमें कॉल करते हैं, है ना? तो हमारे लिए सभी श्रोता हमारे एक बराबर हैं। आपकी पसंद का गीत आपको सुनवाएं, दिल तो पागल है फिल्म का टाइटल सॉन्ग।
1: शुक्रिया मैम।
0: जी
1: थैंक यू
0: जी।

0: हेलो, MH हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम बालोदा लखा, जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं?
1: अब बस बढ़िया है मैडम।
0: अच्छा,
1: ये सोयाबीन की निंदाई गुड़ाई चल रही है या?
0: जी।
1: और पानी की उम्मीद कर रहे हैं, बरकरार के आ जाए तो बहुत बढ़िया
0: जी। तो अभी इस समय आप अपने खेत में हैं?
1: अभी खेत में बैठे निंदाई गुड़ाई कर रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है कि आप अपना काम भी करते जा रहे हैं और रेडियो भी सुनते जा रहे हैं।
1: हाँ हाँ, वो याद आ गया तो मैंने कहा कि सर स्पॉट लाइट पे हम लगा दें तो वो
0: जी। अच्छा,
1: खुशी हुई आज।
0: जी जी, बताएं आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म प्यार जितना नहीं, चाहे लाख तोहफा आए चाहे जाने जाए।
0: अच्छा अच्छा,
1: बहुत बढ़िया
0: जी, हम जरूर सुनवाएंगे। अच्छा, आपके साथ कौन कौन है और वहाँ खेत में?
1: हमारे साथ में हमारी मैडम भी है पास में, वो भी निंदाई गुड़ाई कर रही है।
0: अच्छा,
1: तो बात कर रही है।
0: हाँ जी बिल्कुल जरूर।
2: हेलो।
0: हेलो,
2: हाँ
0: जी नमस्कार, कौन बोल रही है?
2: सोयाबीन।
0: हाँ, अपना नाम बताइए।
2: हमारी
0: हेलो,
2: हमारा नाम पवन का है।
0: अच्छा अच्छा,
2: और अच्छे निंदाई गोड़े कर रहे हैं। देखो पानी नहीं गिर रहा है, बहुत दिन हो गए।
0: जी जी, बारिश की उम्मीद तो हम सभी लोग कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से बारिश हो जाए ताकि सबकी जो तकलीफें हैं वो दूर हो।
2: हाँ दूर हो जाए।
0: हाँ
2: क्या करें, माने की क्या कहते हैं
0: जी। हाँ। आपकी आवाज़ में बहुत इको आ रहा है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।
2: हाँ अच्छा गाना सुनवा
0: जी, सुनिए।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन। हेलो
1: हेलो। हाँ नमस्कार जी,
0: जी, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं?
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता कोटा से, राजस्थान।
0: भूपेंद्र कुमार गुप्ता जी बोल रहे हैं?
1: हाँ कोटा, राजस्थान।
0: कोटा, राजस्थान से। ओके, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया, आप लोग कैसे हो?
0: जी, हम भी एकदम बढ़िया हैं।
1: बारिश हो रही है इंदौर में?
0: नहीं जी, बारिश तो नहीं हो रही है। कुछ दिन बारिश हुई थी लगातार, और उसके बाद फिर बारिश गायब हो गई, और अब लौट के आने का नाम नहीं ले रही।
1: यहाँ तो बहुत उमस हो रही है।
0: अच्छा,
1: ठीक
0: आपके यहाँ वैसे
1: है।
0: भी मतलब थोड़ा मौसम गर्म ही रहता है ना अधिकतर?
1: हाँ उमस हो रही।
0: जी, तो चलिए जल्दी से आ जाएगी बारिश। उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जल्दी बारिश आ
1: अगर
0: जाए।
1: आएगी सही,
0: जी,
1: इंतजार करो तो बढ़िया है, मजा आएगा। इंतजार
0: जी। अच्छा
1: संतुष्ट करेगी बारिश।
0: बताएं, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: दिल तेरा दीवाना था,
0: जी, कौन सा?
1: मासूम चेहरा कातिल अदाएं, मोहम्मद
0: अच्छा, ये लता जी और मोहम्मद रफी की आवाज में
1: मोहम्मद
0: है, वही ना?
1: रफी साहब, लता जी की आवाज।
0: जी हाँ, हम जरूर आपको सुनवाएंगे।
1: हाँ बहुत कम सुनने को मिलते हैं ये गाने।
0: जी, लेकिन ये गाने जब हम सुनते हैं तो फिर हम जैसे खो जाते हैं। ये इतने प्यारे मधुर
1: हाँ
0: गाने हैं ये, है ना?
1: सुनना आप भी सुनना।
0: हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर, हम भी सुनेंगे। आप आपकी फरमाइश का प्यारा सा गाना हम ज़रूर सुनेंगे और आपको भी सुनवाएंगे। अच्छा, आप बताएं, आप क्या करते हैं?
1: हमें सीनियर सिटीजन हूँ,
0: जी,
1: पुराने गाने ज्यादा सुनते हैं हम।
0: अच्छा, तो आपकी पसंद का गाना सुनवाएं हम आपको?
1: हाँ बिल्कुल, धन्यवाद आपको।
0: जी,

0: हेलो, MH हॉटलाइन
1: जी नमस्ते दीदी।
0: जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ दीदी।
0: जी सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी दीदी, आप मुझे सुनो दीजिए। फिल्म का नाम है दीदी रंग, और गीत के बोल रहेंगे तुम्हें देखे मेरी आंखें इसमें क्या मेरी खता है।
0: जी हम जरूर सुनवाएंगे। अच्छा बताएं सतीश जी, आप क्या करते हैं?
1: दीदी मैं बिजली ऑफिस में ऑपरेटिंग का काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो अभी आप ऑफिस नहीं गए?
1: नहीं दीदी, ड्यूटी से आ गया हूँ, बस घर पे बैठ के बस कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूँ अभी।
0: इतनी सुबह वापस आ गए?
1: जी सुबह 7 बजे छुट्टी हो जाती है दीदी मेरी, शाम को 7 से 7 तक रहती है।
0: अच्छा आपकी नाइट शिफ्ट है? ओके।
1: जी नाइट शिफ्ट पे रहती
0: है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी आप रेडियो सुन रहे हैं, फिर आप सोएंगे कब?
1: दीदी थोड़ा समय मिल जाता है नाइट में और दोपहर में, 1-2 घंटे का समय निकाल लेते हैं, क्योंकि कि रेडियो एक हमारा ऐसा साधन है कि इससे हमारी नींद उड़ जाती है।
0: तो इतनी सी नींद में फिर आपकी नींद पूरी हो जाती है?
1: जी जी हो जाती है दीदी। वो क्या है, अब आदत जैसी बनी है दीदी, नाइट में बहुत दिन से काम करते हैं तो 1-2 घंटे नींद भी हो गई तो बहुत अच्छा हो जाता है।
0: अच्छा
1: जी।
0: लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, तो क्या आपकी नींद इतनी हो जाती है रात की और सुबह की मिला के, दिन की मिला के?
1: नहीं हाँ दीदी पर्याप्त होती है, हमको कोई दिक्कत नहीं होती है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी मतलब कम नींद में भी आपके शरीर की जो आवश्यकता है नींद की वो पूरी हो रही है।
1: पूरी हो जाती है।
0: चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।
1: थैंक यू
0: जी।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: जी सूर्य प्रताप जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं जल्दी से बता दीजिए।
1: दिलवाले मूवी का है, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा यार।
0: जी हम जरूर आपको सुनवाएंगे, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गाना।

0: कार्यक्रम का समय अब समापन की ओर है। सूर्य प्रताप जी, हम आपसे एक क्षमा चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का ही गाना नहीं सुनवा सके, लेकिन हम किसी और कार्यक्रम में ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। इस समय इस कार्यक्रम से हमें विदा दीजिए और मैं आपकी रेडियो साथी वंदना तिवारी आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी इंदौर है। हमारा अगला प्रसारण अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।
2: 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ DTH के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
3: नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
4: सर, मैं नेपाल पुलिस से तिलक राणा बोल रहा हूँ।
3: तिलक राणा जी कहाँ से?
4: नेपाल पुलिस सागर।
3: सागर जिले से?
4: सागर से जी।
3: जी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
4: सर आज मुझे वो वाला सुना दीजिए आप, क्या कहते हैं वो कौन थी का?
3: वो कौन थी फिल्म का नाम है।
4: हाँ, और गीत मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज में है।
3: हाँ,
4: वो गीत के बोले छोड़ कर तेरे प्यारे का दामन, ये हाँ, बता दे कि हम कहाँ जाएं।
3: जी बहुत अच्छा गीत आपने पसंद किया है तिलक जी, आपकी पसंद का गीत आप तक पहुँचाते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हाँ कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते, थोड़ा सा आपकी आवाज ब्लास्ट हो रही है, थोड़ा सा दूर से बोलिए।
1: जी
0: हाँ, नाम बताएं अपना।
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही
0: हूँ। नंदिनी तिवारी जी।
1: जी जी
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगी, कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं सागर से बोल रही हूँ
0: जी।
1: मूवी का नाम है MS धोनी।
0: MS धोनी और
1: जी, इसका कौन तुझे यूं प्यार करेगा, ये वाला।
0: कौन तुझे यूं प्यार करेगा, चलिए आपकी पसंद।
1: रानू दीदी को और आपको रहेगा।
0: चलिए गीत आप तक पहुंचाते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद नंदिनी जी।

0: खातेगांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ सर।
1: चौदहवी का
0: मेरे
1: चांद
0: मालिक ने
1: गीत के बोल
0: फिर रूठे मेरे सरकार नजर आते हैं,
1: रूठे रूठे मेरे सरकार नजर आते
0: हैं, सरकार नजर आते हैं। हाँ वहीदा रहमान पर फरमाया सर
1: जी। तो ये गाना आपकी पसंद का है, ये गाना कुछ खास वजह है जिसके कारण ये गाना पसंद हो आप?
0: मेरे को बहुत पुराना, बहुत पहले से ही पसंद है सर।
1: अच्छा चलिए, आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्ते
1: सर, मुझको गाना सुनना है।
0: जी बिल्कुल, आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचाएंगे, पहले अपना नाम बताइए।
1: सर दशरथ रजक दमोह से बोल रहा है।
0: दशरथ रजक दमोह से।
1: हाँ।
0: तो कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं आज?
1: सर हमें राजा हिंदुस्तानी का।
0: राजा हिंदुस्तानी फिल्म का कौन सा गीत?
1: आए हो मेरी जिंदगी में तुम।

0: बेचारा उसका इंतजार कर रहा है।
1: हेलो।
2: हेलो
1: हाँ, फोन करेंगे गीत सुनने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी, मेरी किन से बात हो रही है आज?
1: मैं विजयकांत नायक बोल रहा हूँ।
2: जी, मैं अरविंद अग्रवाल
1: अरविंद जी कहाँ से?
2: जी, श्रीनगर जिला महोबा से। जी
1: श्रीनगर जिला महोबा से।
2: जी
1: वहाँ पर कैसा आप प्रसारण किस तरह से सुनते हैं?
2: ऐप से सुनते हैं, मोबाइल ऐप से।
1: अच्छा, ऐप से। और दूसरे फोन करें गीत सुनने कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर से भी रिले होता होगा।
2: जी, छतरपुर से भी सुन सकते हैं।
1: जी। अरविंद जी कौन सा गीत आज पसंद करते हैं?
2: जी, आज फिल्म का नाम रहेगा स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ।
1: स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ।
2: जी
1: और फिल्म के?

0: साथ साथ इसके बोल भी बताइएगा।
1: ये सूरज चांद सितारे।
0: ये सूरज चांद सितारे।
1: जी
0: चलिए, अच्छा गीत आपने पसंद किया है, आपके पसंद का गीत आप तक पहुंचाते हैं।
1: जी
0: और
1: सुनना
0: जैसा
1: थोड़ी जी,
0: जी
1: मेरे अब कल मेरे बेटे का जन्मदिन था, इसलिए उसको उसको डेडिकेट करना है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: फोन करें। गीत
1: हेलो
0: सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: सर मैं गजेंद्र अहिरवार सागर से मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं।
0: गजेंद्र अहिरवार सागर से?
1: हाँ सर।
0: गजेंद्र जी कौन सा गीत पसंद करते हैं आज?
1: साजन फिल्म का।
0: साजन फिल्म का कौन सा गीत?
1: देखा है पहली बार।
0: साजन की आंखों में प्यार।
1: हाँ
0: चलिए बहुत अच्छा लगा ये गीत आपकी पसंद।
1: हाँ सर
0: बहुत अच्छी है। आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचाते हैं और अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या करते हैं
1: सर? कंपनी में काम करते।
0: और रेडियो सुनते हैं?
1: रेडियो सुनते हैं।
0: चलिए आप सभी श्रोताओं इस तरह से प्यार बनाए रखते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम में फोन करने के लिए। बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार
0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में फोन लगाया आपने।
1: जी।
0: हाँ कौन बोल रही हैं?
1: मैं निशिका बात कर रही हूँ।
0: नीतिका जी कहाँ से?
1: मैं भोपाल से।
0: अच्छा कौन सा गीत तो आज पसंद करती हैं?
1: तो मूवी का नाम है किसी का भाई किसी की जान है, नहीं वो लगता दिल।
0: नहीं हो लगता दिल।
1: जी
0: चलिए आपकी पसंद पूरी करने की हम कोशिश करते हैं। नीतिका जी कार्यक्रम में फोन लगाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक यू। नमस्ते।
0: नमस्ते।

श्रोताओं फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में। जिन श्रोताओं ने हमें फोन लगाए उनकी पसंद हमने पूरी की और उनकी पसंद के गाने सुनवाए। कार्यक्रम के अंत में एक गीत हमारी पसंद का हम आपको सुनवाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये गीत पसंद आएगा। आप सुनिए हमारी पसंद का ये सुमधुर गीत और मुझे

0: विजयकांत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों सक्रिय हों तो वो बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। जब दोनों फायदेमंद होते हैं तो इससे देश का कल्याण होता है और सभी जीवों का भला होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं तथा मर्यादा का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र भी आज से प्रारंभ हो गया है। 24 जुलाई तक चलने वाले इस 5 दिवसीय सत्र में राज्य सरकार द्वारा 2026-27 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के साथ समान नागरिक संहिता यूसीसी सहित कुल 14 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल के पास जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। प्रदेश के 90% हिस्से में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। इस दौरान 4 से 5 जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। और टैलेंट सर्च अभियान के तहत एथलेटिक्स के चयन ट्रायल्स आज से 22 जुलाई तक भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में होंगे। इसमें बालक और बालिका दोनों वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपके पत्रों के माध्यम से आपकी पसंद के गीत आपको सुनाते हैं। पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म जूली से, स्वर किशोर कुमार के हैं, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें बेरड़ी से आई है। श्रोता हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु। अगले श्रोता राजा बाजार बिहिया से हैं, सुरेश केशरी, पूनम केशरी और प्रतीक। इन्हीं के साथ है नया बाजार बिहिया से राजेश केशरी, पंकज और रोहन केशरी। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

पंकज उदास और साधना सरगम के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मोहरा से। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीतकार है विजू शाह। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरिंगी से। श्रोता है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। अगले श्रोता कवर कॉलोनी बड़वाह से है प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

दुल्हन वही जो पिया मन भाए, इस फिल्म से अगला गीत सुनेंगे हेमलता के स्वर में। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। इस गीत के लिए फरमाइश में आई है सपना संगीता रोड इंदौर से। श्रोता हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म तीसरी मंजिल से। गीत लिखा मजरू ने, संगीतकार हैं आडी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है घंटाघर चौक खंडवा से। श्रोता हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया।

उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में अगला गीत सुनेंगे फिल्म मृत्युदंड से। गीत लिखा जावेद अख्तर ने, गीत को संगीतबद्ध किया आनंद मिलिंद ने। फरमाइश हमें आई है गोला बाजार बक्सर से। श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। इन्हीं के साथ हैं गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर जतेक और मीका बिरक।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: हर बैंक के अलग अलग केवाईसी पेपर्स, काश एक चाबी होती।
7: एक चाबी है सीकेवाईसी आईडी।
6: सीकेवाईसी मतलब?
7: बैंक आपके केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
6: वाह, आरबीआई कहता है
7: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
8: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
9: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
10: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
9: तो सुनते रहिए मालवा की शान
11: आकाशवाणी इंदौर।
10: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
12: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
13: क्या?
12: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
13: वो कैसे?
12: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
13: पर सुनेंगे कैसे?
12: इसके लिए अपने मोबाइल

0: फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा,
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
2: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कंतारे का पांचवा भाग।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे के लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

लीजिए सुनिए कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का पांचवा भाग। अभी तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महल छोड़कर चले जाते हैं। राजा का प्रिय अश्व नीलमणि आचार्य नागदत्त के आश्रम पहुंच जाता है। राजा भर्तृहरि वृक वन पार करके पैठार गांव पहुंचते हैं। भोले भाले ग्रामीणों के आग्रह पर वे महादेव शंकर के किरात अवतार की कथा सुनाते हैं, जिसमें भगवान शिव अर्जुन से वचन लेते हैं कि जिन अस्त्रों का हिंसक पशुओं पर उपयोग होता है उसका संधान शश अथवा मृगों पर नहीं करना चाहिए। अतीत की घटनाओं से उद्विग्न अनिरुद्ध राजा भर्तृहरि से वाद विवाद करता है।

0: किरात और अर्जुन की कथा के बाद जैसे भर्थरि के मानस में अनिरुद्ध द्वारा उठाए गए प्रश्न गूंज रहे हों।
1: मैं ही हूं अनिरुद्ध, मैं कह रहा हूं कि हमारे ग्रामीण भी परंपरा से प्रबल धनुर्धर होते आए हैं, किंतु हमारी भी एक वर्जना है। एक ही तीर से शूकर या किसी हिंसक वृक या व्याघ्र को हम धराशायी कर देते हैं। क्या हमारे ग्रामजनों को अपने अस्त्र का प्रयोग हिंस्र पशुओं की तरह हिंस्र मनुष्यों पर भी नहीं करना चाहिए? भगवान शंकर के पाशुपत का विवेक और न्याय क्या कहता है देवता?
2: ये सब
1: कभी कभी अचानक खेतों पर असंख्य टिड्डी दल उतर आता है, जीभ लप लपाते रक्त पिपासु भेड़िए हमें घेर लेते हैं। राजा के भट्ट और सैनिक आते हैं और गांव का सभी कुछ जीत जाता है। कुक्कुट मेड़भांड गंदम छाछ लुट जाता है, भंडार रीत जाते हैं। क्या हमारे ग्रामजनों को अपने अस्त्र का प्रयोग हिंस्र पशुओं की तरह हिंस्र मनुष्यों पर भी नहीं करना चाहिए? भगवान शंकर के पाशुपत का विवेक और न्याय क्या कहता है देवता?
2: ये सब इसलिए कह रहा हूं कि शायद देव का आशीर्वाद ही फलित हो जाए, पुराना अनिरुद्ध अपने आप में वापस लौटे पूरी ऊर्जा और कौशल के साथ। जनसमाज के साथ साथ राज्य के लिए भी उसकी ऊर्जा बहुत उपयोगी होगी। अभी तो वो राजा को शत्रु मानता है और राज्य को भी। अब आप भोजन और विश्राम के लिए अपने अपने घरों को जाएं। देवता मेरी मढ़िया पर ही रहेंगे, उनके भोजन और विश्राम की व्यवस्था वही है। अनिरुद्ध के प्रश्नों का उत्तर भी अवधूत यथा समय देंगे। अनिरुद्ध, तुम दीप दंड लेकर आगे की राह दिखाओ। चलें देव।
3: चलें।
2: इस दिशा में देव, इस दिशा में। हमने गांव के बाहर नागफनी और दूसरी कांटेदार झाड़ियों की ये बाड़ बना रखी है। इसे सघन रखा जाता है ताकि हिंस्र पशु गांव में घुस ना आए, यही हमारी सुरक्षा है। इस ओर चलें देवता, सामने ही है सेवक की मढ़ैया।
4: पधारें देव, आसन ग्रहण करें।
5: ये स्वर तो वयसिका की स्मृति दिलाता है। कौन है ये तरुणी, मधुर मदिर वयस्क स्वर की स्वामिनी?
6: ये शची है देवता, देखने में छुई मुई सी कोमल, लेकिन पूरी सिहनी है प्रभु।
2: अभी वह 20 की है, लेकिन शची और वृंदा दोनों ही 100 हाथ दूरी से लक्ष्य भेदने की क्षमता रखती हैं।
6: मुखिया ने ही हमें सिखाया है।
5: साधु साधु, शची और वृंदा, वयसिका और चंपा,

0: लोग भी तो आहार ग्रहण करें।
1: हाँ हाँ जी, अनिरुद्ध आओ। वृंदा, हमारा भोजन संपन्न हुआ, ये बासन समेट लो। अनिरुद्ध, आज मैं यहाँ महाराज की सेवा में रहूंगा, तुम तंदुल नोन आदि को लेकर मेरे स्थान पर गांव की परिक्रमा कर लेना। महाराज पधारे, उधर आपके लिए खटोला डालना है।
0: और तुम्हारी शयन का क्या प्रबंध है मुखिया?
1: यहीं आपके पास नीचे धरती माता की गोद में, धरती की शैया और निरभ्र नील आकाश का ओढ़ना, यही तो कृषक का सर्वस्व है देव।

0: देव, यदि अभी शयन की इच्छा ना हो तो मैं अनिरुद्ध के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।
1: कह तो चुके हो तुम मुखिया।
0: हाँ, इसकी दृष्टता बार बार मन को साल रही है। उसे इस तरह उद्दंडता नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो भी विवश है। एक ज्वालामुखी उसके भीतर ही भीतर सुलग रहा है। कभी कभी कभी विस्फोट के साथ फूट पड़ता है। ये केवल अनिरुद्ध के मन का ही नहीं, उन सबके मन का ज्वालामुखी है देव। हम सब उसे भोग रहे हैं। हाँ, हमें तो भोगना है जैसा हमारे पूर्वजों ने भोगा, हमने भोगा, वृंदा और अनिरुद्ध ने भोगा।
1: वृंदा और अनिरुद्ध ने?
0: उनके दंश बहुत त्रासद हैं देव। मैंने आपको गांव पर दस्युओं के आक्रमण और लूटपाट के विषय में बताया था। फिर उनके पीछे पीछे आने वाले राज्य कर की उगाही के लिए राजकर्मी आए और गहरा घात पीछे छोड़ गए।
1: क्या हुआ था मुखिया, क्या हुआ था, विस्तार से कहो।
0: एक दुःस्वप्न जैसा घटित हो रहा था देव। समूचा ही जनपद विगत वर्ष के दुष्काल से पीड़ित प्रभावित था। चोरी चकारी की घटनाएं निरंतर बढ़ रही थी। दस्यु दल अभी अभी सब कुछ छीन ले गए थे। अब ये अश्वारोही राज्यकर्मी आ पहुंचे। उन्हें राजा का प्रतिनिधि मानकर हमने दुर्दिनों के लिए सहेज कर रखे अन्न से उनकी अभ्यर्थना की, उनके लिए मद्यपान की व्यवस्था की, किंतु करों का भुगतान करने के हमारी सामर्थ्य नहीं थी देवता।

राजकर्मियों का एक विशाल दल गांव में ही ठहर गया। उसकी हठ थी कि वो कर लिए बिना टलेगा नहीं। ये गांव वालों के लिए सांसद का समय था। कहते तो किससे कहते, उन्हें तो भोगना था।

कुछ मध्यप अश्वारोही ग्रामीण तरुणों को हांके के लिए बहोर कर आखेत के निमित्त अरण्य में निकल गए थे। लौटते हुए उन्होंने नदी के किनारे हमारे किशोरियों तरुणियों को घेर लिया। वृंदा भी वहां थी, 7 महीने के गर्भ से। उनके पास हसिया पुलिस कुछ भी नहीं था, प्रतिरोध कैसे करती। सैनिकों ने उनकी विवशता का लाभ उठाया।

0: हूं देव, बचने के लिए वृंदा कोस भर भागी, उसका गर्भ खंडित हो गया देव। कुछ थी जो नदी में कूद गईं, अनेक नर पशुओं की वासना की बलि चढ़ गईं। हाँ देव, विधि का विधान ही अविश्वसनीय रहा होगा।
1: विधि का विधान नहीं, मनुष्य की पाशविकता कहो वीरभद्र। मानव देह में पिशाच, नर पिशाचक।
0: अधम राजकर्मी हमारा मान रौंद कर राजधानी चले गए। मध्यान्ह में जब हमारी बेटियां लौटी तो हम घटनाक्रम से अवगत हुए। वृंदा वृंदा तब भी नहीं लौटी थी। हम वृद्ध जन उसकी खोज में लगे। कुछ वन में युवकों तक समाचार पहुंचाने गए। हमारे कुछ युवकों ने आतताइयों का पीछा किया, लेकिन वो तो हमारी पहुंच से बहुत दूर निकल गए थे। महाराज, उस दिन यदि वो नराधम हमें मिल जाते तो ना तो वो जीवित रहते और ना हमारा ग्राम ही बचता।
1: ग्राम? ग्राम क्यों मुखिया?
0: राज सत्ता सर्वशक्तिमान होती है देवता, राज्य का यही वास्तविक चेहरा है। विद्रोह वो सहन नहीं कर पाता। विद्रोह तो क्या, असहमति के प्रति भी वो असहिष्णु होता है। उस दिन हमने अनुभव किया कि पलायन से अतिरोध अधिक श्रेयस्कर है। कम से कम आने वाली पीढ़ियां तो हमें कायर नहीं कह सकेंगी।
1: फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ मुखिया?

और हम सब विद्रोही हो गए। राज सत्ता का स्वीकार पलायन नहीं, समर्पण नहीं, केवल असहमति, केवल अतिरोध।

उस दिन से हमारे युवक विद्रोही हो गए हैं। अनिरुद्ध तो लंबी अवधि तक विक्षिप्त रहा, सदा इस प्रश्न के उत्तर को लेकर बेचैन के पाशुपात का प्रयोग हिंसक मनुष्यों पर क्यों नहीं, आपसे उसने यही पूछा है। बैठार के अवंती से कोई संबंध अब नहीं रहे, राज्य का प्रत्येक कर्मचारी यहां से बचता है, बैठार से अवंती कोई नहीं जाता। भर्तृहरि के यशस्वी साम्राज्य में बैठार वैसे ही है जैसे रावण की लंका में विभीषण का घर।

0: जाने क्यों ये विश्वास जाग रहा है कि आपके आशीर्वाद से अनिरुद्ध अपने आघातों को भूल जाएगा।
1: तुमने कुछ उपाय किए मुखिया?
0: हम उपायों को क्या जाने, हम कर भी क्या सकते हैं। आप जैसे तपस्वियों की बात और, आप ठान लें तो राज्य क्या धरा ही उलट पुलट हो सकती है। हमें तो बस भोगना है, चाहे अच्छा है।

0: अनिरुद्ध किं कर्तव्य विमूढ़ है, उसे पाशुपात का रहस्य समझा दें देवता।
1: महेश्वर शुभ ही करेंगे, मैं भी हर संभव प्रयास करूंगा। मैं अपना संसार पीछे छोड़ आया हूं, फिर भी लगता है कि वो दबे पांव पीछे पीछे चला आ रहा है। अच्छा, रात बहुत बीत गई है, अब आप भी विश्राम करें।
0: उचित है देव, मुझे अनिरुद्ध की चिंता है और उन तरुणों की भी जो क्रोध में अपने बोध से भटक गए हैं। इस चिंगारी की अनदेखी मुझसे नहीं होती।

0: उड़ गया। देखिए तो मैं कि कैसी छड़ी लगी है, रात से ही बादल बरस रहे हैं। दो संवत्सर से प्यासी धरती रस से सराबोर हो रही है। ये आपकी शरण रज का प्रताप है मालेवर।
1: मुखिया, पहले भी मैं कह चुका हूं कि मैं कोई सिद्ध साधक नहीं हूं। मैं अपने गृह और संसार को त्याग कराने वाला आप ही के जैसा एक साधारण मनुष्य हूं। आप विश्वास क्यों नहीं करते?
0: देव, मैं जानता हूं कि चमत्कारी सिद्ध ऐसी ही अटपटी वेशभूषा का व्यवहार करते हैं ताकि लोग उन्हें बावरा समझें और दूर रहें। आप तपस्वी हैं, आपके पास सिंहासनों को लात मारने का सामर्थ्य है। मेरु सागर भी आपका मार्ग नहीं रोक सकते। अरे, शची आ रही है।
2: प्रणाम देवता। मुखिया, मुझे विलंब तो नहीं हुआ? आज्ञा करें, मुझे क्या करना है?
0: समय पर ही आई हो शची। हम लोग खेतों की ओर निकल रहे हैं। वर्षा का जल भरा होगा, मेड़ बंध आदि ठीक करने होंगे ना। यहाँ महाराज की सेवा में तुम्हें रहना है।
1: शची, ओह, शची को देखकर क्या हो जाता है भर्तृहरी तुम्हें? नरेश के रूप में तुम आत्म वंचक रहे, साधु वेश में भी प्रवंचना से मुक्त नहीं हो पाए हो। कामिनी और कंचन के पंख में धसे फंसे घृणित कीट। वीरभद्र, मैं भी साथ चलता हूं। प्रातः क्रिया स्नान ध्यान करना होगा।
0: जैसी प्रभु की इच्छा। चलिए महाराज, चाहे तो

0: बच्ची को भी साथ ले लें, वापसी में मार्गदर्शन कर सकेगी।
1: आवश्यकता नहीं है, मैं आ जाऊंगा अकेला ही। हाँ, और भस्म उपलब्ध हो सकेगी?
0: आपके धोने की व्यवस्था यहीं ओसारे में हो जाएगी। जब तक लौटेंगे शचि यहाँ उपले लगा देगी और आग जला देगी। कोई अन्य आवश्यकता हो तो शचि को आगे दे। शचि, तपस्वी जी का ध्यान रखना।
2: जी मुखिया जी।
1: लगता है ग्रामीणों का दल लौट कर आ पहुंचा है। वीरभद्र, कहाँ गए थे ये सब?
0: अनिरुद्ध को खोजने, कल रात से ही पता नहीं कहाँ है। यही करता है वो, अपनी सनक में अकेला ही भटकता रहता है। फिर अभी तो कारण भी था, रात में हुई धृष्टता के कारण आपके सामने आने में सकुचा रहा होगा। बहुत संवेदनशील भी है। अब चले महाराज, इस और आए। शचि, महाराज के लौटने तक सारी व्यवस्था कर लेना।
2: मैंने कह दिया ना, मैं सब कुछ कर दूंगी, आप निश्चिंत रहे मुखिया जी।
1: मुखिया, मैं देख रहा हूँ कि सभी गांव वाले हसिया, खुरपी, दराती, दंड, परुष आदि से सज्जित हैं। कुछ तो धनुष, बाण और तेंगा भी लिए हुए हैं, ऐसा क्यों?
0: इन सब जीवों की आसपास उपस्थिति का आभास इन्हें स्वाभाविक लगता है। यद्यपि इस घोर वर्षा काल में अश्वारोही दस्युओं और राजसेवकों का यहाँ आना दुष्कर है, किंतु पहले की दुर्घटना अनुभव कोश में अमिट है। वो निरंतर सजग और सन्नद्ध रहते हैं।
1: पुरुषों की भांति स्त्रियां भी?
0: हाँ, मैंने आपको वृंदा और शचि के विषय में बताया था। शचि खड़ग संचालन और धनुर्विद्या में समान रूप से पटु है देव, उसकी तरह अन्य भी।
1: शचि, ओह, शचि को देखकर क्या हो जाता है भर्तृहरि तुम्हें? वीरभद्र, अब हमारे प्रस्थान का समय आ गया है, हमें जाना होगा यहां से। आप हमें मार्ग और दिशा की जानकारी देंगे?
2: कहां जाएंगे सन्यासी? मार्ग ही नहीं मिलेगा, चारों ओर जल ही जल है। समतल सतह के कारण यह अनुमान भी संभव नहीं है कि इस प्लावन की गहराई कहां तक है। पग पथ पर डूबे हुए हैं, केवल पादपों के उठे हुए शीर्षों से आभास होता है कि इधर राह हो सकती है। आप तो घिर गए हैं देवता, वो भी हमारे सौभाग्य से।
1: किंतु मुझे जाना ही होगा।
0: 3-4 दिन तक तो यह संभव नहीं है देव। इंद्र की अनुकंपा से आपके सानिध्य का यह सुअवसर हमें मिला है। हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, कथाएं, नीतियां, जीवन के अनुभव। महाराज, यहां से पथ मुड़ता है, उस ओर नदी है, हमारे खेतों की राह इधर से है, आप पहुंच तो जाएंगे।
1: हाँ वीरभद्र, मैं चला जाऊंगा।
0: कृपया अधिक विलंब न लगाएं और गांव छोड़कर जाने का अभी ना सोचें। अनिरुद्ध के प्रश्न का उत्तर उसे अभी नहीं मिला है, उसे आपके वात्सल्य की आवश्यकता है देवता।

अभी आप महेश कटारे के उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो प्रस्तुति का पांचवां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। वाचक सुनील वैद्य, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, शचि विभा श्रीवास्तव, वीरभद्र राकेश जैमिनी और वृंदा सरोज शर्मा। संयोजक राकेश ठोंडियाल, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया और

0: आपको याद होगा कि कोई राजा भर्तृहरि के अश्व नीलमणि को घायल अवस्था में आचार्य नागदत्त के आश्रम में छोड़ जाता है। नीलमणि यहाँ ठीक हो जाता है। उसे अवंती पहुँचाने का दायित्व चंद्र।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 होने को है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाऊ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सेंडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। दिल्ली में संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जो कि 13 अगस्त तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्थक और तथ्य आधारित चर्चा का आह्वान किया है। सत्र में 7 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे, जबकि बदले राजनीतिक समीकरणों और नए सिटिंग अरेंजमेंट के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी आज से प्रारंभ हो गया है। 24 जुलाई तक चलने वाले इस 5 दिवसीय सत्र में राज्य सरकार द्वारा कुल 14 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रदेश पुलिस ने बीते 6 दिनों में संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान करीब 70 लाख रुपए से अधिक की चोरी की गई संपत्ति को बरामद कर 33 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पन्ना जिले की मझगवां हीरा खदान से एक बड़ा हीरा मिला है। यह हीरा 13.16 कैरेट का है और उसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रदेश में आज दमोह, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि भोपाल और इंदौर सहित 47 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है और भोपाल के मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में जनजाति चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 30 जुलाई तक जारी रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

समय पर जांच स्वस्थ जीवन की पहचान। श्रोताओं, स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वीकार कीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूर्णिमा दुबे का नमस्कार। श्रोताओं, रोग का इलाज करने से बेहतर है बीमारी को रोकना। स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए पहले से सावधानी बरतना सबसे अच्छा उपाय है। बीमारियों को गंभीर होने से पहले रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। किसी भी छिपी हुई बीमारी का समय पर पता लगाकर सही इलाज और लाइफस्टाइल में बदलाव के जरिए बड़े बड़े खतरे जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज को टाला जा सकता है। श्रोताओं, कई गंभीर बीमारियां शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाती, पर हाँ, रेगुलर जांच से इनका पता शुरू में ही लग जाता है। अगर बीमारी शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए तो उसके इलाज का खर्च और शारीरिक परेशानी एडवांस स्टेज के मुकाबले काफ़ी कम होती है। सामान्य तौर पर हम सभी को डॉक्टर की सलाह से कुछ बेसिक टेस्ट करवा ही लेने चाहिए, जैसे CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे शरीर में खून की कमी या एनीमिया का पता चल जाता है। साथ ही ब्लड में यदि किसी तरह का इन्फेक्शन फैल रहा हो तो वह भी मालूम हो जाता है। इसलिए अपने डॉक्टर से परामर्श कर समय समय पर अपना चेकअप जरूर करवाएं। श्रोताओं, अपने सेहत की देखभाल करें और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के जरिए बीमारी की पहचान करके सही इलाज सही समय पर शुरू करें। फिलहाल लीजिए म्यूजिक थेरेपी, तन और मन की अच्छी सेहत के लिए बेहद जरूरी। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: श्रोताओं, अब समय हो गया है भेंट वार्ता का। आइए आपको सुनवाते हैं फिजियोथेरेपी से बेहतर स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर प्राची साठे से मनीष गजभिये की बातचीत।
1: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में स्वागत है आपका, मैं हूं मनीष गजभिये। श्रोताओं, फिजियोथेरेपी चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी महत्वपूर्ण विधा है जो न केवल चोट या बीमारी के बाद शरीर को जल्दी स्वस्थ होने में मदद करती है, बल्कि व्यक्ति को पुनः अपनी सामान्य दिनचर्या में लौटाकर एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। फिजियोथेरेपी के माध्यम से स्वास्थ्य को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्राची साठे को। प्राची जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
3: प्राची जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में कि आखिर फिजियोथेरेपी क्या है और यह कितनी ज्यादा जरूरी है अगर हम मानव स्वास्थ्य की बात करें तो।
2: नमस्कार। फिजियोथेरेपी मेडिसिन की एक ऐसी विधा है जिसमें मूवमेंट या फिर हमारे शरीर के हालचाल से संबंधित उपचार किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः उन बीमारियों का उपचार किया जाता है जो मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति हैं जिनके हाथों पैरों में जकड़न है, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई इंजरी हो गई है जिसके बाद उनको हाथों पैरों में कोई परेशानियां हैं, उस तरह के उपचार हम फिजियोथेरेपी में मुख्यतः रूप से करते हैं। फिजियोथेरेपी का अगर हम बात करें तो हर फील्ड में एक अलग स्पेशलाइजेशन है जिसका कि अलग तरह से उपचार किया जाता है। मानव स्वास्थ्य के संबंध में तो इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। मानव स्वास्थ्य हर उन चीज़ों से संबंधित होता है जो कि व्यक्ति को उसी दिशा में वापस कार्यरत करने में हेल्प करे जिसमें वो पहले से कार्य कर रहा था। उसके

0: नॉर्मल कार्य से थोड़ा भी अगर वो डिविएट होता है तो उसको वापस उसी विधा में जाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों में आते हैं। डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में हमें कई बार उन चीजों की जरूरत हमें समझ में नहीं आती जो स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं अगर हम स्वस्थ हैं। पर अगर आपका स्वास्थ्य से समझिए आपका सरदर्द ही हो रहा है तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि सरदर्द से निवारण के लिए हमें किस डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। तो उसी तरह से अगर हमें मूवमेंट रिलेटेड कोई भी परेशानियां हैं तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट से संबंधित किसी एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके उस संबंध में उससे निराकरण कराना चाहिए।
1: जी, बहुत अच्छी बात की आपने। और निश्चित तौर पर फिजियोथेरेपी जो है बहुत अहम भूमिका निभा रही है अगर हम मानव स्वास्थ्य की बात करें तो। और हम आपसे जानना चाहेंगे आजकल किन समस्याओं में लोग सबसे ज्यादा फिजियोथेरेपी की जरूरत महसूस कर रहे हैं।
0: समस्याओं में तो हर तरह की मनीष जी समस्याएं हो सकती हैं। फिजियोथेरेपी की जो विधाएं हैं वो बहुत अलग अलग हैं, इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे कार्डियो रेस्पिरेटरी, मेरा खुद का स्पेशलाइजेशन जैसे स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स संबंधित विधाओं में, या ऑर्थोपेडिक संबंधित विधाओं में, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर संबंधित विधाओं में, अलग अलग चीजों में इसका अलग अलग रोल होता है। तो जिस प्रकार पहले समस्या आती है उस तरह से स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास कोई पर्सन जा सकता है। जैसे कि आजकल देख रहे होंगे कि स्ट्रोक की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, जिसमें कि शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। उस पैरालिसिस के बाद भी फिजियोथेरेपी में ऐसे उपाय हैं जिससे कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में और उसके पुराने जो कार्यरत है जिस क्षेत्र में उसमें उसे वापस जाने में मदद मिले। तो कई तरह की हमें ऐसी स्पेशल टेक्निक्स हैं हमारे पास जिससे कि हम उस स्ट्रोक से संबंधित पर्सन का भी वापस बैक टू नॉर्मल जाने में उनको मदद कर सकते हैं। इसी तरह से कार्डियो रेस्पिरेटरी संबंधित, इसके अलावा स्पोर्ट्स से संबंधित हम बात करें तो स्पोर्ट्स में तो फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल इस तरह से है कि सुबह से लेकर शाम तक कभी भी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत हो सकती है, कभी भी इंजरी हो सकती है। अगर पर्सन खेल के आ चुका है उसके बाद भी उसकी मांसपेशियों में जकड़न रहती है जिसका निराकरण फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग विधाओं में, अलग अलग ब्रांचेस में और अलग अलग स्पेशलाइजेशन के थ्रू हम फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में कार्य करते हैं।
1: जी, और बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी कितनी ज्यादा उपयोगी है?
0: आपने देखा होगा कि बुजुर्ग अपने घर के एनवायरमेंट में जितना मूवमेंट करते हैं उतना ही कभी कभार बहुत हो जाता है। डे टू डे लाइफ में उनको मोबिलिटी प्रदान करने के लिए और एक मूवमेंट के पैटर्न को बनाए रखने के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके स्पेशलाइजेशन को हम जीरियाट्रिक फिजियोथेरेपी कहते हैं, जिसमें कि वृद्ध जनों के समस्याओं से रिलेटेड उनको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। हम बैलेंस के ऊपर काम करते हैं वृद्धजनों में, उनकी मोबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, उनकी मांसपेशियों की जो स्ट्रेंथ होती है उसको बनाए रखने के लिए, उनकी कोशिकाओं की मोबिलिटी को बनाए रखने के लिए हम अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस उनको बताते हैं। तो अगर हम मूवमेंट से रिलेटेड बात करें तो अगर जितना वृद्ध जन डे टू डे लाइफ में मूवमेंट करते रहेंगे उनकी बाकी की समस्याएं भी हमने ये देखा है कि कम होती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज उनको कराते रहेंगे तो ये समस्याएं जिनसे वो जनरली पीड़ित रहते ही हैं तो ये समस्याएं उनको फिर कम आती हैं।
1: अब जैसे हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या फिजियोथेरेपी सिर्फ चोट लगने पर ही जरूरी होती है?
0: ऐसा नहीं है मनीष जी, फिजियोथेरेपी का रोल उसके भी अलावा है। जैसे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, जनरल मोबिलिटी बनाए रखने के लिए, या फिर मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए, मसल्स का इंड्योरेंस बनाए रखने के लिए, हमारे हार्ट और मांसपेशियों संबंधित स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए फिजियोथेरेपी का इम्पोर्टेंट रोल है। हमारा रोल गांव-गांव में जाके जागरूकता फैलाना भी है ताकि और लोगों को फिजियोथेरेपी के महत्वता की पता चले और उसके बारे में और लोग जागरूक हो सके और ना केवल डॉक्टर के पास बल्कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास आकर भी अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें।
1: जी,
0: तो इसका दोनों ही चीजों में बहुत इम्पोर्टेंस है।
1: जी, मान के चले किसी का सामान्य स्वास्थ्य है, वह भी क्या फिजियोथेरेपी के माध्यम से अपना स्वास्थ्य बेहतर कर सकता है?
0: जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिजियोथेरेपी के माध्यम से नॉर्मल स्वास्थ्य को भी अच्छा किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जॉइंट की मोबिलिटी की, तो जॉइंट की मोबिलिटी बनाए रखने में फिजियोथेरेपिस्ट का जो

0: नॉलेज है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर आप जनरल एक्सरसाइजेस करेंगे डे टू डे लाइफ में, जैसे हम बचपन में पीटी किया करते थे,
1: बिल्कुल
0: वैसे ही अगर आज युवा भी इस प्रकार की रेगुलर एक्सरसाइजेस करता है तो उसकी जागरूकता बनाए रखने में फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान होता है. तो मैं मानती हूँ कि ना केवल इंजरी होने पे या फिर कोई बीमारी होने पे ही फिजियोथेरेपी का इम्पॉर्टेंट रोल है, बल्कि उसके अलावा भी जागरूकता बनाने में और डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी और मोबिलिटी बनाए रखने में भी फिजियोथेरेपी का इम्पॉर्टेंट रोल है.
1: जी प्राची जी, अभी आपने युवाओं की बात करी तो अक्सर अभी देखा गया कि आज के दौर में युवा जो है अत्यधिक मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि उनको स्वास्थ्य संबंधी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेगी कि वह किस तरह से इस तरह की परेशानियों से निजात पा सकते हैं या उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए?
0: आज के युग में मैं युवाओं को ये नहीं कह सकती कि आप इन सारी चीजों का उपयोग ना करें, पर इन सारी चीजों के उपयोग का जो समय है वो निर्धारित जरूर किया जा सकता है. आज का युवा रात को देर रात 2 या 3 घंटे ये सारे गैजेट्स का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से जकड़न संबंधित समस्याएं, मांसपेशियों संबंधित समस्याएं आती हैं. इसके अलावा आँखों से संबंधित परेशानियां भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इन सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है. तो इन सारी चीज़ों का उपयोग बाधित तो नहीं करना चाहिए, पर कुछ समय निश्चित करके इनको उपयोग करना चाहिए. जो ये सारे गैजेट्स हैं, इनका उपयोग फिजियोथेरेपी के फील्ड में भी हो रहा है, जैसे VR करके, या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हम पेशेंट्स को देते हैं, ये सारी चीज़ें उपयोगी हैं, पर इनका निर्धारित समय में उपयोग हम अगर करें तो ये हमारे लिए उपयोगी साबित होंगी.
1: जी प्राची जी, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स का फर्क कितना ज़्यादा पड़ा है फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में और वो कितनी ज़्यादा कारगर है?
0: कई फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स भी होते हैं जिन पे स्पेशल टेक्नोलॉजी की अलग अलग मशीनें उपलब्ध होती हैं. तो ये मशीनें घर पे उपलब्ध नहीं कराई जा सकती. किसी भी प्रकार की बीमारी या फिर इंजरी अगर हुई है किसी पर्सन को, तो उसके लिए कुछ दिनों तक फिजियोथेरेपी क्लिनिक या फिर उससे संबंधित हॉस्पिटल में पर्सन को जाना चाहिए और उसका एक प्रॉपर असेसमेंट और उसकी डायग्नोसिस जो फिजियोथेरेपिस्ट करके दे रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ दिन एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में जरूरी होती है. अगर ये सही ढंग से पेशेंट को समझ आ जाती है या पर्सन को समझ आ जाती है कि हमें एक्सरसाइज किस तरह से करनी है, तो फिर वो एक्सरसाइजेस घर पे भी की जा सकती हैं. कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट की उपस्थिति में ही करना जरूरी होती हैं, जिनको फीडबैक की जरूरत होती है कि फिजियोथेरेपिस्ट देखे कि क्या ये एक्सरसाइजेस सही ढंग से की जा रही हैं या नहीं. और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जिनको कि घर पे भी बहुत आराम से किया जा सकता है, घर पे उपस्थित चीजों की मदद से भी.
1: जी.
0: तो हम कुछ एक्सरसाइजेस घर के लिए भी बताते हैं और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट के प्रोफेशनल हेल्प के साथ ही की जाती हैं. तो दोनों की उपयोगिता अलग अलग होती है. केवल घर पे या फिर केवल क्लिनिक में ही हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करें, ऐसा नहीं होता. तो हमें दोनों की उपयोगिता समझनी है.
1: जी अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें कब तुरंत फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करना चाहिए या किस कंडीशन में हमें उनसे संपर्क करना चाहिए?
0: स्पोर्ट से रिलेटेड जितनी समस्याएं होती हैं उसका सबसे पहला जो पर्सन होता है जो उसको रिस्पॉन्ड करता है वो फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है. तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही उस समस्या के निराकरण के लिए एथलीट आते हैं. उसके बाद स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट उनको बाकी की विधाओं के पास भेजते हैं, जैसे आपको मेडिसिन के डॉक्टर की आवश्यकता है या फिर आपको रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है या फिर आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है. तो इस प्रकार से जो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होता है उसको सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना होता है अपने प्लेयर की इंजरी को, उसके बाद ही बाकी जगह जा सकते हैं. इसके अलावा भी दूसरी विधाओं की भी अगर हम बात करें तो ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट भी इसी प्रकार के कार्य से संबंधित होते हैं कि अगर उनको घुटने में किसी प्रकार का दर्द है किसी पेशेंट को, तो वो सबसे पहले जाके फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा सकता है. फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो सारी नॉलेज और वो सारे स्किल्स होते हैं जिसकी मदद से वो उस बीमारी को पता लगा सकता है. अगर उस बीमारी का पता हमें फिजिकल एग्जामिनेशन या मतलब छू के या फिर अलग अलग तरह के मूवमेंट करके अगर डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो उनको डॉक्टर के पास रेफर कर सकते हैं या फिर रेडियोलॉजिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं कि आप इन इन चीज़ों के ऊपर एक्सरे, एमआरआई या फिर ये सारी चीज़ें करवा लीजिए ताकि आपका करेक्ट डायग्नोसिस हो जाए।
1: जी जी जी।
0: तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी या फिर डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट को ही आप जाके अप्रोच कर सकते हैं।
1: जी, कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते प्राची जी, श्रोताओं के लिए आपका एक सरल स्वास्थ्य मंत्र क्या होगा?
0: सरल स्वास्थ्य मंत्र ये है कि आप जितना मूवमेंट कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में उतना करते रहिए, जिससे आपकी मांसपेशियां स्वस्थ रहेंगी, निरोगी रहेंगी और आपका मूवमेंट प्रॉपर रहेगा, जिससे आपको कोई बीमारी नहीं हो पाएगी।
1: जी प्राची जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आपने फिजियोथेरेपी से बेहतर स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर प्राची साठे से मनीष कछभिए की यह बातचीत सुनी। अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, अब समय है क्रम हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का। आज हम बात करेंगे एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी के बारे में। यह टेक्नोलॉजी एक पहनने योग्य उपकरण है। यह मनुष्य की प्राकृतिक ताकत, सहन

ऐसे मरीजों को दोबारा चलने में मदद मिलती है। यह तकनीक दिमाग और पैरों के बीच बिगड़े हुए तंत्रिका तंत्र को सुधारने में भी उपयोगी है। निश्चित तौर पर यह तकनीक चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया एक सराहनीय कार्य है। श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले चरण में चलते हैं और सुनते हैं एक और मधुर गीत।

अब बारी है हेल्थ टिप्स की। श्रोताओं, सेहतमंद बने रहने के लिए कुछ माइक्रो हेल्थ हैबिट्स यानी ऐसी छोटी आदतें अपनाना बेहतर हो सकता है जिसे रोज करना आसान भी हो। जैसे सुबह उठते ही 250 से 300 ml पानी पिए, जिसे रात भर का डिहाइड्रेशन दूर हो सके। दिन भर छोटी छोटी मूवमेंट करते रहें, जैसे खड़े होना, चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना या फिर टहलना। खाने के तुरंत बाद की गई वॉक से हमारा वजन नियंत्रित रहता है तथा इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी मजबूत होता है। इसलिए खाने के बाद तुरंत लेटे नहीं, कम से कम 10 मिनट का वॉक तो ज़रूर करें। श्रोताओं, जीवन जीने का सही तरीका यह है कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। बीमारी के दौरान बीता हर पल हमें स्वास्थ्य की कीमत बता देता है। स्वास्थ्य और खुशी का रहस्य है समय पर सोना, सही खाना और तनाव से दूर रहना। श्रोताओं, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है, कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462002। घड़ी की सुइयों का इशारा समझते हुए हम समेटते हैं आज का कार्यक्रम। तो दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त पूर्णिमा दुबे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सुनते हैं कुछ संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी, आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट

0: करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: और सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे देवीदास कुशवाहा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। पहले सुनते हैं देवीदास कुशवाहा और साथियों का गाया ये भजन।

0: देवीदास कुशवाहा साथियों के गायस भजन के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे भारती विश्वनाथन की गाई गजलें।

0: इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को

0: सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: पर सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
8: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दो बज चुके हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत साहेब बीबी और गुलाम। लीजिए पहला गीत सुनिए इस फिल्म से, आवाज गीता दत्त की, शकील बदायनी का गीत है और संगीत हेमंत कुमार का।

0: इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 24 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के साथ समान नागरिक संहिता यूसीसी सहित कुल 14 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। समान नागरिक संहिता के मुख्य प्रावधानों के तहत एक से अधिक विवाह वैध नहीं होगा। महिलाओं और पुरुषों को समान उत्तराधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक महीने के अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। वहीं विवाह का पंजीकरण अब गांव स्तर तक भी अनिवार्य होगा। जनजाति समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे पूर्व आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सहभागिता की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। संसद का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए अपने 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मानसून हो या फिर मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र के पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि संसद में कई अनुभवी सदस्य मौजूद हैं। वे किसी भी दल के हों, लेकिन उनके अनुभवों की आवश्यकता सदन को हमेशा रहती है।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज से ई बसों का 5 दिवसीय ट्रायल रन शुरू हो गया है। बैरागढ़ स्थित डिपो से निकली इन बसों का संचालन 3 प्रमुख मार्गों पर किया जा रहा है, ताकि अगस्त माह से आम यात्रियों के लिए इनकी नियमित सेवा शुरू हो सके। भोपालवासियों को जल्द ही प्रदूषण मुक्त और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है। आज सुबह बैरागढ़ डिपो से ई बसों को 3 अलग अलग रूटों पर ट्रायल के लिए रवाना किया गया। गौरतलब है कि एक दिन पहले रविवार को जगदीशपुर में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मंत्रिमंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इन्हीं 3 ई बसों में सवार होकर पहुंचे थे। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी बनी हुई है। प्रदेश के करीब 90% हिस्से में 23 जुलाई तक हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान 4 से 5 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। आज दमोह, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल और इंदौर सहित प्रदेश के

40 जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। इस अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजे। इस अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्धार तथा रिचार्ज पिट व चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर जोर दिया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के शासकीय आईटीआई में सत्र 2026-27 की रिक्त सीटों पर प्रवेश व च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई तक आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण या सुधार कर सकते हैं। जबलपुर नगर निगम द्वारा पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रांझी के उमरिया क्षेत्र की 20 एकड़ शासकीय भूमि पर नगर वन विकसित किया जाएगा। गुना में माय भारत द्वारा राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान चलाया जा रहा है और नर्मदापुरम जिले में चलाए जा रहे दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत कलेक्टर ने ग्राम रोहना पहुंचकर पशुपालकों से संवाद किया। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:15 होने को है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटीग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।
4: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित 4 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440 करोड़ 42 लाख रुपए जमा थे। ये कार्रवाई

0: वो गौर गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
1: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
0: अमेरिका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे, जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमेरिका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज 4 धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
2: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कुंकड़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले 2 दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ

0: स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला नगमा खानदान फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, नक्श लयालपुरी का गीत और संगीत खयाम का। इस गीत को पसंद किया है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेंड महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, आका राइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी धोनी गवाणकर परी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये नगमा।

सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम आयशा खान हादिया खान असमा सालिया शुएब खान मुस्तफा खान राउ भाई शाहिद भाई गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर वैशाली कटनकर छत्तीसगढ़ देवी भटापारा से गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा और गणेश इन सब ने सुनना चाहा है। काला पत्थर फिल्म का ये नगमा आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, साहिर का गीत और राजेश रोशन का संगीत।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आप सबने पसंद किया है मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का ये नगमा। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

सप्ता संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, महनाज जहां, आप सबने पसंद किया है प्रेम पुजारी फिल्म का ये नगमा। आवाज़ किशोर कुमार की, नीरज का गीत और एसडी वर्मन का संगीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुनिए रंगोली फिल्म का ये नगमा। शैलेंद्र के लिखे गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को पसंद किया है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफिर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने।

कार्यक्रम का अंतिम नगमा कटी पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का गीत और राहुल देव वर्मन का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक, मीका विरक,

शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार, कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पैंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवि श्रीवास्तव। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम नगमा।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश संपन्न करने की अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत को। नमस्कार, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: Oh,

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा के दौरे पर हैं। उन्होंने भारत और मोल्दोवा के बीच कृषि, रसद एवं अवसंरचना, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, एआई और नवाचार सहित पारस्परिक हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 24 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट के साथ समान नागरिक संहिता यूसीसी सहित

14 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। संसद का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चारधाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चारधाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थयात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। पन्ना जिले की मझगवां हीरा खदान से एक बड़ा हीरा मिला है। यह हीरा 13.16 कैरेट का है और इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। प्रदेश में आज दमोह, मंडला और डिंडोरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि भोपाल और इंदौर सहित 47 जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। और भोपाल के मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में जनजाति चित्रकार की प्रदर्शनी जारी है, जिसमें भील जनजाति चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की प्रदर्शनी का संयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 30 जुलाई तक संचालित रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 88.32 मीटर, साथी GTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर, 6:30 और रात 8:35 पर। आजकल ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:40 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम शाम 6:00 प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण है फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। सुर्खियों में ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 8:15 और रात 8:30 विधानसभा समीक्षा। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम रात 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा और रात 10:00 संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम में 88.32 मीटर, साथी DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेब पर अब हमारी ये सभा यही संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेब 88.32 मीटर पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

55 57।

मीटिंग फेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, शाम के 5 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त माधवी
1: और मैं हूं अनुषा, और हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए आज का खास सेगमेंट कुछ बातें और कुछ गीत, जिसमें हम आपसे कई सारी बातें करेंगे और

0: और कुछ ज़रूरी जानकारियां भी देंगे, जिसमें शामिल है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस, शतरंज दिवस और एक खास व्यक्तित्व जिन्होंने फिल्मों में हिंदी सिनेमा को एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके विषय पर भी
1: चर्चा करेंगे। तो अनुषा, ये सारी बातें तो हम करेंगे ही, लेकिन क्यों ना शुरुआत करने से पहले हमारे श्रोताओं से आज के दोनों सवाल पूछ लिए जाएं।
0: बिल्कुल।
1: तो आज का पहला सवाल जो है वो ये है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस महासागर में है।
0: और श्रोताओं, आज का दूसरा सवाल है कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है।
1: तो दोस्तों, आपको इन दोनों सवालों का उत्तर ढूंढ के रखना है और इस कार्यक्रम के अंत में हम आपसे इसके जो जवाब है वो साझा करेंगे। फिलहाल हम कार्यक्रम को शुरुआत एक अच्छे से गीत के साथ कर लेते हैं।
2: क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, जब हम दूर आसमान में चमकते चांद को देखते हैं तो वो किसी अद्भुत चित्र या किसी ऐसे रहस्य की तरह प्रतीत होता है जो हमारी पहुंच से बहुत दूर है, और बचपन से ही हम उसे निहारते आए हैं, कभी खिड़की से, कभी छत पर बैठ के, तो कभी सुनसान रास्ते पर।
3: एक समय था जब चांद तक पहुंचना असंभव सा लगता था। शायद इसी वजह से हमारी कहानियों, कविताओं और गीतों में चांद को एक खास सी जगह दी गई है।
2: बिल्कुल सही माधवी, वो कहते हैं ना प्रेम में अक्सर कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो ये केवल एक कल्पना नहीं बल्कि उस असंभव को संभव कर दिखाने के लिए एक साहस का प्रतीक है, और मनुष्य की जिज्ञासा और विज्ञान की उड़ान ने उस कल्पना को वास्तविकता में बदल दिया।
3: तो दोस्तों, आज है 20 जुलाई और आज का दिन विज्ञान, साहस और मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक को समर्पित है। आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। ये वही दिन है जिसने पूरी दुनिया को यह विश्वास दिलाया था कि अगर हौसले बुलंद हों तो आसमान भी मंजिल बन सकती है।
2: बिल्कुल, 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के दौरान इंसानों ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रीन ने इस ऐतिहासिक मिशन को सफल बनाया था, जबकि माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल में चंद्रमा की कक्षा में ही रहे। ये उपलब्धि केवल अमेरिका की नहीं थी बल्कि पूरी मानवता की उपलब्धि मानी जाती है।
3: सोचिए, उस दौर में न तो आज जैसी आधुनिक तकनीकें थी, न ही इतनी उन्नत कंप्यूटर प्रणाली, फिर भी वैज्ञानिकों को और अंतरिक्ष यात्रियों को नो अपने ज्ञान, मेहनत और अद्भुत साहस के दम पर इतिहास रचकर दिखाया। यही कारण है कि 20 जुलाई हमें सपने देखने और उन्हें पूरे करने का साहस भी सिखाता है।
2: और नील आर्मस्ट्रांग का वो प्रसिद्ध कथन आज भी हम सभी लोगों को प्रेरित करता है। ये एक छोटा सा कदम है, उन्होंने ऐसा कहा कि ये एक छोटा सा कदम है लेकिन मानव जाति के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है। ये केवल एक वाक्य नहीं था बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद और संभावनाओं का संदेश बन गया।
3: चंद्रमा हमेशा से ही हमारी कहानियों, कविताओं और कल्पनाओं का हिस्सा रहा है। कभी चंदा मामा बनकर बच्चों का दोस्त बना है, तो कभी प्रेम, शांति और सुंदरता का प्रतीक बना है। लेकिन विज्ञान ने हमें ये भी सिखाया है कि चंद्रमा केवल कल्पना का संसार नहीं है बल्कि शोध और खोज का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र भी है।
2: और यही वजह है कि आज दुनिया के कई बड़े देश चंद्रमा पर नए नए मिशन भेज रहे हैं। वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर पानी के रूप में बर्फ कहाँ कहाँ मौजूद है, भविष्य में इंसान कितने समय तक वहाँ रह सकता है, और चंद्रमा अंतरिक्ष के आगे की यात्राओं का आधार कैसे बन सकता है।
3: और भारत भी कहीं पीछे नहीं है, भारत ने भी इस दिशा में शानदार सफलता हासिल की है। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं को प्रमाण और खोजने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया, और यही उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है, और ये दिखाती है कि भारतीय वैज्ञानिक किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, और एक रोचक बात है कि चंद्रमा पर वातावरण लगभग नहीं के बराबर है, इसलिए वहाँ ना हवा चलती है, ना बारिश होती है और ना ही आवाज़ वैसे सुनाई देती है जैसे पृथ्वी पर सुनाई देती है, और इसी कारण अंतरिक्ष यात्री विशेष स्पेस सूट पहनकर वहाँ पर काम करते हैं।
3: चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की तुलना में लगभग 6 गुना कम है, और यही वजह है कि वहाँ अंतरिक्ष यात्रियों की चाल और उछाल बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उनके हर कदम में मानो विज्ञान और रोमांच साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं।
2: बिल्कुल, तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस केवल अतीत की उपलब्धियों को याद करने का दिन नहीं है बल्कि भविष्य की नई संभावनाओं को देखने का भी एक बढ़िया अवसर है। आज के बच्चे ही कल के वैज्ञानिक, इंजीनियर और अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। शायद आने वाले वर्षों में कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर लंबे समय तक रहकर शोध भी करे।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिज्ञासा, शिक्षा और निरंतर प्रयास ही हमें इन नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जब इंसान ने चंद्रमा तक पहुंचने का सपना पूरा कर ही लिया है, तो दुनिया में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो मेहनत, लगन और साहस से हासिल ना किया जा सके।
2: बिल्कुल, आइए अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस पर हम विज्ञान के प्रति अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें, नई खोज को अपनाएं और बच्चों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करें।
3: तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो दोस्तों, आज का दिन बुद्धिमता, रणनीति और धैर्य के अद्भुत खेल को समर्पित है। आज अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला विश्व शतरंज दिवस है। ये दिन हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन वर्ष 1924 में पेरिस में विश्व शतरंज महासंघ यानी कि FIDE की स्थापना हुई थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे दी थी,
2: ताकि शतरंज जैसे कालजयी खेल को दुनिया भर में और अधिक बढ़ावा मिल सके। शतरंज केवल एक खेल नहीं बल्कि सोचने का एक तरीका है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की तरह हर चाल सोच समझ कर चलनी चाहिए। कभी धैर्य सबसे बड़ा हथियार बनता है इसमें, तो कभी सही समय पर छोटा सा जो निर्णय हम लेते हैं वो पूरी बाजी बदल देता है। नहीं,
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। दोस्तों, शतरंज की सबसे खास बात यह होती है कि इसमें उम्र की कोई सीमा ही नहीं होती। छोटे से बच्चे से लेकर एक अनुभवी खिलाड़ी तक हर कोई एक ही बिसात पर अपनी बुद्धि और रणनीति का प्रदर्शन कर सकता है, और शायद यही कारण है कि इसे दिमाग का खेल भी कहा जाता है।
2: बिल्कुल, अगर इतिहास पर नजर डालें तो शतरंज की जड़ें भारत से जुड़ी हुई मानी जाती है। लगभग 1500 वर्ष पहले भारत में चतुरंग नाम का खेल खेला जाता था, जिसे आधुनिक शतरंज का प्रारंभिक रूप माना जाता है। और समय के साथ ये खेल फारस पहुंचा, फिर यूरोप, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोकप्रिय होता गया।
1: ये जानकर कितना गर्व होता है कि जिस खेल ने पूरी दुनिया को अपनी रणनीति से प्रभावित किया है, उस खेल की शुरुआत भारत की इस पावन धरती से हुई है। आज दुनिया के लगभग हर देश में शतरंज खेला जाता है और करोड़ों लोग इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, और माधवी, शतरंज उन खेलों से बहुत अलग है क्योंकि शतरंज एक आम खेल में नहीं आता है। इसके कई सारे फायदे भी है। ये याददाश्त को मजबूत बनाता है, एकाग्रता बढ़ाता है, समस्या को हल करने की क्षमता विकसित करने की हमें वो देता है, निर्णय लेने की कला और बेहतर बनाता है ये हम लोगों में। और यही वजह है कि कई सारे स्कूलों में भी बच्चों को शतरंज सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है।
1: भारत ने इस खेल में अपनी अलग ही पहचान बनाई है, और शायद इसीलिए जो तुम कह रही हो कि स्कूल्स में बच्चों को मोटिवेट किया जाता है इसको खेलने के लिए, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब भी भारतीय शतरंज की बात होती है, सबसे पहला नाम अगर कोई आता है तो वो होता है विश्वनाथ आनंद का। उन्होंने कई बार विश्व शतरंज चैंपियन बनकर देश का नाम रोशन किया है और लाखों युवाओं को इस खेल से जुड़ने की प्रेरणा भी दी है।
2: और अब तो भारत के युवा खिलाड़ी भी पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। डी गुकेश ने सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनने का इतिहास रच दिया। आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी, हम्पी, आर वैशाली और अन्य कई भारतीय खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारत को विश्व शतरंज की उभरती हुई महाशक्ति भी माना जा रहा है।
1: शतरंज हमें ये भी सिखाता है कि हर मोहरे का अपना महत्व होता है। प्यादा छोटा जरूर होता है, लेकिन सही दिशा में बढ़ते बढ़ते वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली मोहरे में बदल सकता है। यही सीख जीवन में भी उतनी ही सटीक बैठती है। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं।
2: और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि शतरंज में जीत केवल चालों की नहीं होती, बल्कि संयम, धैर्य और हमारी दूरदृष्टि की भी होती है। कई बार खिलाड़ी एक चाल चलने से पहले सारी संभावनाओं पर विचार करते हैं कि अगर जैसा हम करते हैं कि अगर मैं ऐसा किया मैंने तो ऐसा भी हो सकता है, या हम हमारे जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियों को पहले ही आंक लेते हैं, और यही आदत जीवन में हमें बेहतर फैसले लेने में मदद भी करती है।
1: और आज का ये जो डिजिटल दौर है अनुषा, उसमें शतरंज पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो चुका है, क्योंकि जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन गेम्स में हेल्प करते हैं, वो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कोई भी खिलाड़ी कुछ ही सेकंड में किसी दूसरे देश के खिलाड़ी के साथ मुकाबला कर सकता है। तकनीक ने इस पारंपरिक खेल को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
2: बिल्कुल सही कहा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हमें ये याद दिलाता है कि बुद्धिमत्ता केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की कला उतनी ही महत्वपूर्ण है। चाहे खेल हो, पढ़ाई हो, जीवन, रणनीति, धैर्य और निरंतर अभ्यास सफलता की सबसे मजबूत नींव होती है।
1: तो आइए आज के इस दिन को का कुछ समय हम शतरंज को भी दे दें। हो सकता है एक छोटी सी बाजी हमें जीवन की कोई बड़ी सीख दे जाए।
2: बिल्कुल, तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो दोस्तों, पर्दे पर कुछ चेहरे सिर्फ किरदार नहीं निभाते, कुछ कलाकार अभिनय नहीं करते, वे समाज के आईने में उन सच्चाइयों को उकेरते हैं जिनसे हम अक्सर नजरें चुरा लिया करते हैं।

0: कभी पर्दे पर सवाल बने, कभी समाज की आवाज बने, हर किरदार में ढलकर वे अभिनय के सरताज बने। तो दोस्तों, आज ऐसे ही एक विलक्षण कलाकार, हिंदी सिनेमा के सशक्त हस्ताक्षर नसीरुद्दीन शाह के जन्मदिन पर हम उनके जीवन और कला की उस यात्रा को याद कर रहे हैं जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी।
1: 20 जुलाई 1950 उत्तर प्रदेश के बाराबांकी जिले में जन्मे नसीरुद्दीन शाह, जो शायद इस बात से अनजान थे कि वे आने वाले वर्षों में ये सिनेमा, ये नाम भारतीय रंगमंच और सिनेमा के सबसे गंभीर और प्रभावशाली नामों में से एक में होंगे।
0: नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और पुणे के फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट से अभिनय की बारीकियां सीखने और उन सभी के बाद उसको बखूबी उपयोग करने वाले नसीरुद्दीन शाह ने कभी केवल लोकप्रियता को अपना लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने उस सिनेमा को चुना जो समाज से सवाल करता था, मनोरंजन के साथ साथ चेतना भी जगाता था।
1: तो दोस्तों, 70s और 80s के दशक में जब हिंदी सिनेमा चमक दमक और पारंपरिक कहानियों के बीच चल रहा था, तब समानांतर सिनेमा यानी कि पैरेलल सिनेमा की एक नई लहर उठ रही थी।
0: दोस्तों, पैरेलल सिनेमा, जिसे इंडियन न्यू वेव या फिर आर्ट फिल्म्स भी कहा जाता है, ये मुख्य धारा के बॉलीवुड सिनेमा के विकल्प के रूप में आया था, जो यथार्थवादी कम बजट वाली फिल्मों का आंदोलन था और खास तौर पर सामाजिक मुद्दों, मानवीय संघर्षों और कलात्मक कहानियों पर केंद्रित रहता था।
1: तो दोस्तों, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और सईद मिर्जा जैसे निर्देशकों के साथ नसीरुद्दीन शाह उस आंदोलन का चेहरा बन चुके थे।
0: और फिर निशांत, मंथन, स्पर्श, आक्रोश, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है और पार जैसी फिल्मों ने केवल कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि समाज के भीतर छिपी असमानताएं, अन्याय और संघर्षों को लोगों के सामने लेकर आए।
1: अब चले भले ही वो स्पर्श में एक दृष्टिहीन व्यक्ति की संवेदनाएं हों, मासूम में रिश्तों की जटिलता हो, या फिर पार में व्यवस्था से जूझते आम इंसान की पीड़ा हो, नसीरुद्दीन शाह ने हर किरदार को अपनी आत्मा से जिया है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे पैरेलल सिनेमा और नसीरुद्दीन शाह के उसमें योगदान की, लेकिन खास बात यह है कि उनकी कला केवल गंभीर सिनेमा तक सीमित नहीं रही। जाने भी दो यारो जैसी व्यंग्यात्मक जो फिल्म उनकी, सहजता, इकबाल में उनके मार्गदर्शन की भूमिका, वेंसडे में एक आम आदमी के आक्रोश की अभिव्यक्ति, और तो और द डर्टी पिक्चर में उनके सशक्त अभिनय ने यह साबित कर दिखाया कि वो हर रंग में ढल जाने वाले कलाकार हैं।
3: अनुषा, उनकी आवाज़ में एक अलग सा ठहराव है, संवादों में गहराई है और अभिनय में एक ऐसी सच्चाई है जो दर्शकों के मन में लंबे समय तक बनी रहती है। तुम्हें क्या लगता है?
2: बिल्कुल सही। उनकी फिल्में जब हम देखते हैं तो हम कई बार यही सोचते हैं कि कितना आवाज़ में कितनी गंभीरता नज़र आ रही। नहीं,
3: सही कह रही हो तुम। आज उनके जन्मदिन पर हम केवल एक अभिनेता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस विचार का अभिनंदन कर रहे हैं जिससे भारतीय सिनेमा को नए प्रश्न पूछना सिखाया है, जिसने हमें ये बताया है कि सिनेमा सिर्फ सपनों की दुनिया नहीं है बल्कि समाज का सच भी हो सकता है।
2: बिल्कुल सही। और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल पिकअप शामिल है।
3: भारत सरकार ने भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है।
2: नसीरुद्दीन शाह एक ऐसा नाम है जिसने अभिनय को कला से आगे बढ़ाकर एक जिम्मेदारी बनाया है।
3: उनके जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और उनकी अनगिनत भूमिकाओं को सलाम।

0: तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा।
1: अनुषा, जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे दोस्तों से कुछ सवाल पूछे थे, तो अब समय आ गया है उन सवालों के जवाब को साझा करने का।
0: बिल्कुल।
1: तो पहला सवाल जो था वो ये था कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस महासागर में है। तो इसका जो उत्तर है वो ये है कि प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा अधिक जल है।
0: और आज का दूसरा प्रश्न था कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, और ये आप में से ज़्यादातर को पता ही होगा, इसका जवाब है मुंबई।
1: तो इसी के साथ हम चाहेंगे आपसे विदा लेना। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त माधवी।
0: और मैं अनुषा।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुलक्षणा पंडित के स्वर में, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गीत। नक्श लयालपुरी के बोल हैं, खय्याम का संगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत में अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम बंदिश।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए याराना फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। अनजान की बोल है, राजेश रोशन का संगीत।

याराना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: पतंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओ, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कालिया जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश कालिया इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी, तो श्रोताओं अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
2: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
2: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
2: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओं, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: तो श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, शीर्षक है न्याय।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
3: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है। और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
4: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
3: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
5: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
6: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
3: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
5: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
7: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
5: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
3: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
4: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
8: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
5: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
8: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
5: क्यों दे दो?
8: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई, इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
5: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
8: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
4: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
9: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
4: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
10: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
11: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
10: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
10: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
5: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
11: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
5: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
10: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
7: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
10: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
7: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
12: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा
13: गधे पे बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
7: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
11: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
7: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
5: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी, हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
10: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
9: महाराज जय हो,
14: महाराज जय हो,
9: महाराज जय हो।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता, रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद चांदोग्य से एक कहानी है तत् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है, परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए है। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि, अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरेय उपनिषद से अहम् ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरुपिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।
0: मैं समझाता हूं
1: जी।
2: उद्दालक श्वेत केतु को फूलों के एक उद्यान में ले जाते हैं।

0: श्वेत केतु। जी पिताजी। क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जीतात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं

0: ये रहा फलतात।
1: वत्स, अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी। पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी।
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो?
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है, तत् त्वम् असि।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है, और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि।
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। पेश है सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं सुरेश वाडकर और चेतना उमर जी। आइए पहले सुनते हैं चेतना उमर जी का गाया ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर के स्वर में ये भजन। गीत और संगीत वेणु मेनन का था। सुगम संगीत में आप सुनिए चेतना उमर जी के स्वर में ये भजन।

सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे सुरेश बाटकर और चेतना के गाए भजन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं शेख महजबी अलमास। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है ग्वालियर से, जहां लाडली लक्ष्मी योजना

0: में बेटियों के सम्मान, शिक्षा और सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं। जिले में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 1 लाख से अधिक बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया जा चुका है। पेश है हमारे ग्वालियर संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए अच्छी पढ़ाई के साथ उनके भविष्य को संवारने का काम कर रही है। ग्वालियर जिले में भी लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के सम्मान, शिक्षा और सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। जिले में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 1 लाख से अधिक बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया जा चुका है। इस योजना से लाभान्वित होकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं ग्वालियर की तनुष्का भदौरिया। तनुष्का कहती हैं,
2: इस योजना के माध्यम से मुझे शिक्षा के हर पड़ाव पर, जैसे 6वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश करने का सरकार की ओर से निरंतर छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। इस वित्तीय मदद के कारण मेरे माता पिता पर मेरी पढ़ाई का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ा और मैं बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर पाई हूँ।
1: तनुष्का कहती हैं कि सबसे बड़ी खुशी ये है कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सरकार द्वारा मुझे एकमुश्त 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये राशि मेरे स्वावलंबन की नींव बनेगी।
2: सबसे बड़ी राहत यह बात की है कि जब मैं 21 वर्ष की आयु की पूरी कर लूंगी तब सरकार की ओर से मुझे एक बड़ी एकमुश्त राशि भी मिलेगी जो मेरे भविष्य की योजनाओं या पढ़ाई या फिर विवाह में एक मजबूत आधार बनेगी। इस योजना से हम सभी बेटियों को बहुत ही मदद मिली है। सरकार से मैं यही कहना चाहूंगी कि यह लाडली लक्ष्मी योजना हमेशा चलती रहे जिसके कारण हम बेटियां आगे बढ़ते हैं।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव।
0: हमारी दूसरी खबर है डिंडोरी जिले से, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में जल संचय एवं जन भागीदारी के माध्यम से विभिन्न जल स्रोतों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण का व्यापक कार्य किया गया। जिले में इस अभियान के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के परिणाम स्वरूप डिंडोरी ने देश में 3रा स्थान प्राप्त किया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं डिंडोरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया।
3: डिंडोरी जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में जल संचय एवं जन भागीदारी के माध्यम से विभिन्न जल स्रोतों के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण का व्यापक कार्य किया गया। जिले में इस अभियान के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के परिणाम स्वरूप डिंडोरी जिले ने देश में 3रा स्थान प्राप्त किया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत, विकास खंड एवं तहसील स्तर पर बड़े पैमाने पर तालाब, स्टाफ डैम, नाला, खेत तालाब, डगवेल, नदी नाले, नहर, सोकपिट, कंटूर ट्रेंच, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं स्प्रिंग ड्राफ्ट जैसे कार्य संपादित किए गए। साथ ही शासकीय एवं अर्धशासकीय भवनों में भी वर्षा जल संचयन की व्यवस्थाएं विकसित की गई। अभियान के तहत जिले की 364 ग्राम पंचायतों में जन भागीदारी से जल संरक्षण के कार्य संपन्न हुए, जिसमें कुल 31,21,200 घन मीटर जल संग्रहण क्षमता का विकास हुआ है। इस साल कम बारिश होने से निर्मित संरचनाओं की उपयोगिता दिखाई दे रही है और इनमें जल संचय होने लगा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया।
0: हमारी अगली खबर है इंदौर जिले, जहां बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंदौर से हमारे संवाददाता मनीत दुबे।
4: इंदौर जिले के सभी शहरी और ग्रामीण विकास खंडों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाएं पहुंचाने के लिए दस्तक अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां जारी है। अभियान में उच्च संवेदनशील क्षेत्रों, शहरी मलिन बस्तियों, दूरस्थ एवं दुर्गम बस्तियों, खानाबदोश परिवारों, ईंट भट्टों, बंजारा बस्तियों और निर्माणाधीन स्थलों पर रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान के तहत जिले भर में 4 लाख से अधिक बच्चों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 350 से अधिक दस्तक दल गठित किए गए हैं। अभियान के जमीनी क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर तरुण गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया,
5: इंदौर जिले में दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है जो कि 14 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें आशा, आंगनवाड़ी और ANM के संयुक्त दल के द्वारा 0 से 5 वर्ष के सभी बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उनके जांच की जाएगी। साथ ही प्रत्येक बच्चों को जिंक और ORS प्रदाय किया जाएगा और दस्त में ORS के महत्व के बारे में समझाया जाएगा। 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए का अनुग्रहण भी किया जाएगा जो कि इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। गंभीर रूप से ग्रसित बीमारी से बच्चों की पहचान DSS टूल के माध्यम से की जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा, गंभीर अवस्था में होने पर उनको रेफरल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इस दौरान गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की भी आकलन किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई करके उनका उपचार आंगनवाड़ी स्तर पर या NRC के माध्यम से इलाज किया जाएगा।
4: गौरतलब है कि प्रदेशव्यापी इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाना, बाल्यकालीन बीमारियों की समय पर पहचान एवं उपचार सुनिश्चित करना और 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को आवश्यक स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं उपलब्ध करवाना है। इस अभियान में 6 माह से कम आयु के शिशुओं में स्तनपान को बढ़ावा देने, 6 माह बाद पूरक आहार शुरू कराने और बच्चों के पोषण एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन के लिए भी जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है जबलपुर से, जहां नशे से दूरी है जरूरी अभियान चलाया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी।
6: नशे की लत केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करती है। कई लोग इससे बाहर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन अकेले संघर्ष करते करते हार मान लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस उम्मीद का मजबूत सहारा बन रहा है। यहां लोग पूरी गोपनीयता के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। नशे की बीमारी से जुड़ी इस समस्या पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सक डॉक्टर OP राय चंदानी भी मानते हैं कि
7: अल्कोहल या नशा प्रवृत्ति या अल्कोहल डिपेंडेंट या बाकी नशों के बारे में ये बोला जाता है कि ये एक मानसिक बीमारी के अंतर्गत आता है। अब इस बीमारी के कारण होते हैं बायोलॉजिकल, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर और ब्रेन के पाथवे से हैं, साइकोलॉजिकल, जो कि पर्सनालिटी और इंसान के व्यक्तित्व से संबंधित है, और सोशल, जो कि सामाजिक है। जहां पे भी कोई वल्नरेबल व्यक्ति है और इन तीनों इटियोलॉजी से कनेक्ट होता है वो अल्कोहल डिपेंडेंस की बीमारी हो सकती है।
6: इस कार्यक्रम से जुड़े संयमित सदस्य कहते हैं,
8: मैंने शराब के कारण अपना परिवार, सम्मान और आत्मविश्वास खो दिया, लेकिन ए से जुड़ने के बाद, अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ मिले सहयोग और अपनापन ने मेरी जिंदगी बदल दी है। आज मैं संयमित हूँ और हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि मदद मांगने में कभी संकोच न करे, नई शुरुआत हमेशा संभव है।
6: आइए मध्य प्रदेश शासन के नशे से दूरी है जरूरी अभियान को जन जन का संकल्प बनाए और एक स्वस्थ, संयमित एवं नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
0: अब हम अगली खबर के लिए रुख करते हैं गुना जिले की तरफ, जहां कलेक्ट्रेट को ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी।
9: गुना कलेक्ट्रेट एवं SDM कार्यालय गुना को उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्य प्रणाली एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इस संबंध में जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने आकाशवाणी को जानकारी देते हुए बताया,
10: गुना में जो हमारा कलेक्टर ऑफिस है उसको और यहाँ पे जो हमारा SDM और तहसील ऑफिस है, इसके लिए ISO 9001 के लिए अप्लाई किया था। उसकी कुछ कंडीशंस होती है, कुछ फॉलोअप होते हैं पॉइंट्स, उसका पालन किया है और वो उसका सर्टिफिकेट मिला। तो गुना कलेक्टर ऑफिस और हमारा SDM और तहसील ऑफिस दोनों ISO 9001 की कैटेगरी में आ गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उसके पैरामीटर्स पे उसका हमारी टीम बहुत अच्छा काम करेगी, जिसका फायदा हमारी आम जनता को जो यहाँ पे आती है उससे मिलता है। इसके पीछे उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम लोग एक प्रोसेस बेस्ड सिस्टम को आधार बना के रखते हैं और इंडेक्सिंग होती है, लिस्टिंग होती है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, फाइलिंग प्रॉपर रखी जाती है, तो उससे फाइल को ढूंढना भी आसान होता है, किसी को देना भी आसान होता है। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं और मैं अपनी पूरी टीम को भी बता देता हूँ कि उन्होंने ISO के जो नॉर्म्स थे उसके हिसाब से काम किया और हमको सर्टिफिकेट मिला।
9: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी।
0: अब हम चलते हैं नर्मदापुरम जिले की तरफ, जहां 8 अगस्त से शुरू हो रही नागद्वारे यात्रा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुष तिवारी।
11: नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा की हरी भरी वादियों और घने जंगलों के बीच स्थित नागद्वारे धाम एक बार फिर शिव भक्ति के रंग में रंगने जा रहा है। 8 से 17 अगस्त तक आयोजित होने वाली यह ऐतिहासिक यात्रा प्रदेश ही नहीं देश की सबसे कठिन रास्ता से जुड़ी धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। पचमढ़ी से लगभग 12 किलोमीटर का दुर्गम पहाड़ी मार्ग पार कर श्रद्धालु भगवान शिव और नाग देवता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यही कारण है कि नागद्वारी को प्रदेश का अमरनाथ भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र विशेषकर विदर्भ से बड़ी संख्या में शिव भक्त हर वर्ष इस यात्रा में शामिल होते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर यहां श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा सैलाब उमड़ने की संभावना है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की है। यात्रा मार्ग पर कंट्रोल रूम, हेल्पलाइन, चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस, पेयजल, स्वच्छता, पार्किंग और सुचारू यातायात की व्यवस्था की जा रही है। मेले के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा, चिकित्सा दलों की तैनाती, एंटी वेनम की उपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं के विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से तनुष तिवारी।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी अगली खबर धार से है, जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस वर्ष भी आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को भव्य रूप से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा, भक्ति, आस्था और उत्साह के साथ भाग लिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं धार से हमारे संवाददाता सुनील सचान।
12: पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले में सकल हिंदू समाज और श्री सांवरे से भक्त मंडल के तत्वाधान में परंपरागत रूप से धार में निकाली जाने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस वर्ष भी आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को भव्य रूप से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा, भक्ति, आस्था और उत्साह के साथ भाग लिया। ऐतिहासिक गौशाला के समीप से प्रारंभ हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के विग्रहों को आधुनिक रथ में विराजित करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर की गई। इसके बाद महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती सावित्री ठाकुर सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और दर्शन पूजन कर आरती की। आरती के पश्चात भगवान जगन्नाथ के रथ को आगे खींचने के लिए श्रद्धालु रथ की रस्सी को थामने के लिए लालायित नजर आए। यात्रा के आगे आगे श्रद्धालु मार्ग को बुहारते हुए चल रहे थे, साथ ही भजन मंडलियां भजन कीर्तन करते हुए और बड़ी संख्या में रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु भजनों पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। श्रद्धा का आलम यह था कि रथ यात्रा को अपने गंतव्य श्री सांवरेश्वर मंदिर तक की 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगभग 6 घंटे का समय लग गया। जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रथ यात्रा थानागर के प्रमुख मार्गों से होते हुए देर शाम त्रिमूर्ति नगर के श्री सांवरेश्वर मंदिर पहुंची। जगन्नाथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर श्री सांवरेश्वर भक्त मंडल के सदस्य और रथ यात्रा प्रभारी श्री अशोक मनोहर जोशी ने बताया कि
13: जगन्नाथ के हाथ जगत पसारे हाथ उड़ीसा पुरी की तर्ज पर आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जिस प्रकार वहाँ जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकल रही है, उसी अनुक्रम में आज हमारे भोजशाला से सांवरिया सेठ भक्त मंडल और सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में रथ यात्रा प्रारंभ हुई। रथ यात्रा का विभिन्न जगह स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से रस्सी खींचकर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और जगन्नाथ रथ यात्रा में आसपास के अंचल के ग्रामीण लोग बड़ी मात्रा में उपस्थित हुए और रथ यात्रा विभिन्न मार्गों से होती श्री सांवरिया सेठ मंदिर पर विश्राम हेतु पहुंची है। यहां पर भगवान श्री सांवरिया सेठ और जगन्नाथ भगवान की आरती होकर 56 भोग का प्रसाद वितरित किया गया।
12: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7 बजने को है, कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कर कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस

0: समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवी बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारी सी सेफेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रपति नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के साथ काम करने की बड़ी संभावना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनो में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक है, क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की ये यात्रा पहली राजकीय यात्रा है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ब्रिक्स में आर्थिक विकास को समर्थन देने वाले स्थिर, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब कार्यक्रम विवरण में जानकारी लीजिए सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। इसमें आज आपको सुनवाएंगे डिजिटल युग में ग्रामीण महिलाओं की नई उड़ान विषय पर मेघा धामों से ली गई भेंट वार्ता। साथ ही आप सुनेंगे घरेलू टिप्स और घरेलू व्यंजन के बारे में जानकारी। रात 8 बजे संसद समीक्षा, 9:30 बजे पब्लिक स्पीक और 10 बजे संसद के प्रश्नकाल में की गई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये तीनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। रात 8:15 बजे सुर्खियों में और रात 8:30 बजे विधानसभा समीक्षा, ये दोनों ही कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। चित्रगीत का आनंद आप ले सकते हैं 9:15 बजे और 10:15 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। आज रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे रवि गरुड़ का बांसुरी वादन, राग होगा हंस ध्वनि और पूरिया कल्याण। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:30 बजे आप सुनेंगे चिंतन, 6:05 पर आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, खेती की बातें कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:35 पर, इसमें कल का विषय रहेगा एग्री वोल्टाइक खेती प्रणाली, जानकारी देंगी सुनीता पंडित। 6:40 पर श्री रामचरितमानस गान प्रसारित किया जाएगा। 7:20 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुनहरे पल का। सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम विविधा। 9:00 बजे लोक संगीत में कल कलाकार होंगे गीता पराग और साथी, और सुगम संगीत में 9:15 बजे सुनिएगा श्रुति साडोलीकर को। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कल आपको सुनवाएंगे कृष्ण मोहन भट्ट का सितार वादन, राग होगा भैरव। 10:00 बजे जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। 10:05 पर आप सुनेंगे फोन इन प्रोग्राम MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 बजे से कार्यक्रमों का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से होगा, इसमें 11:00 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, फिल्म संगीत 12:00 बजे संग्रहालय से 12:30 बजे, महिला कार्यक्रम दिन में 1:00 बजे, 1:30 बजे होगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत आपकी फरमाइश, ये कार्यक्रम होगा दिन में 2:30 बजे। अब एक नज़र कल शाम की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। कल शाम 5:00 बजे युववाणी में आकर्षण रहेगा हमारे शहर, इसके अंतर्गत रीवा शहर के बारे में जानकारी दी जाएगी। 5:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुना जा सकता है 6:00 बजे। कल शाम 6:30 बजे सुगम संगीत में सुनिएगा श्रुति साडोलीकर को और लोक संगीत में गीता पराग और साथियों को 6:45 पर। 7:20 पर कार्यक्रम खेती गृहस्थी का प्रसारण किया जाएगा। कल रात 8:00 बजे संसद समीक्षा और 10:00 बजे संसद के प्रश्नकाल में की गई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग, ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कल रात 9:30 बजे उर्दू कार्यक्रम कहकशां का अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा। मनभावन आप सुन सकते हैं 10:00 बजे और 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे कृष्ण मोहन भट्ट का सितार वादन। ये रूपरेखा थी सभा के शेष और कल की तीनों सभाओं के मुख्य कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
2: और उसके अंतर्मन की
3: ओह लवली, वेल डन,
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड,
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक

0: कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, समान नागरिक संहिता सहित विभिन्न विधेयक पेश। संसद के मानसून सत्र की भी हुई शुरुआत, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया गया। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ पूर्व अनुमोदन में प्रदेश को मिला राष्ट्रीय सम्मान। और अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन ही राज्य सरकार ने सदन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 सहित विभिन्न विधेयक पेश किए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस पर कल चर्चा कराई जाएगी। वहीं पेश किए गए अन्य विधेयकों में मध्य प्रदेश निरसन विधेयक, मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, मध्य प्रदेश श्रम शक्ति संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन विधेयक सहित कई अन्य विधेयक भी शामिल हैं। मंत्री गौतम टेटवाल ने मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2026 तथा मध्य प्रदेश उपकर संशोधन अध्यादेश 2026 सदन के पटल पर रखे। समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को लेकर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये हमारी प्रतिबद्धता है कि सभी को समान अधिकार मिले।
1: यूसीसी हमारा कमिटमेंट है। कल हमने कैबिनेट की बैठक में उसको विधानसभा की ओर अग्रेषित किया, आज विधानसभा में टेबल हुआ है और हम जल्द से जल्द इसको पारित करेंगे। अभी के लिए, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए यूसीसी जरूरी, समानता के लिए, एक रूपता के लिए यूसीसी जरूरी है। इस देश की महिलाओं के सुनहरे भविष्य के लिए और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए यूसीसी जरूरी है। जो विरोध कर रहे हैं वो महिलाओं के हितों का विरोध कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं।
0: संसद का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया। 25 दिन चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉ मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस कदम से अनुसंधान का कार्य सुगम बनाया गया है ताकि उन्हें आम जनता के लिए सुलभ किया जा सके। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर के स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गए हैं। लोकसभा के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। ये लड़कियों की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ सबसे अधिक पूर्व अनुमोदन करने वाला बड़े राज्य की श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान योजना के अंतर्गत बायोमेट्रिक आधारित प्री ऑथराइजेशन प्रक्रिया के प्रभावी, पारदर्शी तथा सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश ने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता, तकनीकी आधारित सुशासन और जनहितकारी कार्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि गुरुजन सदैव पूजनीय वंदनीय हैं। गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान विज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के समिति कक्ष में आगामी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को बढ़ावा देते हुए पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा तथा भारतीय गुरु शिष्य परंपरा के आदर्शों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशव्यापी महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व का आयोजन किया जाए। इसमें स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थानों तथा खेल, नाटक, चित्रकला, संगीत तथा अन्य कला संस्थानों की भी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को एक और राष्ट्रीय सम्मान मिला है। संस्कृति विभाग के अंतर्गत महाराजा विक्रमादित्य

0: संयुक्त शोधपीठ द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2026 को बीटा अवार्ड 2026 में गवर्नमेंट इवेंट ऑफ द ईयर श्रेणी का गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। देहरादून में आयोजित हिंदुस्तान 2.0 नेशनल चिंतन शिविर एवं एक्सपो में यह सम्मान दिया गया। विक्रमोत्सव 2026 को इस वर्ष मिला यह तीसरा राष्ट्रीय सम्मान है। संस्कृति सलाहकार एवं शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: विक्रमोत्सव का जो सिलसिला मध्य प्रदेश में पिछले 20-22 साल पहले आरम्भ हुआ था, उससे देश में और दुनिया में रिकग्निशन मिल रही है, प्रतिष्ठा मिल रही है, और वह देश और दुनिया का जो सांस्कृतिक नक्शा है उसमें एक विशेष स्थान वो अर्जित करते जा रहा है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इवेंट इंडस्ट्री ICEI द्वारा भी पिछले दिनों 15 और 16 जुलाई को देहरादून में जो सारी इवेंट है, वेडिंग है, पर्यटन, हॉस्पिटलिटी और इससे जुड़े हुए जो उद्योग के अग्रणी प्रतिनिधि, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, होटल और रिसोर्ट संचालक आदि आदि जो विभिन्न क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति में, उनकी सहभागिता में विक्रमोत्सव को बीटा अवार्ड से नवाजा गया।
0: प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस एवं नवीनीकरण से संबंधित आवेदनों के त्वरित निराकरण तथा चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने के लिए गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए गृह सचिव कृष्णावेणी देसावतु ने बताया कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 के अंतर्गत नई लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित 60 दिनों की समय सीमा में तथा लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदनों का निराकरण 30 दिनों की समय सीमा में किया जाना है। इसी प्रकार जांच उपरांत प्रतिवेदन 15 दिन के भीतर संबंधित कार्यालय को भेजे जाने के निर्देश हैं। उन्होंने ये भी बताया कि निजी सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक विलंब को रोकने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी संदेश का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने नए मसौदा नियम बनाए हैं जिनके कारण 11 करोड़ टीवी चैनल बंद हो जाएंगे तथा केबल और डीटीएच शुल्क 4 से 6 गुना बढ़ जाएगा। इसमें भारी लाइसेंसिंग शुल्क भी लागू होंगे और लाखों नौकरियां खत्म होंगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताते हुए कहा कि सरकार ने ऐसा कोई नियम पेश नहीं किया है। अब रुख करते हैं मौसम का। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के करीब 90% हिस्से में 23 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भिंड, मुरैना, अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल और इंदौर सहित नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच के ग्राम डुंगलावदा स्थित शासकीय ITI में 23 जुलाई को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 20 जुलाई से बढ़ाकर अब 24 जुलाई कर दिया है। नर्मदापुरम के मगरिया स्थित 75 एकड़ की गौशाला में बारिश के दौरान गौवंश के संरक्षण के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत आज जबलपुर, शिवपुरी और झाबुआ में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीहोर के PM जवाहर नवोदय विद्यालय की बालक वर्ग 15 की फुटबॉल टीम का चयन राष्ट्रीय पी सुब्रतो फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए किया गया है, जो झारखंड में आयोजित होगी। आगरमालवा के जिला पंचायत सभागार में विकसित भारत जीराम जी योजना पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। धार कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों को 100% निराकरण करने के निर्देश दिए हैं और बैतूल जिले की जीवनदायिनी एवं मोक्षदायिनी सूर्यपत्री माँ ताप्ती के जन्मोत्सव के अवसर पर आज लाखों श्रद्धालु मुलताई पहुंचे और माँ ताप्ती के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ग्रामीण भाई सुन
1: मीडियम वेव 467.96 मीटर पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी का एकम सुनने वाली बेन नाके और दादा भैयों के राम राम। मैं आपकी बेन मनीषा शर्मा और आप सुनी रिया हो कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। आने ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम हो इन घर की लक्ष्मी होने की बात नहीं करा, यो कैसे हो सकतो है भाई बहनों। घर की रौनक आने घर की शान न घर की लक्ष्मी रहे घर की बेटी होन। बेटी का होने का भर से घर भरियो भरियो लगे और रौनक लगी रहे। अने केवे भी है एक बेटी दो कुल के संवारे है। अपनी बेटी ना को मान बढ़ाने का लिए उनके आगे लाने का लिए जो सरकार ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत करी थी। इन योजना को उद्देश्य है कि बेटी होन अपना पाँव पे खड़ी होए और आत्मनिर्भर बने। और आज अपन देखी भी रिया है कि हर क्षेत्र में बेटी होन अपना देश को नाम रोशन करी रही है। खेलकूद होए पढ़ाई लिखाई होए या फिर सेना होए हर जगह बेटी होन अपनी छाप छोड़ी रही है। सरकार को भी मानना है कि बेटा बेटी हर क्षेत्र में आगे बढ़े इका लिए उनके समान अवसर दिया जाए। पर फिर भी कई कई देखने में आवे कि बेटा ना का भविष्य के संवारने के लिए तो परिवार होन खर्च कर दे पर बेटी होन के बेटा होन की अपेक्षा कुछ कम अवसर मिले। इका लिए सरकार ने बालिका ना को संरक्षण उनकी शिक्षा और उनका सशक्तिकरण का लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत करी। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में का साथ साथ लाडली लक्ष्मी सुकन्या समृद्धि योजना होन बनाई जिससे कि बेटी होन आर्थिक रूप से भी सशक्त हो सके। उनकी पढ़ाई लिखाई में उनके आगे बढ़ने में कभी भी जो है आर्थिक बाधा नहीं आवे। अपनी बेटी ना का भविष्य का निर्माण कर लिए अपन सरकार द्वारा चली रही सारी योजना उनको फायदो ले सकता है। अने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई में उसका विवाह में अपन उन्हें जो आर्थिक सहायता मिले उनको उपयोग कर सकता है। बेटी ना का साथ देश का विकास में अपनों योगदान भी अपन दे सकता है क्योंकि बेटी होन आगे बढ़ेगी तो स्वाभाविक है उनका ज्ञान उनका कौशल से अपनो देश भी आगे बढ़ोगे। योजना की अधिक जानकारी लेने के लिए अपन अपना आसपास का आंगनवाड़ी केंद्र से जाके अपनी जो जानकारी है वह ले सकता है। भाई बहना यो निश्चित अपने करनो है कि अपना परिवार की और अपना गाँव की एक भी बालिका विद्यालय से वंचित नहीं रहे। आना अभी देखो शिक्षा को नए क्षेत्र भी जो सत्र है वो भी शुरू हुआ है तो ऐसा में हर बालिका विद्यालय जाए वह अपनी शिक्षा पूरी करे और शिक्षा का लिए कई भी बाधाओं आई रही है आर्थिक तौर पे तो उनसे निपटने का लिए सरकार ने योजनाएं बनाई है। तो जब बेटी आगे बढ़ेगी तो घर बसेगो अने बेटी बचेगी तो भी घर बसेगो अने बेटी पढ़ेगी तो देश बढ़ेगो। तो बेटी के पढ़ावा और देश के बढ़ावा इका लिए अपने जो सरकार योजना होन दे रही है लाभ होन दे रही है अपनी बेटी उनके बढ़ाने के लिए उनको फायदो जरूर उठाना चाहिए। मैंने देखो भाई बहनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का बारे में तो बात कर ली, अब क्यों नहीं सुशीला बेन को गाए हुए एक मीठो सो लोकगीत भी अपन सुनिज लेवा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भाई बहनों, आज को युग है डिजिटल युग। कई भी काम काज हो, छोटो सो काम हो कि भैया आपने कई चीज खरीदनी है तो वह भी घर में बैठे बैठे अपन खरीद ही सका है फोन का माध्यम से, या फिर कई पैसा लाखों की तादाद में इधर से उधर करना है भी घर बैठे बैठे हो सकते हैं। पहला आपने कोई काम करने में काफी समय लगता था, पर अब डिजिटल युग होने की वजह से घंटों को या यूं कहूं कि दिनों को काम जो है वो कुछ मिनटों में अपन खरीदा। तो डिजिटल युग में अपनी ग्रामीण महिला होन भी कितनी आगे बढ़ी रही है और कई कई उड़ान भरी रही है, इन बारे में वार्ता सुना। वार्ताकार है मेघा धामू।
3: नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल युग में ग्रामीण महिलाओं की नई उड़ान विषय पर। हम सब ने यह बात कई बार सुनी है कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा परिवार और समाज भी आगे बढ़ता है। यह बात आज हमारे सामने एक सच्चाई बनकर खड़ी है। आज मैं आपसे एक ऐसे बदलाव के बारे में बात करने जा रही हूँ जो हमारे गांव में निरंतर चला आ रहा है और जिसका असर बहुत गहरा है। जरा सोचिए, हमारे गांव की वह महिला जो बैंक जाकर पैसे निकालने, फॉर्म भरने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहती थी और हिचकिच

आती थी, आज वही महिला हाथों में मोबाइल लेकर और इंटरनेट से जुड़कर आत्मविश्वास के साथ डिजिटल दुनिया से जुड़ चुकी है। अब महिला स्वयं बैंक खातों की जानकारी रख रही है, पैसे भेज रही है और साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी ले रही है और कई जगह महिलाएं स्वयं का छोटा सा कारोबार भी चला रही है। मित्रों, डिजिटल साक्षरता का मतलब केवल मोबाइल चलाना नहीं होता, इसका मतलब है तकनीक को समझना और साथ ही उसका सही उपयोग करना और उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाना। आज के समय में मोबाइल और इंटरनेट ने गांव और शहर के बीच की दूरी को काफी हद तक कम कर दिया है। पहले जो सुविधाएं सिर्फ शहरों में उपलब्ध थी, आज वही सुविधाएं गांव तक पहुंच रही है और इस बदलाव का सबसे सकारात्मक असर अगर किसी पर पड़ा है तो वह है हमारी ग्रामीण महिलाएं। गांव की महिलाएं हमेशा से मेहनती रही हैं, वे खेतों में काम करती हैं, पशुपालन करती हैं, घर की जिम्मेदारियां निभाती हैं और परिवार को भी संभालती हैं, लेकिन लंबे समय तक उन्हें जानकारी और सुविधाओं से दूर रहना पड़ा। अब डिजिटल तकनीक ने इस दूरी को कम कर दिया है। आज महिलाएं अपने मोबाइल में मौसम की जानकारी देख रही हैं, जिससे उन्हें खेती में मदद मिल रही है। वे अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक कर रही हैं, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी समस्त जानकारी ले रही हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह भी ले रही हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। मान लीजिए हमारे ही पास के गांव की एक महिला, पहले वह घर के कामों तक ही सीमित थी, बैंक जाना, पैसे निकालना या किसी योजना की जानकारी लेना, ये सब काम वह खुद नहीं कर पाती थी। लेकिन जब उसने मोबाइल चलाना सीखा तो धीरे धीरे उसने UPI का इस्तेमाल करना शुरू किया। आज वह महिला न केवल अपने परिवार के खर्चों का हिसाब खुद रखती है, बल्कि घर से बने अचार और पापड़ को ऑनलाइन भी बेच रही है। अब उसके ग्राहक सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के शहरों से भी लोग उससे सामान मंगवाते हैं। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है और सबसे बड़ी बात, उनका आत्मविश्वास भी। अगर सबसे बड़ा बदलाव कहीं दिखा है तो वह आर्थिक क्षेत्र में है। पहले महिलाओं के लिए बैंक जाना आसान नहीं होता था, उन्हें लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था और कई बार अपने ही पैसों के लिए दूसरों पर भरोसा करना पड़ता था। लेकिन अब समय बदल चुका है, UPI और मोबाइल बैंकिंग ने उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को काफी सरल बना दिया है। आज महिलाएं खुद ही पैसे भेज रही हैं, खुद ही प्राप्त कर रही हैं और अपने खर्चों का पूरा हिसाब भी अपने हाथ में रख रही हैं। इस बदलाव ने उन्हें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी एक नई मजबूती दी है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं इसका एक अच्छा उदाहरण है। आज हजारों महिलाएं मिलकर छोटे छोटे व्यवसाय चला रही हैं, जैसे अचार बनाना, पापड़ तैयार करना, मसाले बनाना या हस्तशिल्प तैयार करना। पहले उनके उत्पाद सिर्फ गांव या आसपास के बाजार तक सीमित रहते थे, लेकिन अब डिजिटल तकनीक ने उनके लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। वे सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार कर रही हैं और धीरे धीरे उन्हें बड़े बाजारों तक पहुंचा रही हैं। इसी तरह कई महिलाएं आज कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं। वे गांव के लोगों के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं की सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। इससे न केवल उन्हें रोजगार मिल रहा है, बल्कि वे अपने गांव में एक भरोसेमंद पहचान भी बना रही हैं। बैंक सखी और डिजिटल सखी जैसी पहले भी बहुत प्रेरणादायक है। इनके माध्यम से महिलाएं न सिर्फ खुद डिजिटल बन रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी सिखा रही है। वे लोगों को बताती हैं कि मोबाइल से पैसे कैसे भेजें, कैसे सुरक्षित रहें और सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लें। यह सच में महिलाओं द्वारा
महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मजबूत उदाहरण है।

0: शिक्षा के द्वार अब हर घर तक पहुंच रहे हैं और इसका श्रेय डिजिटल तकनीक को जाता है। आज महिलाएं घर बैठे नई नई चीजें सीख रही हैं, सिलाई बुनाई, खाना बनाने के नए तरीके, कंप्यूटर की जानकारी और कई तरह के कौशल। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे अपने पैरों पर खड़ी होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। अब महिलाओं को गर्भावस्था, पोषण और बच्चों के टीकाकरण जैसी जरूरी जानकारी मोबाइल पर मिल जाती है। कई जगहों पर टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे वे डॉक्टर से सीधे बात कर सकती हैं। इससे उनकी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पहले से आसान हो गई है। कृषि के क्षेत्र में भी डिजिटल तकनीक महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रही है। वे मौसम की जानकारी, फसल से जुड़ी सलाह और बाजार के भाव अपने मोबाइल पर देख रही हैं। इससे वे खेती से जुड़े बेहतर फैसले ले पा रही हैं और परिवार की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसी प्रकार सरकार की ड्रोन दीदी योजना भी ग्रामीण महिलाओं के लिए नए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान कर रही है। डिजिटल दुनिया में सावधानी बहुत जरूरी है। कई बार लोग अनजाने में गलत लिंक पर क्लिक कर देते हैं, अपना OTP साझा कर देते हैं या अपनी बैंक की जानकारी किसी को दे देते हैं, जिससे वे ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं सिर्फ डिजिटल साक्षर ही नहीं बल्कि डिजिटल रूप से सजग और सुरक्षित भी बने। इसके अलावा अभी भी कई गांवों में इंटरनेट की सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। कई महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है और कई जगहों पर डिजिटल शिक्षा की कमी भी है। इन चुनौतियों को दूर करना बहुत जरूरी है ताकि हर महिला इस बदलाव का हिस्सा बन सके। सरकार भी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और डिजिटल साक्षरता अभियान, स्वयं सहायता समूहों का प्रशिक्षण, बैंक सखी और कॉमन सर्विस सेंटर जैसी पहले महिलाओं को तकनीक से जोड़ने में मदद कर रही हैं। इन योजनाओं के कारण आज लाखों महिलाएं डिजिटल दुनिया से जुड़ रही है और आत्मनिर्भर बन रही है। आज की ग्रामीण महिला अब सिर्फ घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है, वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे रही है और समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। अब वह बदलाव की एक मजबूत पहचान बन चुकी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि डिजिटल युग में ग्रामीण महिलाओं की यह नई उड़ान हमारे देश के उज्जवल भविष्य का संकेत है। मोबाइल अब सिर्फ बात करने का साधन नहीं बल्कि हमारी ग्रामीण माताओं और बहनों के सपनों के उड़ान का पंख बन गया है। जब गांव की महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, गांव सशक्त होगा और देश भी सशक्त होगा। आइए हम सभी मिलकर यह प्रयास करें कि हर महिला तक डिजिटल शिक्षा पहुंचे, उसे सुरक्षित तरीके से तकनीक का उपयोग करना सिखाया जाए और उसे आगे बढ़ने के हर अवसर दिए जाए। एक सशक्त महिला केवल अपना भविष्य नहीं बदलती बल्कि पूरे समाज के विकास की आधारशिला रखती है। डिजिटल तकनीक इस परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। हम डिजिटल सशक्तिकरण के इस अभियान को हर गांव और हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लें, क्योंकि डिजिटल ज्ञान से सशक्त नारी आत्मनिर्भर भारत की तैयारी। आज आवश्यकता केवल इस बात की है कि इस परिवर्तन की गति को और अधिक मजबूत बनाया जाए ताकि हर ग्रामीण महिला विकास की इस यात्रा में समान रूप से भागीदारी कर सके। इसी विश्वास के साथ कि डिजिटल तकनीक ग्रामीण महिलाओं के जीवन में प्रगति और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगी। धन्यवाद।
1: डिजिटल युग में ग्रामीण महिलाओं की नई उड़ान, इना विषय पे अभी अपन ने वार्ता सुनी। वार्ताकार थी मेघा धामू। अब आगे की चर्चा से पहला कुछ संदेश अपन सुन ला।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है। स्मार्ट डिसीजन।

0: वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भाई बहनों, कार्यक्रम में अब वक्त है कि घरेलू नुस्खा की बात कर ली जाए। तो घरेलू नुस्खा का लिए अपन चला अपना घर का दवाखाना रसोई घर की ओर और खोला काली मिर्ची को डिब्बो। काली मिर्ची का डिब्बा में कौन कौन सा गुण है और कई कई काम आवे यो भी जानी ला। काली मिर्ची अपना स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी रहे। इमें विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन ई, मैग्नीज, आयरन, पोटेशियम और भी कई सारे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाइए। अने अपना घर में यदि जुकाम कोई की हो जाए तो ऐसा में 3-4 काली मिर्च, अदरक और तुलसी का पत्ता इनको काढ़ो बने के मरीज के दई दो तो खराश में तुरंत आराम मिलेगो और जुकाम में भी राहत मिलेगी। भोजन नहीं पचे या अपच की समस्या हो तो ऐसा में 2 काली मिर्च के चबई के खा लो, ऊपर से गुनगुनो पानी पी लो। इससे गैस, अपच और सब प्रकार का जो पेट रोग है, पाचन से संबंधित समस्या होने वे सब दूर हो जाएगी। अने वजन आज का समय की सबसे बड़ी समस्या है। बेन होन को वजन खूब बढ़ रही हो तो वजन कम करने के लिए कई करना है कि सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और 3-4 काली मिर्च को पाउडर मिले के उके सेवन कर लो तो महीना भर बाद खुद अंतर देख ही लीजो। बेन होन यदि बाल में रूसी हो तो काली मिर्च का पाउडर के नारियल का तेल में मिले के अच्छी तरह से मालिश कर लो और फिर 1-2 घंटा सिर में रखने का बाद सामान्य तरीका से बाल धोई लो, रूसी दूर हो जाएगी। आने देखो घरेलू नुस्खा की बातचीत तो अपन ने कर ली, अब क्यों नहीं एक लोकगीत और सुन ला जिकी गायो है बेन राजूल सिंह ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भाई बहनों, अब बखत है कि अपन कुछ व्यंजन बनेला। अने व्यंजन में भी अपन मीठा, यदि मूंग का हलवा की बात करा तो देखो, मुंह में तो अभी से पानी आने लग गयो है, पर पानी मत लाओ, अभी मूंग को हलवा बनने में लागेगो टेम लागेगो भी, और साथे साथे सामान भी जुटानो पड़ेगो। अब सामान कई कई अपने जुटानो है वो भी देख लो। मूंग की मोगर दाल, मतलब बिना छिलका की मूंग की दाल ले लो एक कटोरी, घी एक कटोरी, सूजी 2 चम्मच, शक्कर 1 कटोरी, दूध 2 कप, इलायची को पाउडर थोड़ो, केसर का कुछ धागा, और साथे साथे घर में जो भी मेवा उपलब्ध हो, काजू बादाम जो भी आपके मिल जाए समय पे। इका बात अपने कई करना है कि दाल के धोई लो और अच्छी तरह से 4 से 5 घंटे का ये होके गली दो। जब दाल गली जावे तो उसको पानी निथारी के मिक्सर में दरदरो पीसी लो। यदि पीसने में आफत आए तो घुट आधा घुट पानी डाली सकता है। अब कढ़ाई में घी डाली के पीसी हुई दाल के डाल दो और धीमी आंच पे सेको। सेकते वक्त उमें थोड़ी सूजी भी डाल दो, जिका से कहीं होएगो कि दाल जो है वह चिपकेगी नहीं। जिसके बाद कई घनों 15 से 20 मिनट उनके धीरे धीरे चलाता रहो धीमी धीमी आंच पे। अच्छी तरह जब वह भुनई जाए, उसमें से खुशबू आने लगे, तो दाल में जब घी छोड़ने लगे तो उमें गर्म दूध जो अपन ने रखियो है वो गर्म करके डाल दो और थोड़ो पानी डाली के अच्छी तरह से मिले लो। मिलाते वक्त यो भी ध्यान रख जो कि उमें गुठली होनी पड़े। आने जब ये सब मिली जाए तो उके थोड़ी सी देर और सेकी के उमें शक्कर और जो केसर का धागा अपन ने लिया था अभी थोड़ा सा दूध में घोल के उमके डाल दो और 5-7 मिनट अच्छी तरह से पकने दो। जब हलवो दानेदार खुशबूदार और कढ़ाई छोड़ने लगे और घी के भी थोड़ा अलग करने लगे, तो ऐसा में सगड़ा जो मेवा आपने लिया है भी सब मेवा अच्छी तरह से डाली के अच्छी तरह से हिले लो और गर्मा गर्म जो मूंग का हलवो है वो परोसो, खुद भी खाओ और सबके खिलाओ। आने जब अपन हलवो खावा खिलावा उना समय थोड़ो मनोरंजन भी कर जावांगा तो भी कितो अच्छो रहेगो। मनोरंजन अपन अभी भी कर लेवा। अने सुना यो गीत जी गाए है मनीषा हरिवल्लभ शास्त्री ने।

सबका खेतना में खूब बहार छाए, खूब अच्छे से इन्हीं बार की फसल होवे, अने भाई होन भी अपना जो किसान भाई होने वे भी खूब कमाई करे। इन्हीं कामना के साथ तेज अब हो रही है चलने की बखत। पर चलने से पहले हम तुम्हारे बता दें कि कल फिर आवांगा तुमसे मिलने, करांगा खूब सारी बातचीत, सुनांगा मीठा मीठा लोकगीत और हमारा विशेषज्ञ भाई होन देगा खूब सही जानकारी। और मके पूरी उम्मीद है कि इन्हीं जानकारी के सुनी के तम अपना खेतना में उन्हीं जानकारी को लाभ जरूर उठाओगा। तो किसान भाइयों, चलने की बखत हुई गई है, दो विदा, राम राम।

अभी ग्राम लक्ष्मी का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

अब आप कनकलता से संसद कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज दिन भर सदन में कामकाज बाधित रहा और कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में विपक्ष के सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष ने प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया, विपक्षी सदस्य तख्तियां हाथ में लेकर सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे। अध्यक्ष ने सदस्यों को शांत रहकर और अपनी सीटों पर लौटकर प्रश्नकाल चलते रहने का देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी बात नहीं सुनी और हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने प्रश्नकाल जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने सदन में तख्तियां लहराने और नारेबाजी को संसद की मर्यादा का उल्लंघन बताया और कहा कि सत्र के पहले दिन सदन नहीं चलने की परंपरा टूटनी चाहिए। प्रश्नकाल में नारेबाजी करना और तख्तियां लहराना उचित नहीं है। अध्यक्ष ने इस दौरान सदस्यों से बार बार व्यवस्था बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसका विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ और सदस्यों का हंगामा और तेज हो गया। हंगामा बढ़ता देख श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने कहा कि विपक्षी सदस्यों का व्यवहार ठीक नहीं है। असम अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई है, लोग परेशान हैं, देश में और भी कई समस्याएं हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए, आपको नियमानुसार समय दिया जाएगा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सैकिया की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और वे हंगामा करते रहे। इस पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य शोरगुल करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। श्री सैकिया ने नारेबाजी न करने और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में भोजनावकाश के बाद भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने सदस्यों को नियम 377 के तहत अपने मामले उठाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। श्री पाल ने कहा कि जनता ने सांसदों को अपने उम्मीदों के साथ लोकसभा में भेजा है, सदन में तख्तियां और बैनर लेकर आना तथा नारेबाजी करना उचित नहीं है और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कोरम का मुद्दा उठाया, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कहा कि सदन में कोरम पूरा है। कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसदों को सदन में आने से रोका जा रहा है, लेकिन श्री पाल ने इस आरोप को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पीठासीन अधिकारी ने विपक्षी सदस्यों से हंगामा बंद कर अपनी अपनी सीटों पर लौटने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा और शोरगुल होने लगा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखे जवाब में कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय के साथ मेक इन इंडिया AI वर्क फॉर इंडिया की परिकल्पना के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में शिक्षा हेतु AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप देश भर में शिक्षार्थियों को AI सक्षम उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी का समावेशन करना है। उन्होंने कहा कि बजट 2025-26 में घोषित कौशल हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत ITI PMSETU योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार के एक भाग के रूप में अनुमोदित किया गया है।
इस योजना के तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना की गई है। श्री मजुमदार ने कहा कि शिक्षकों को प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग में सक्षम बनाने के उद्देश्य से NCERT द्वारा AI विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें 96,000 से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार CBSE भी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में AI उपकरणों के उपयोग और शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन में उनकी उपयोगिता के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। पिछले 3 वर्ष में 1,234 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें CBSE से संबद्ध विद्यालयों के 64,775 शिक्षक लाभान्वित हुए हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल देश भर के सभी हितधारकों के निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। उन्होंने कहा

एनसीएस परियोजना में अन्य बातों के साथ साथ राज्यों संस्थाओं के सहयोग से करियर संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए आदर्श करियर केंद्र एमसीसी स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक सरकार ने पूरे देश में 407 आदर्श करियर केंद्रों को मंजूरी दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का प्रयास देश से सभी बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध कराना है। बैंकिंग आउटलेट उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित एप्लीकेशन जनधन दर्शक JDD ऐप द्वारा की जाती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमति के बिना वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों, स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत में कहीं भी बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति दी है, बशर्ते कुल शाखाओं का 25% हिस्सा बैंकिंग सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति CP राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपने संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनके इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके और कोई विधायी कामकाज भी नहीं हो सका। इससे पहले दिन में 11 बजे मॉनसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। गुजरात से भाजपा के मुकेश भाई जे राठवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा, मध्य प्रदेश से भाजपा के महेश केवच, मेघालय से NPP के जेम्स पगसा कोंकल संगमा, मिजोरम से खिंग्यांगटे लातलू आंगकीमा, राजस्थान से भाजपा के डॉ सतीश पूनिया, पश्चिम बंगाल से भाजपा के प्रकाश चेक बड़ाइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। खेड़ा ने अंग्रेजी में मुकेश भाई जी राठवा, महेश केवट, जेम्स पगसा कोंकल संगमा, डॉक्टर सतीश पुनिया और प्रकाश गवड़ाइक ने हिंदी में तथा सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर रॉय ने बांग्ला में शपथ ली। बजट सत्र संपन्न होने और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले निर्वाचित हुए कुछ अन्य सदस्य अंतर सत्र अवधि के दौरान सभापति के कक्ष में शपथ ले चुके हैं। सभापति ने नए सदस्यों का सदन में स्वागत किया। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और H. हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने NEET UG 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही है। श्री खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकता न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे का मुद्दा उठाने की कोशिश की तथा सदन के बीच में आने का प्रयास किया, हालांकि सभापति राधाकृष्णन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभापति ने बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि वो गतिरोध को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा करेंगे। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने वाले विधेयकों के लिए तय किए गए समय के बारे में सदन को बताया।
उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी और विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू

0: थी। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहाँ चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। उपसभापति हरवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि सुबह से अब तक कोई कामकाज नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये उच्च सदन है और इस तरह का व्यवधान उचित नहीं है। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सभापति ने सत्र के प्रारंभ में अपने संबोधन में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। सभापति ने कहा, मैं सदन के सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखें। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें इस तरह से व्यक्त किया जाना चाहिए कि सदन की पवित्रता बनी रहे। व्यवधानों को इसके कामकाज को बाधित नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने सत्र के उत्पादक, रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहने की कामना की और कहा, मैं राज्यसभा के 271वें सत्र की शुरुआत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सदन की सार्थक चर्चाओं की गौरवशाली परंपरा रही है और मुझे विश्वास है कि इस सत्र उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। हमारे सामने 19 बैठकें हैं और ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इस बहुमूल्य समय का उपयोग राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बहस करने और उन पर निर्णय लेने में करें। सभापति ने कहा, इस सत्र का एक महत्वपूर्ण विधायी और विचार विमर्श संबंधी एजेंडा है। मैं सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे कामकाज के समय पर निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान देश और उन लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी करता है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सभापति ने सदस्यों को सूचित किया कि सत्र से उच्च सदन के सचिवालय ने सदस्यों की सीटों पर लगे मल्टीमीडिया उपकरणों के माध्यम से 9 भाषाओं में कार्यवाही का कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद शुरू किया है। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे इस सुविधा का सभी 22 अनुसूचित भाषाओं तक विस्तार किया जाएगा। उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सदस्यों से अपनी प्रतिक्रिया देने को भी कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पूर्वी यूरोप में भारत के राजनयिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 राष्ट्रों की यात्रा पर कल मोल्डोवा पहुंची और बाद में फिर वो नॉर्थ मैसिडोनिया और फिर बाद में रोमानिया पहुंचेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी, आपका बहुत स्वागत है।
3: बहुत धन्यवाद।
2: प्रोफेसर जोशी, राष्ट्रपति सबसे पहले अपने पहले चरण में कल मोल्डोवा पहुंची हैं और ये गौरतलब है कि ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा होगी मोल्डोवा की। 20 जुलाई से 21 जुलाई तक ये यात्रा होने वाली है। इस यात्रा को आप कैसे देखती हैं, अगर हम खास मोल्डोवा की बात करें तो?
3: निशित जी, ये हमारे भारतीय राष्ट्रपति की एक ऐतिहासिक यात्रा है मोल्डोवा की। यदि मोल्डोवा और भारत के संबंधों की बात की जाए तो कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर बहुत अच्छा सहयोग है दोनों देशों के बीच में। और मोल्डोवा की यदि बात की जाए तो छोटा देश है यूरोप का, लेकिन ये सामरिक दृष्टिकोण से अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बड़ा महत्वपूर्ण है पूरे विश्व के लिए। यदि हम पूर्वी यूरोप की बात करें तो इसके द्वार के रूप में मोल्डोवा को जाना जाता है। यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमने हाल ही में एक ऐतिहासिक FTA साइन किया, हिस्टोरिक डिफेंस डील साइन की। तो सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मोल्डोवा भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी नजर आता है। और जब भारत ग्लोबल साउथ की बात वैश्विक स्तर पर करता है, ग्लोबल साउथ को नेतृत्व देने की बात करता है और विशेषकर अंतरराष्ट्रीय जब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर रिफॉर्म्स की बात करता है, गवर्नेंस में रिफॉर्म्स की बात करता है, तो वहां मोल्डोवा भारत की बात को इको करता हुआ नजर आता है। तो एक गहरा संबंध दिखाई पड़ता है दोनों देशों के बीच में। और व्यापार की दृष्टि से मैं कहूं तो फिर निवेश को देखते हुए, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट्स को देखते हुए, आईटी सर्विसेज के क्षेत्र में, प्रोफेशनल मोबिलिटी के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुलते हुए नजर आते हैं। तो चाहे कूटनीतिक स्तर पर देखें, सामरिक स्तर पर देखें, व्यापारिक सहयोग की ओर देखें, ऊर्जा सहयोग की ओर देखें, मोल्डोवा भारत का आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। और हमारी राष्ट्रपति जब इस देश की यात्रा पर है तो दोनों द्विपक्षीय स्तर पर और बहुपक्षीय स्तर पर मुझे लगता है दोनों देशों के बीच में सहयोग और ज्यादा गाढ़ा होगा।
2: राष्ट्रपति के साथ दल में बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन भी और बिजनेस कम्युनिटी भी साथ में वहां पे गए हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मौजूदा जो हालात हैं, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही हैं, उसमें जो भारत का ये आउटरीच है, खास करके ऐसे देशों में, अगर हम यूरोप की, आपने यूरोपियन यूनियन की बात की, जो मदर ऑफ ऑल डील्स, जो ट्रेड डील हुआ था, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण है भारत का ये आउटरीच टुवर्ड्स मोल्डोवा।
3: पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि वैश्विक राजनीति में लगातार एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है, जिसमें एक और रशिया यूक्रेन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो पश्चिम एशिया के संकट ने पूरे विश्व के सामने नई नई चुनौतियों को प्रस्तुत किया है, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर मानवीय सुरक्षा तक। ऐसे में भारत अपनी सकारात्मक कूटनीति के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता हुआ नजर आता है और लाइक माइंडेड देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में साझा सहयोग की और साझा विकास की बात करता है। तो हम याद करें कि अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे महत्वपूर्ण देशों की यात्रा संपन्न की। इसके पहले वो यूरोप के दौरे पर थे, इसके पहले उन्होंने पश्चिम एशिया के, अफ्रीका के देशों का दौरा किया, यूरोप के कुछ और देशों का दौरा किया। तो ये जो एक आउटरीच प्रोग्राम है, इसके जरिए भारत ने न सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को सफलतापूर्वक पूरा करने का काम किया है, भारत ने वैश्विक स्तर पर इस बात का संदेश दिया है कि युद्ध किसी भी बात का समाधान नहीं है। आज का जो विश्व है उसमें शक्ति की परिभाषा में तकनीकी सहयोग, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं। और इस दृष्टि से मोल्डोवा हमारा एक महत्वपूर्ण साझेदार नजर आता है, न सिर्फ बहुपक्षीय स्तर पर EU के मेंबर के रूप में, जो हमने एक FTA कर रखा है, तो निवेश के, को मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग जो द्वार हैं संभावनाओं के, वो खुलते हुए नजर आते हैं। द्विपक्षीय स्तर पर फिर जब जो कूटनीतिक लक्ष्य लेकर के भारत वैश्विक स्तर पर बात करता है, चाहे वो ग्लोबल साउथ का एजेंडा हो या फिर अलग अलग हम गवर्नेंस में रिफॉर्म्स की बात करते हो या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करते हो, तो वहां पर फिर हमको मोल्डोवा एक सहयोगी के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए मोल्डोवा का ये दौरा हर प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाता है।
2: प्रोफेसर जोशी और राष्ट्रपति अपने यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसिडोनिया पहुंचेंगी। प्रोफेसर जोशी, हम ये समझना चाहेंगे कि नॉर्थ मैसिडोनिया का कितना प्रभाव, किस प्रकार आप इसे देखती हैं?
3: देखिए, नॉर्थ मैसिडोनिया के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और भारत उन यूनाइटेड नेशंस के 40 देशों में से एक है जिसने यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन फॉर नॉर्थ मैसिडोनियाज एडमिशन टू यूनाइटेड नेशंस जो 1993 में हुआ था उसको को स्पॉन्सर किया था। और नॉर्थ मैसिडोनिया की एक एम्बेसी नई दिल्ली में 2008 से है। दोनों ही देशों के यदि हम सामरिक सहयोग की दृष्टि से बात करें, सांस्कृतिक सहयोग की बात करें या आर्थिक सहयोग की, तो दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। और नॉर्थ मैसिडोनिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के एक सदस्य देश के रूप में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रदान करता है हमारे सारे प्रोडक्ट्स के लिए, तो हमारे लिए एक मार्केट के रूप में। फिर नॉर्थ मैसिडोनिया हमारे इन्वेस्टमेंट करता है तो उस दृष्टि से, और एक को मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग हब ये भारत को मानता है, तो इस दृष्टि से भारत के बिजनेसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि मैं आपको दूसरे यदि क्षेत्र बताऊं तो फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देश लगातार अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं। और ये भी बता दूं कि यदि हम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो मदर टेरेसा नॉर्थ मैसिडोनिया से ही ताल्लुक रखती थी, तो फिर बाद में ये इंडियन सिटीजन बनी। तो यदि हम ऐतिहासिक सहयोग या ऐतिहासिक रिश्तों की बात करें तो दोनों देशों के बीच में बड़ा गाढ़ा रिश्ता है। और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के भी भारत नॉर्थ मैसिडोनिया के साथ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो इसलिए राष्ट्रपति

0: ये दौरा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: जी प्रोफेसर जोशी, यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा होगी नॉर्थ मैसिडोनिया की, और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि वहाँ के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जी वहाँ पहुंचेंगे 21 और 22 जुलाई को, और वहाँ नॉर्थ मैसिडोनिया के असेंबली को भी एड्रेस करेंगे, और साथ साथ इंडिया नॉर्थ मैसिडोनिया बिजनेस फोरम, अभी अभी हम थोड़ी देर पहले बिजनेस की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रोफेसर जोशी। अगर हम देखें जैसे कि हमने पीछे भी जब बात कर रहे थे मोल्डोवा की, तो बिजनेस खास करके करंट परिप्रेक्ष्य में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितना ये आउटरीच इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जबकि हमें किसी भी एक ब्लॉक को पर हम डिपेंड नहीं रह सकते आज के डेट में, ये आज का ये वास्तविक सच है। और दोनों ही पक्ष जो हैं, खास करके भारत की बात करें या नॉर्थ मैसिडोनिया की बात करें, दोनों ही काफी कीन हैं अपने इकोनॉमिक टाइज को और ज्यादा गहरा बनाने में, और प्रायोरिटी सेक्टर्स की आपने बात की, एग्रीकल्चर की बात की, फार्मा की बात की, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कैसे आप देखती हैं इसे?
0: देखिए, हमने अलग अलग क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग की बात की और मोल्डोवा के साथ भी भारत के इसी प्रकार के घनिष्ठ संबंध हैं। यदि हम व्यापार की दृष्टि से बात करें तो दोनों ही द्विपक्षीय, और फिर मैं ईयू पर आऊंगी, ईयू के मेंबर के रूप में मैसेडोनिया का एक महत्व तो बढ़ जाता है। और भारत जिस तरह से लगातार अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को मजबूत करते हुए, विशेषकर तब जब ट्रंप ने हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए थे, तो भारत ने इस बात को लगातार सुदृढ़ करने का प्रयास किया कि जो लाइक माइंडेड नेशंस हैं उनके साथ हम साझा सहयोग, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, सामरिक क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, हम इसको आगे बढ़ाएं और लगातार अपने लक्ष्यों की पूर्ति करें। तो फिर इस दृष्टि से मैसेडोनिया के साथ फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आईटी सर्विसेज के क्षेत्र में सहयोग महत्वपूर्ण जाता है। और फिर ईयू के मेंबर के रूप में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमको ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो हमारे जो बिजनेसेस हैं और हमारा जो विशेषकर लघु और मध्यम उद्योग है, उसके लिए फिर ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संभावनाओं का क्षेत्र खुल जाता है इन यूरोपियन देशों के साथ, यदि हमारा सहयोग बढ़ता है तो। क्योंकि भारत लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि ये जो अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज अभी तक की रही हैं, इन पर भारत काम करे, और इस प्रकार के देशों के साथ जो भारत की बात को अंतरराष्ट्रीय मंच पर इको करते हैं, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे साझा सहयोग की, सबके विकास की बात हो, तो फिर ऐसे देशों के साथ आगे बढ़ा जाए।
1: प्रोफेसर जोशी, और राष्ट्रपति अपनी यात्रा के अंतिम चरण में जुलाई 23 से लेकर जुलाई 25 तक रोमानिया की यात्रा पर होंगी। गौरतलब है कि ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की तीन दशक के बाद ये पहली यात्रा होने वाली है, और फिर से हम बता दें कि ये यात्रा वहां की राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ये हो रहा है। तो रोमानिया का जो ये विजिट है प्रोफेसर जोशी, ये कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, रोमानिया की ओर भी देखें तो भारत और रोमानिया के बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशंस 1948 से ही हैं, और एक सामरिक सहयोग की दृष्टि से देखें तो दोनों ही देश लगातार अपने सहयोग को बढ़ा रहे हैं। ये फिर एक ऐतिहासिक यात्रा है जो हमारे राष्ट्रपति की पहली बार रोमानिया की यात्रा होने वाली है किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की, तो चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का या आर्थिक सहयोग का क्षेत्र हो, तकनीकी सहयोग का क्षेत्र हो, सामरिक पार्टनरशिप की हम बात करें, तो फिर हर प्रकार से ये दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है। 1948 में दोनों देशों के बीच में संबंध विकसित हुए, और फिर इसके बाद एम्बेसी लेवल के जो कूटनीतिक संबंध है वो 1957 में स्थापित हुए। 2023 में दोनों देशों ने अपने कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्षों को पूर्ण किया है, मनाया है। और रक्षा के सहयोग में यदि मैं बात करूं तो दोनों ही देशों ने एक ज्वाइंट कमिटी बनाई है डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर के, और कैसे को मैन्युफैक्चरिंग के, को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के दोनों देशों ने एक बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन प्लान बनाया, जिसमें कि जो कन्वेंशनल हमारे रक्षा सहयोग के क्षेत्र हैं उसके अलावा साइबर डिफेंस, ज्वाइंट ट्रेनिंग, और कैसे इंडस्ट्रियल कलेबरेशन को हम बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि मिलिट्री इंडस्ट्री जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हम कैसे दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी शामिल कर सकते हैं, इसकी बात है। फिर हम यदि आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो दोनों के बीच का बायलैटरल ट्रेड बहुत बड़ा अमाउंट, और रोमानिया का लेकिन जिस प्रकार से लोकेशन है, भारत के साथ जिस तरह का सहयोग है, ईयू में इसकी जिस प्रकार की मेंबरशिप है, तो ये एक मार्केट एक्सेस भारत को देता है। और जो भारत की अलग अलग 500 कंपनियां हैं वो यहाँ रजिस्टर्ड है, तो भारत की कंपनियों के लिए यूरोप में ये महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, आईटी के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, फिर रोमानिया एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनके दिखाई पड़ता है। और भारत के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है, भारत के ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात को ये भी साझा करता है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत के लगातार सहयोगी के रूप में देखा जाता है। तो इस दृष्टि से भी हमारी राष्ट्रपति का ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: जी, रोमानिया यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है, और इससे हम दोनों के बीच में, भारत और रोमानिया के बीच में संबंध और भी गहरा, खास करके आर्थिक संबंधों की बात करें तो और भी गहरा होने की। गौरतलब है प्रोफेसर जोशी की तीनों राष्ट्र मॉल

0: हमारे राष्ट्रपति का इन तीनों देशों का। और आपको ध्यान होगा कि जब हमारे ऊपर दुर्दांत पहलगाम अटैक हुआ था और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, तो ये तमाम देश जो है ये भारत के साथ बहुत ही स्ट्रांगली हमको खड़े हुए दिखाई पड़े।
1: प्रोफेसर जोशी, और जाते जाते अक्सर जो दौरे होते हैं, राष्ट्रपति जी के दौरे हों, प्रधानमंत्री जी के दौरे हों, वो अगर हम यूरोप की बात करें, क्योंकि अभी यूरोप की चर्चा हो रही है, यूरोप की बात करें, बड़े राष्ट्र हैं जैसे फ्रांस हो गए, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, ये सारे देश, ये तो अपनी जगह अपने महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो तो साथ में समेटे हुए हैं ही, लेकिन ऐसे जो छोटे देश हैं जैसे हम मोल्डोवा की बात करें, मैसिडोनिया, रोमानिया, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप कैसे समझती हैं इसे, कैसे इसे आंकती हैं कि ये जो दौरा है राष्ट्रपति जी का पूरे यूरोपियन यूनियन या यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करें, तो कैसे आपस में इसे एक एसिमिलेट करते हुए आप देखती हैं इसे आप?
0: देखिए निशित जी, ये किसी भी देश को छोटा या बड़ा समझ करके कूटनीतिक दायरों में बात करने से बेहतर होता है कि हम उस देश के सामरिक महत्व को समझे, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस तरह से कूटनीतिक संबंधों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों ही स्तर पर भारत के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये देखते हुए ये इन तीनों ही देशों की अपनी एक भूमिका है। भारत के साथ जो इन तीनों देशों के संबंध है वो द्विपक्षीय स्तर के अलावा, जब बहुपक्षीय स्तर पर हम ओवरऑल एक यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं या यूरोप के दूसरे देशों के साथ बात करते हैं, तो फिर उस दृष्टि से इन देशों के साथ सकारात्मक संबंध न सिर्फ पूरे यूरोप में, फिर भारत की जो एक सकारात्मक आउटरीच है उसको बढ़ाने में सहयोगी सिद्ध होते दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरह से ग्लोबल साउथ के देशों के नेतृत्व की बात कर रहा है या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, तो वहां ये एक वोटिंग नेशन के रूप में यूनाइटेड नेशंस में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये एक देश एक वोट के रूप में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि ये भारत की बातों को, भारत के देशों को लगातार इको करते हैं। तो इस दृष्टि से भी इन देशों का भारत के साथ सहयोग और हमारे राष्ट्रपति के साथ दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: जी प्रोफेसर जोशी, आप हमारे साथ जुड़ी, बातें साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद निशीत जी।
2: अभी आप सुन रहे थे पूर्वी यूरोप में भारत के राजनयिक संबंधों के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशीत कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए विधानसभा समीक्षा।
5: प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा, आलेख अलीम बज़मी, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। मध्य प्रदेश विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत आज ऐसे माहौल में हुई जिसने साफ संकेत दे दिए कि आने वाले दिन सरकार और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराहट के गवाह बनने वाले हैं। पहले ही दिन सदन में समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पेश हुआ, वहीं विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। इन सबके बीच 2 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कुल मिलाकर पहले दिन का स्वर राजनीतिक टकराव, संसदीय बहस और आगामी रणनीतियों का मिश्रण रहा। सत्र की शुरुआत परंपरागत ढंग से दिवंगत जनप्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। सदन ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए, लेकिन ये शांत वातावरण अधिक देर तक नहीं टिक सका। प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई और सदन का तापमान तेजी से बढ़ गया। पहले दिन की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना समान नागरिक संहिता विधेयक का सदन में प्रस्तुत होना रही। सरकार ने इसे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसके समय और मंशा पर सवाल उठाए। शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा कल करवाई जाएगी। इससे यह भी संकेत मिला कि यूसीसी आने वाले दिनों में सदन का सबसे बड़ा राजनीतिक और वैचारिक मुद्दा बनने जा रहा है। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने समान नागरिक संहिता विधेयक के बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा,
6: यूसीसी हमारा कमिटमेंट है। कल हमने कैबिनेट की बैठक में उसको विधानसभा की ओर अग्रेषित किया, आज विधानसभा में टेबल हुआ है और हम जल्द से जल्द इसको पारित करेंगे। अभी के लिए, वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए यूसीसी जरूरी, समानता के लिए, एक रूपता के लिए यूसीसी जरूरी है। इस देश की महिलाओं के सुनहरे भविष्य के लिए और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए यूसीसी जरूरी है। जो विरोध कर रहे हैं वो महिलाओं के हितों का विरोध कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं।
5: इसी बीच सरकार द्वारा यूसीसी के अलावा 13 अन्य विधेयक भी सदन के पटल पर रखे गए। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये विधेयक कार्यसूची में शामिल नहीं थे। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष

0: के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसने पहले दिन की कार्यवाही को और अधिक राजनीतिक बना दिया। दोपहर के बाद सदन का स्वर कुछ बदला। सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े अध्यादेश, अधिसूचनाएं और वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखे। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश, उपकर संशोधन अध्यादेश तथा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सदन के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक टकराव के बीच सरकार अपनी विधायी कार्यसूची को भी आगे बढ़ाना चाहती है। दिन के उत्तरार्ध में किसानों के मुद्दे ने सदन की बहस का केंद्र स्थान ले लिया। नियम 139 के तहत खरीफ सीजन में खाद बीज की उपलब्धता और कम बारिश से उत्पन्न परिस्थितियों पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने खाद वितरण, भंडारण क्षमता और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विपक्ष पर पुराने मुद्दों को दोहराने का आरोप लगाया। वहीं धार्मिक पर्यटन से जुड़े विषय भी सदन में उठाए गए। भाजपा विधायक अर्चना चिटनिस ने महाराष्ट्र के पंढरपुर स्थित मध्य प्रदेश सदन में वारकरी श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार और भवन के उन्नयन का मुद्दा रखा। सरकार ने बताया कि भवन की मरम्मत और सुविधाओं के विकास पर अब तक लगभग 1,24,00,000 रूपये खर्च किए जा चुके हैं और भविष्य में भी ये कार्य जारी रहेगा। सदन के भीतर जितनी सक्रियता दिखाई दी, विधानसभा परिसर के बाहर भी राजनीतिक संदेश देने की कोशिशें कम नहीं रहीं। सत्र प्रारंभ होने से पहले कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पहले दिन की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी माना गया। पहले दिन की कार्रवाई से स्पष्ट है कि सरकार विधायी एजेंडे, विशेषकर समान नागरिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर मानसून सत्र का पहला दिन इस संकेत के साथ समाप्त हुआ कि आगामी 4 दिनों में सदन के भीतर केवल विधेयकों पर चर्चा ही नहीं होगी, बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, नियमों की व्याख्या और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर भी तीखी बहस देखने को मिलेगी। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा। आलेख अलीम बज़मी का था, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में सुनिए मुकेश आशा भोसले की आवाज़ में रफ्तार फिल्म का गीत। गीत लिखा है अभिलाष ने और संगीतबद्ध किया सोनी कोमी ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत। पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय

0: न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनो में स्टेफान सेल मारिसेस फ्रेंच स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनो में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्डोवा तीन दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू और मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हाइवेर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश लेने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में एसआईटी जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एनजे बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एनजे बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
4: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
1: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एनजी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
6: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से अफवाह पर ध्यान न देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है।

योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेनदेन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India's expanding diplomatic relations in Eastern Europe. The participants are Professor Anshu Joshi, international affairs expert, and Nishit Kumar.
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत।

0: कार्यक्रम चित्रगीत में सबसे पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में यादों की बारात फिल्म का ये गीत। मजरू के बोल थे, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: लीजिए अब सुनिए राम और श्याम फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल हैं, नौशाद का संगीत है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए मुझे जीने दो फिल्म का गीत लता मंगेशकर साथियों के स्वर में। साहिर के बोल हैं, संगीतबद्ध किया है जयदेव ने।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत। ये आकाशवाणी इंदौर है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग श्रोताओं। क्या आपने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लिया है? अगर जवाब नहीं है तो आज का हमारा कार्यक्रम जरूर सुने। मैं फरहत नाज और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, जहां हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। लोन चाहिए, वीजा चाहिए या फ्यूचर सिक्योर करना है, ITR हर जगह काम आता है। तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और तेज कर लीजिए और साथ में पेन पेपर भी जरूर रख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको देंगे ऐसे टिप्स जो आपका टाइम, पैसा और टेंशन तीनों बचाएंगे। आपके सवालों का जवाब देने के लिए इसीलिए आज हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में संधि लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली जी को और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा जी को। आप दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार भारत, आपको और सभी लिसनर्स को मेरा अभिवादन।
0: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। श्रोताओं, आज के अंक में हम समझेंगे कि इनकम टैक्स भरना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं और ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता है। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112311 0418 0112311 0112311 4444। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शरद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि ITR क्या है और किन किन लोगों के लिए भरना जरूरी होता है?
1: देखिए फरहत, इनकम टैक्स रिटर्न अभी जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे फायदे पहुंचाती है, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है। अगर आप इनकम कमाते हैं, पांच इनकम के सोर्सेस होते हैं, आप सैलरी से कमाते हैं, आप बिजनेस से कमाते हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हैं, आप कैपिटल गेन से कमाते हैं, आपने कोई मकान या शेयर्स बेचे हैं, या फिर एक जो रेसिड्यूअल सोर्स होता है जो बच जाती है इनकम, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेते हैं। तो ये पांच सोर्सेस होते हैं और आयकर विवरणी इसको हिंदी में कहते हैं। अलग अलग कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए अलग अलग फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है और आजकल टैक्स फाइलिंग सीजन अपनी पीक पर है और करीब 11 दिन के आसपास बचे हैं। तो जिन लोगों ने अभी नहीं फाइल किया है, आज उम्मीद करता हूं आज आपकी और हमारी और अश्विनी जी की बातचीत सुनकर वो और जल्द फाइल करने के लिए मोटिवेट होंगे। और उनके मन में अगर कोई भी डाउट है, क्योंकि इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए थोड़ी सी इनकम टैक्स का जो कानून है उसकी जानकारी

0: जरूरी होती है अपनी इनकम, क्योंकि हर तरीके की इनकम फराज अलग तरीके से टैक्स की जाती है, रेट तो एक ही होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो फोन करेंगे और उनके मन में कोई यार बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं वही बताना वाजिब समझूंगा जो जो लोग जहां पर वो अटक गए हैं, जहां उनको डाउट है।
1: जी, और आपने जैसे ही बताना शुरू किया हमारे पहले लिसनर भी हमसे जुड़ गए हैं, रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी। जी रमाशंकर जी।
2: जी नमस्कार, धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: मैं ये पूछना चाहता था कि आयकर रिटर्न किस श्रेणी के व्यक्तियों को जो है भरने का प्रोसीजर है, उनकी योग्यता है, और इसको हमें विस्तृत ढंग से बताएं।
0: देखिए रामाशंकर जी, आयकर रिटर्न जो है उन लोगों को भरनी होती है। दो प्रकार की रिजीम होती हैं आजकल जो ऑप्शन दी जाती है टैक्स पेयर को, या आप ओल्ड रिजीम में है जहां पर 2.5 लाख रुपए की मिनिमम लिमिट होती है। अगर आप न्यू रिजीम चूज करते हैं, आप मुझे आवाज से हमारे वरिष्ठ माननीय नागरिक लग रहे हैं, और 4 लाख रुपए वहां शुरू होता है न्यू रिजीम में, और आपकी इनकम अगर 4 लाख से ऊपर, आपको यह भी पता होगा कि अब तो 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो उसमें आपको रिबेट मिल जाता है और टैक्स नहीं लगता। भारत सरकार ने जो बदलाव किए हैं, अब तो आयकर वालों को बहुत बड़ी छूट दी गई पीछे, तो 12 लाख रुपए तक तो टैक्स लगता नहीं है। तो ये तो आप थोड़ी सी हमें अगर डिटेल बताते। कुछ लोग क्या होता है फरहत के अपनी इनकम को सार्वजनिक रूप से बताते नहीं है, पर ये कार्यक्रम मुझे ऐसा है जैसे आप डॉक्टर के पास गए हैं तो आपको अपने थोड़ा सा उसके बारे में, हालत के बारे में बताना पड़ेगा, तभी डॉक्टर बता सकते हैं। तो मैं सभी श्रोताओं को ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा बजाय आप छुपाने के आप बताएं, जहां तक आप बता सकते हैं तो उससे हमें जवाब देने में और सुविधा हो जाएगी।
1: जी शरद जी, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइलिंग के लिए चाहिए होते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा फरहत आपने। देखिए ये जो 5 मैंने इनकम्स बताई थी, उन 5 इनकम से मान लीजिए आप सैलरी से कमाते हैं तो आपका एक फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर देता है वो होना चाहिए। इसके अलावा आजकल जरूरी हो गया आयकर में अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल देना, तो मुझे लग रहा है वो बैंक अकाउंट अपने तैयार रखने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई इनकम आपकी सीधी बैंक में आ जाती है। और दो चीज जो मैं जरूरी बताना चाहूंगा, एक फॉर्म 26AS होता है, मैंने उसका नया नाम रखा है, वैसे तो 26AS कहते हैं, मैंने उसका नाम रखा है 26 आमना सामना, क्योंकि आपका आमना सामना हो जाता है अपनी अपनी पूरी इनकम से, तो उसको जरूर चेक करें। और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम AIS कहते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन या एनुअल इनकम स्टेटमेंट होती है, उसका भी मैंने एक नाम रखा है, उसको मैंने लिखा आईना इसे समझिए, क्योंकि वो आपको दिखा देता है पूरा का पूरा कि आपने क्या क्या किया है साल भर में, कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई शेयर्स लिए हैं, कहीं और से आपकी इनकम आई है। तो ये दो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करने चाहिए। इसके अलावा आप सैलरी हैं तो आपका फॉर्म 16 होगा, बिजनेस है तो आपको एक बिजनेस का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए, कैपिटल गेन है आपने शेयर्स बेचे हैं प्रॉपर्टी बेची है उसका हिसाब किताब होना चाहिए, और आपने कोई किराए पे मकान दिया है तो किराएदार का पूरा पैन नंबर वगैरह होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट तैयार रखिए। ये सब अब देखिए इसमें जरूरी बात जो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि रिटर्न के साथ सारे कागजात दस्तावेज लगाने जरूरी नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप कागज अपने पास रखें ही ना, आपके पास कागज होने चाहिए, क्योंकि कल को आयकर विभाग आपसे पूछ सकता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन और ये फिक्र कहां से ली है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग भरपूर तैयारी में जुटे होंगे और वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करेंगे।
1: बिल्कुल। अच्छा राम जी, आप बैंकिंग क्षेत्र से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड और FD पर अगर TDS कटता है तो ITR इसमें कैसे दिखाएंगे?
3: देखिए कि वैसे तो एक आपका TDS जो है FD के ऊपर वो 40,000 रूपये तक अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपका नहीं कटेगा, और सीनियर सिटीजन तो 50 की लिमिट है, लेकिन उसके बाद जो TDS है वो ऑटोमेटिकल, जैसे कोहली जी ने बताया कि आपकी फॉर्म्स 26A में रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो आप उसके अंदर उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, तो उसके ऊपर जो टैक्स टोटल होगा उसमें से वो रिड्यूस हो जाएगा कि ऑलरेडी 10% कट चुका है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो 10% कटेगा, पैन नहीं है तो 20% बैंक काटते हैं।
1: जी, और अभी कौन श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, अमित झा। जी अमित जी।
4: हाँ नमस्कार।
1: नमस्कार
4: सर, कोहली सर को नमस्कार। सर
0: नमस्कार अमित जी। नमस्कार।
4: सर मार्केट मंत्रा टीम में आते हैं सर आप?
0: अच्छा अच्छा, जी जी जी।
4: हाँ सर, सर मेरा प्रश्न ये था, आज तो टैक्स रिलेटेड है, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि हमारी इनकम ना सर मतलब एक फिक्स नहीं है, जैसे हम कोई सरकारी एम्प्लॉय या गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है कि हमारी इतना सैलरी हो XYZ।
0: जी
4: तो सर, तो हमारी इनकम कोई मतलब एक फिक्स नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी महीने 20,000 हो गया, मान लीजिए किसी महीने 25,000 हो गया, एक आइडिया बता रहा हूँ।
0: जी
4: तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि टैक्स स्लैब में हम नहीं आते, जो सरकार निर्धारित करती है 5 लाख वाले स्लैब पहला 1, 2, 3 में अगर हम नहीं आते हैं तो क्या हम भी टैक्स भर सकते हैं सर? क्या मतलब किस आधार पर हम टैक्स भरेंगे सर?
0: धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल पूछा है फरहद, और ये सवाल बहुत सारे श्रोताओं के मन में होता है। और मैं अमित के इस सवाल के जवाब में एक आंकड़ा देना चाहूंगा जो बताएगा कि जो अमित ने पूछा है वो कैसे। करीब 8 करोड़ से ऊपर साल में रिटर्न्स फाइल होती हैं, पिछले साल का मैं डेटा दे रहा हूं, पर उसमें से जिन रिटर्न्स में टैक्स असल में जाता है उनकी गिनती 2.5-3 करोड़ के आसपास होती है। हालांकि इस साल का डेटा तो अभी जुलाई के बाद निकल कर आएगा और रिलेटेड रिटर्न्स भी उसमें काउंट की जाती हैं। तो देखिए अमित, अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल नहीं है तो एक तो होता है जो बेसिक एग्जेम्पशन स्लैब, जैसे मैंने बताया नए रिजीम में 4 लाख होता है, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख होता है। तो अगर आपकी उससे नीचे है फिर तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। परंतु अगर आपको जो 12 लाख रुपए तक का रिबेट मिलता है, अगर आप उस रिबेट के अंतर्गत आ रहे हैं और फिर आपके टैक्स नहीं आ रहा है तो फिर आपको फाइल करना चाहिए। या फिर आपका कोई टीडीएस कट गया है पर वैसे टैक्सेबल, मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट करी हुई है, डिविडेंड कहीं से आया उस पर टैक्स कट गया है और उसको आपको वापस लेना पड़ेगा बिकॉज आपका तो टैक्सेबल नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और रिटर्न फाइल जैसा फारद ने शुरू में बताया था कि आपको वीजा अप्लाई करना है, आपको कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, बहुत सारी जगह आयकर रिटर्न की जरूरत पड़ती है। तो बहुत से लोग मैंने देखा है कि उनको नहीं भी टैक्सेबल होता है तो फाइल कर देते हैं, पर टेक्निकली हम देखें तो उनको फिर जरूरी नहीं। आप जो बता रहे हैं हमें, अगर आपका 12 लाख रुपए से कम का है तो आप 4 लाख से ऊपर है, 12 लाख से कम है तो आप फाइल करिए, पर अगर 4 लाख से भी कम है तो फिर आप बेशक नॉन फाइलिंग केस कर सकते हैं, यानी ले सकते हैं ऑप्शन।
1: शरद जी, छूट की बात हो ही रही है तो हम लोग क्यों ना सीनियर सिटीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए आईटीआर में कोई छूट है क्या?
0: पहले हुआ करती थी किसी जमाने में, अब तो सीनियर सिटीजन को नॉर्मल सीनियर सिटीजन के लिए कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अलग होती हैं। और एक सीनियर सिटीजन के लिए यह होता है कि उनको जैसे एडवांस टैक्स पे करना होता है वो उनको नहीं करना होता अनलेस की वो बिजनेस इनकम है। कोई ऐसी विशेष सीनियर सिटीजन के लिए छूट नहीं है, कुछ स्पेशल डिडक्शन है जो सीनियर सिटीजन ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा जो सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ के हैं उनको बहुत जानकारी है आयकर के बारे में, और वो ज्यादातर सीनियर सिटीजन मैंने देखे कि वो स्वयं अपना रिटर्न कंपाइल करते हैं। और मैं तो आज शो के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा कि जितना मुश्किल आप इसको समझते हैं उतना मुश्किल ये है नहीं। और यही शायद आज आकाशवाणी में पब्लिक स्पीक का लक्ष्य भी है कि आपको आपके मन में कोई दुविधा है, कहीं आप फंस गए हैं, कहीं अटक गए, कुछ डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो आप दिल खोल के पूछिए और स्वतः इसको फाइल करें। ये जो सरलीकरण किया गया है पूरा, ये जो इसका सारा डिजिटल प्रोसेस किया गया, आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के आराम से फाइल कर सकते हैं। और बाकायदा रिटर्न का फॉर्म देखने में फरहद बहुत लंबा दिख सकता है।
1: ये बात एकदम सही कह रहे हैं, हर साल हम लोग भरते हैं लेकिन जब भरते हैं तब एक मन में एक संशय रहता, है, डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना कुछ गलती हो जाए।
0: जी,
1: तो
0: जी। उस और मैं उसी पे आ रहा था, तो जो फॉर्म है उसके नीचे बकायदा एक मैनुअल की तरह सब इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। सिर्फ ये कि कुछ लोग थोड़ा सा उसको पढ़ने में कई बार आलस कर जाते हैं या घबराते हैं कि पता नहीं हमारे समझ आएगा कि नहीं, पर आपको हैरानी होगी जान के कि बहुत ही आसान है। आप उसको खुद करके देखिए और आपको खुशी होगी, आपको एक सैटिस्फेक्शन फील होगा कि मैंने स्वयं किया। जी
1: जी। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, मकसूद हुसैन जी। मकसूद जी
5: नमस्कार। सर जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
5: जी, मैं मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से।
0: जी हुसैन साहब बताइए।
5: जी मेरा सवाल ये था, मेरा लड़का जनसेवा केंद्र चला था तो उस पर ना गांव के अंदर है जनसेवा केंद्र, तो उस पर जो है अंगूठे से जो है गांव के लोगों के जो है पैसे निकालता है
0: जी,
5: तो उसमें जो है कोई इनकम टैक्स लगेगा? इनकम टैक्स जो निकालने का जो है साल भर में 20-25 लाख तक पहुंच जाता है जी, अगर इनकम टैक्स उस पर लगता है तो हम क्या करें, वो भी उपाय बताएं सर जी।
0: नहीं, जनसेवा केंद्र से आपने बताया हुसैन साहब के वो पैसे निकालता है लोगों के अंगूठा लगा के, तो ये तो किसी और के पैसे निकालता है कि वो अपने लिए पैसे निकालता है? मुझे तो लगता है जैसे किसी और को मदद करता होगा तो इसके बदले में उनको हुसैन साहब कोई फी वगैरह मिलती होगी, तो जो इनके इसके बदले में उनको कॉम्पनसेशन मिलता है, फी मिलती है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो लोगों के पैसे वो 20-25 लाख रुपए साल के निकालते हैं अंगूठा लगा के, फरहद मैं ठीक समझ रहा हूं, तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, पर उसके बदले में आपको अगर कोई कमाई हो रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। तो आप हुसैन साहब या तो ये बताइए कि उनको आपके बेटे को कितनी कमाई हो रही है, ये लोगों के पैसे हैं आपके पैसे, पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हो पाया। तो अगर अगर आप दोबारा कॉल करें या जब भी जुड़ेंगे तो ये जरूर बताइएगा। जी
1: जी बिल्कुल। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान जी। रशीद जी
6: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
5: हाँ, मैं छतरपुर से मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं है
0: जी,
5: तो क्या 13 लाख हो जाए या 13,50,000 हो जाए या 12,80,000 हो जाए, एक सेंटेंस एक शब्द आता है मार्जिन रिलीफ,
0: जी
5: इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। दूसरा ये कि क्या न्यू रिज्यूम में सीनियर सिटीजन को बैंक इंटरेस्ट पर कोई छूट है या नहीं, प्लीज सर, थैंक यू।
0: अच्छा, तो सीनियर सिटीजन्स को पहले आपके मैं दूसरे वाले सवाल को लेता हूँ राशिद भाई, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स को आपने कहा बैंक इंटरेस्ट पे, तो एक सेक्शन पहले हुआ करता था 80TTB उसको कहते थे, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए जो रिबेट होता था वो 50,000 तक होता था। तो आप राशिद भाई, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं, ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि जो ओल्ड रिजीम है वहां पर डिडक्शंस मिलती हैं इंटरेस्ट की, पर अगर आप राशिद भाई न्यू रिजीम में जाते हैं तो फिर उसमें चाहे सीनियर सिटीजन हो या ना हो, कोई उसमें रिलीफ डिडक्शन उसमें अलाउड नहीं है। न्यू रिजीम को लाने का पर्पज ही यही है कि डिडक्शंस को हटा के आपके लिए जो स्लैब्स हैं उनको आसान बना दिया गया है। अब आपका पहला सवाल था कि 12,75,000 से थोड़ा भी ऊपर जाते हैं, जी हां, आपने बिल्कुल ठीक स्टडी किया, सुना, उसमें मार्जिनल रिलीफ मिलता है, उसमें प्रो रैटा कैलकुलेशन करी जाती है। ऐसा नहीं होता कि सीधा 12,75 से आप 5,000 भी ऊपर हुआ तो आपको पूरा का पूरा टैक्स देना पड़ेगा, उसका मार्जिनल रिलीफ, उसकी एक कैलकुलेशन है राशिद भाई। आपके जहन में जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है और वो उस रिलीफ को आप जरूर लीजिएगा, पर आपने बिल्कुल सटीक चीज पूछी है, बहुत बढ़िया चीज पूछी है फरहत इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ही होता
1: है। जी बिल्कुल। अच्छा राणा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और लोन लेना चाहता है तो क्या ITR के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है?
3: जी, ITR के लिए उसको अगर जो भी बिजनेस करना चाहता है तो उसको 10 नंबर चाहिए, पैन नंबर चाहिए, और बहुत सारे जैसे काम रहते हैं जिसके अंदर लाइसेंस चाहिए या कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए उसके लिए। तो इसलिए वो किस तरह का बिजनेस करना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आजकल GST भी जो है वो जरूरी हो गया। कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं तो व्यापार कर रहे हैं तो GST चाहिए, पैन नंबर चाहिए, ये दो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है।
0: मैं आपकी इजाजत हो फरहत, तो इसमें कुछ अश्विनी इजाजत दे तो मैं ऐड कर दूं। क्या होता है कि दिक्कत होती है जब कोई अपने नाम से काम शुरू करने जा रहा है तो बैंक वाले उसका अकाउंट ही नहीं खोलते हैं कि भाई हमें कोई प्रूफ चाहिए। तो ऐसे में एक हल निकला है, हल ये निकला है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एक होता है जिसके अंदर MSMEs को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को उद्यम कैटेगरी में लाके और वहां पर वो रजिस्ट्रेशन करा के, तो इसमें बैंक अकाउंट एक प्रूफ ऑफ एड्रेस एक रजिस्ट्रेशन बन जाता है। GST भी आपने बिल्कुल ठीक का, पर उसमें क्योंकि अगर आप मर्चेंडाइज में डील कर रहे हैं बड़े शहर में तो 40,00,000 रुपए तक का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए होता है, तो कुछ लोग उसमें रजिस्ट्रेशन GST शुरू में लेने में हिचकिचाते हैं जब छोटा काम होता है, जैसे जैसे काम बढ़ता है। तो बिल्कुल पैन नंबर का आपने ठीक बताया, पैन नंबर और उद्यम का रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं।
3: लेकिन बैंक वाले, आप कॉलेज बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बैंक में आप जाओगे करंट अकाउंट खोलने के लिए तो वो GST नंबर पहले कहेंगे, उनको ये समझाना और बताना वो मतलब बहुत ज्यादा एडमेंट होते हैं। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई इस लिमिट तक उसको GST की जरूरत नहीं है, लेकिन वो एक प्री कंडीशन बताते हैं।
0: बैंकिंग महकमे से आते हैं, मुझे लगता है आप बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता
1: लोगों से। हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका प्रश्न ले लेते हैं। नागपुर से NP सिंह जी।
6: सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
6: मेरा नाम NP सिंह है, मैंने एब्रीवेशन बताई थी नागपुर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
6: शरद जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली।
0: अच्छा, प्लेजर सर।
6: एज अ डॉक्टर आई नीड अ प्रिसाइज आंसर।
0: हाँ जी।
6: एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, दूसरा थोड़ा लेंथी है
0: जी।
6: पहला ये है कि स्क्रूटनी में किन लोगों की आती है अनियमितता को छोड़कर, लॉटरी सिस्टम होता है। दूसरा, आई एम सो सॉरी, अच्छा दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या फर्क है, मोटी मोटी बातें बता दें ताकि हम उसका ध्यान रखें।
0: अच्छा,
6: और कौन सी ऑप्शन बेटर
0: जी? आपने स्क्रूटनी का पूछा, क्योंकि कुछ श्रोता नए होंगे जिन्होंने ये शब्द नहीं सुना हुआ है। स्क्रूटनी का मतलब होता है, एक सिस्टम होता है इनकम टैक्स में, उसको हम कैस बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम, सिलेक्शन सिस्टम होता है। तो उसमें जो AI आजकल सॉफ्टवेयर आयकर विभाग यूज करता है, उसमें जिन लोगों की, मैं कुछ एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे जिन लोगों की आय सडनली एक साल में गिर जाती है, फरहद आप ध्यान दे रहे हैं, तो उनका फिर एकदम से वो उठा लेता है, या किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा लॉस किया है तो वो एकदम से ध्यान अपनी तरफ खींचता है। आपने कुछ और गलती, आप बार बार रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, ये भी तो ये कुछ ग्राउंड होते हैं। आपने शिक्षा बहुत रास की बात पूछी है, तो मैं कुछ कुछ आपका जिक्र कर रहा हूं। और दूसरा आपने पूछा ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम, देखिए ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम में फर्क ये, पहली बात तो दोनों रिजीम सभी टैक्स पेयर्स के लिए खुले हुए हैं, ये सभी श्रोताओं के काम की बात है। जो ओल्ड रिजीम है उसमें जब सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो वो उन लोगों के लिए जिनका डिडक्शंस को मिला के, डिडक्शंस को लेने के बाद टैक्स कम आता है, पर अब एक डेटा ये कहता है और मेरा अपना आकलन ये था कि करीब 75% टैक्स पेयर्स को अब न्यू रिजीम सूट कर रही है अब की बार, जो जैसा लोग बता रहे हैं। तो न्यू रिजीम उनके लिए जिनको डिडक्शंस नहीं लेनी है, कोई एग्जेम्पशंस नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिटर्न, कुछ बहुत थोड़ी सी डिडक्शन, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है एनपीएस उसको छोड़ के, बाकी सारी डिडक्शन न्यू रिजीम में हटा दी गई है। तो मैं सलाह ये दूंगा सिंह साहब आपको कि जो भी, और सभी को, कि जो भी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम इधर जाएं कि उधर जाएं कि दुविधा में फंसा हुआ है, उसके लिए आयकर पोर्टल पर ही एक कैलकुलेशन की ऑप्शन है कि आप अपने इनकम को ओल्ड रिजीम में डाल के देखें, न्यू रिजीम में डाल के देखें, जहां पर कम टैक्स आता है उसको आप चूज कर लें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि एक साल आपने ओल्ड रिजीम ली तो अगले साल आपको फिर हमेशा ओल्ड रिजीम ही लेनी है, आप स्विच भी कर सकते हैं। सिर्फ बिजनेस इनकम जिनकी है उनको यह सुविधा एक ही बार दी जाती है कि वो इस पाले से उस पाले में जा सकते हैं, पर बाकी की इनकम्स है तो हर साल आप ओल्ड और न्यू रिजीम के बीच में सिंह साहब चॉइस रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं मोटा लंबा डिस्कशन है और भी क्योंकि कॉलर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा क्रिस्प रहने की कोशिश करूं।
1: अश्विनी जी भी कुछ कहना चाहते हैं।
3: मैं कह रहा हूं कि भाई ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में, जैसे कोहली जी ने कहा कि ओल्ड रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस मिलती थी, तो उसके लिए लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे एलआईसी में है, एनएससी में है, एफडी है या इस तरह की, तो वो या पीपीएफ है, वो न्यू रिजीम में भी वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें, वो उसका बेनिफिट ना लें फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ लॉन्ग जो है वो एक आपके लिए अच्छी जरूरत है।
1: बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र और आयकर विभाग जो एक तरीके से जुड़ गया है आज, तो तीखी जो नोकझोंक है वो हम लोग कर रहे हैं। और एक और प्रश्न हम ले लेते हैं शिमला से राकेश जी का। जी राकेश जी।
7: जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला से बात कर रहा हूँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जो जो हमारे जो भारतीय नागरिक है विदेश में जाते हैं, लेकिन विदेश से जो है अपने परिवार को पैसा भेजता है, तो क्या वो भी क्या बोलते आयकर रिटर्न भर सकते हैं? और मेरा ये प्रश्न है।
0: देखिए राकेश जी, जो विदेश में नागरिक जाते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, तो वहां पर अगर कमाई है और अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इसमें आयकर विभाग में दो तीन कैटेगरीज दी हुई हैं, एक को हम एनआरआई कहते हैं, एक को हम रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं, और एक को हम रेजिडेंट बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहते हैं। तो इसमें कैटेगरी होती है, पर आपके सवाल से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये शख्स जो है भारत से बाहर ही रहते हैं पर वो पैसा अपने परिवार को यहां पर भेजते हैं, तो खाली पैसा भेजना राकेश जी टैक्स नहीं लगेगा उस पर। हाँ, उस पैसे को भेजने के बाद जिस भी परिवार मेंबर को वो इनकम मिली है उसको जब वो कहीं निवेश करेंगे उससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स देना पड़ेगा, पर उस व्यक्ति को जो एनआरआई है उसको केवल भारत में भेजने पर टैक्स नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि 180 दिन अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रह जाता है तो वो टेक्निकली फिर नॉन रेजिडेंट हो जाता है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कई सारी राकेश जी बारीकियां हैं कि मान लीजिए वो उसकी यहां पर भी इनकम है फरहद, वहां पर भी इनकम है, तो फिर दो देशों के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी होती है जिससे उसको डबल डबल टैक्स ना देना पड़े। पर आपने जो पूछा था मुझे लगता है मैंने उसका जवाब दे दिया है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न मेरे पास आया है व्हाट्सएप के माध्यम से। संजीव जी एनजीओ चलाते हैं और पिछले दो साल से उन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा है, लेकिन वो अब लॉस की वजह से एनजीओ को क्लोज करना चाहते हैं, तो जब वो क्लोज करेंगे तो क्या उनके लिए जो पिछला रिटर्न है वो मतलब भरना जरूरी हो जाएगा?
0: देखिए अगर तो एनजीओ रजिस्टर्ड है और सरकारी तरीके से रजिस्टर्ड है फिर तो भरना पड़ेगा, हो सकता है उनसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि एनजीओ फर्क दो तरीके के होते हैं। एक एनजीओ होते हैं जिन्होंने आयकर के अंतर्गत एग्जेम्पशन ली हुई होती है, क्योंकि एनजीओ आप मुनाफे के लिए तो काम करते नहीं है, आप तो जनसेवा के लिए करते हैं, तो उनको फिर कर के अंतर्गत एक अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करके एग्जेम्पशन लेनी पड़ती है। अगर उन्होंने ये ली हुई है फिर तो इनको फाइल करनी पड़ेगी, पर अगर वो आयकर में अनरजिस्टर्ड एनजीओ हैं तो फिर हो सकता है बिना उसके भी वो उसको रैप अप कर पाए। और मैं ये जानकारी दे दूं आपके सवाल से, एक बहुत जरूरी सवाल निकलता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं हमने तीन साल से फाइल ही नहीं करी, तो अब क्या होगा, क्या हम फाइल कर सकते हैं, गलती हो गई रह गई जाने में अनजाने में? तो उनके लिए आयकर में एक नया प्रावधान किया गया जिसको हम ITRU कहते हैं, ITR अपडेटेड। तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। उसमें शर्त यह है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी पिछले साल से, तीन साल की कर सकते हैं, पिछले साल से कम 25%, दो साल पुरानी तो 50%, तीन साल पुरानी तो 60% ज्यादा इनकम अगर आप डिक्लेयर करेंगे तब आपको सरकार यह इजाजत देगी कि आप पुरानी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वरना पुरानी रिटर्न फाइल नहीं होती है। और वो फिर कंपलसरी जब अगर ऐसी इनकम पकड़ी जाती है तो उसको फिर हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कैटेगरी में लाके उनको नोटिस वगैरह थोड़ी सी फिर मुसीबत का सबब बन जाता है।
1: शरद जी, प्रश्नों का दौर जारी है। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से, प्रकाश जी। जी प्रकाश जी।
8: भरत जी, आपको दोनों विशेषज्ञों को सहप्रेम नमस्कार। प्रकाश जांगड़ बोल रहा हूँ जयपुर के।
0: सर हमारा भी सब
1: प्रेम, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
8: सर सीधा सवाल मेरा राणा जी से है।
0: जी
8: राणा जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग आदमी है और वो अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, छोटा उद्योग जैसे कैपिटल उद्योग बोलते, तो उसमें बैंक में क्या सुविधा एक आम जन के और दिव्यांग के बीच में कोई फर्क है या क्या, थोड़ा सा इस पर स्पष्ट करें।
3: नहीं, वैसे मेरे हिसाब से दिव्यांग के लिए कोई ऐसी कोई अलग कैटेगरी नहीं है, लेकिन उनको वो सुविधाएं देते हैं, मतलब एडिशनल वो कुछ जो अगर लोन लेना चाहते हैं या इस तरह कोई भी व्यापार करना चाहते हैं उस तरह का उनको एक प्रायोरिटी दी जाती है बैंक के अंदर कि भाई वो उस कैटेगरी में लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई फैसिलिटीज मिलती हूँ एडिशनल वैसा कुछ नहीं है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है द्वारका से रमेश जी का। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक व्हाइल फाइलिंग आईटीआर दैट लीड टू इनकम टैक्स नोटिसेस।
0: हाँ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है। बहुत गलतियों की, कहते हैं सबसे आसान काम दुनिया का फर्ज होता है किसी की गलतियां निकालना। आपने तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया। देखिए, आपने पैन नंबर गलत डाल दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, आपने अपने सबसे बड़ी गलती होती है अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स गलत डाल दिया, तो वहां तो आपको रिफंड आना होगा, तो रिफंड ही आपका नहीं आएगा। इसके अलावा आपने इनकम गलत हेड में डाल दिया और आपने क्या किया, रिटर्न भरते टाइम वेरिफिकेशन नहीं किया। बहुत लंबी फेरिस्ट है गलतियों की, तो मैं आपको सलाह दूंगा अगर आपको लग रहा है कहीं आप गलती कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये महोदय ने सवाल पूछा है, तो हमसे आप एक बार फोन करके पूछ लीजिए जहां आपको अंदेशा हो रहा है कि मुझसे गलती हो, गलती की लिस्ट सारा इतनी लंबी है कि फिर बाकी का सारा समय हम गलतियां को बयान करने में चला जाएगा।
1: बिल्कुल नहीं, हम समय अपना
3: ऐड करूंगा इसमें कि कोई अगर ये अगर वो मैनुअल भर रहा है तो उसको समस्या आएगी, लेकिन अगर ऑनलाइन वो आजकल बहुत इजी है रिटर्न भरना, वो भरता है और कहीं गलती करता है तो उसकी सबमिट नहीं होती, अप्रूव नहीं होती।
0: नहीं, उसमें राणा जी ये होता है कि कुछ चीजें तो ऑटोमेटिकली ठीक करता है पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो नहीं भी ठीक करता,
3: नहीं ठीक करता और वो फिर वो उसको आपको अप्रूव या सबमिट नहीं करने देता।
0: नहीं नहीं, वो मान लीजिए मैंने फिगर ही अपनी गलत भर दी, इनकम
3: गलत है, लेकिन जैसे अकाउंट नंबर गलत है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उस गलती को वो बताता है कि ये नंबर जो है जाके आप,
0: काश ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं, पर उसमें बहुत सारी चीजें गलत चली जाती हैं और फिर वो 26 AS बिना देखे फाइल कर दिया, AIS बिना देखे फाइल कर। मैंने कहा ना गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी है,
1: ध्यान से भरिए अपनी हर एक चीज, डॉक्यूमेंट सही तरीके से रख के एक एक चीज डिटेल सही से डालिए तो शायद आप गलती करने से बच जाएंगे। और अब एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से, अक्षय कुमार जी। अक्षय जी
9: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार
9: सभी पैनल को नमस्ते।
0: नमस्कार
9: सर, पिछले साल जिस यूजर आईडी से ही होता है, जिस पासवर्ड से हम भरते हैं वो पासवर्ड इस बार जब हम भर रहे हैं तो इसमें दिख क्या रहा है कि ये पासवर्ड गलत है। मैं एक दो बार ट्राई किया तो लिख के आ गया कि आपका लॉक कर दिया गया,
0: तो
9: अनलॉक करने के लिए जब हम उसमें ट्राई करते हैं तो बोल रहे हैं आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है, जबकि मैं कई सालों से भर रहा हूँ, रेगुलर आईटीआर भरने वाला।
0: तो अक्षय जी इसमें ये कर सकते हैं आप, वैसे तो फॉरगॉट पासवर्ड का उसमें ऑप्शन होता है जैसे आम होता है, और आपका हो सकता है कि मोबाइल नंबर नहीं तो तुरंत मोबाइल पे ओटीपी आता है और उसके जरिए आप कर सकते हैं आप, क्योंकि आप फंस गए हैं यहाँ पर, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक सीपी ग्राम्स करके वेबसाइट है उसमें आप ये तुरंत कंप्लेंट डालें, और सीपीसी बैंगलोर है उसके फोन नंबर भी है, क्योंकि अब समय कम है, वैसे तो बहुत जल्दी उसकी सुनवाई होती है, तो सीपी ग्राम्स का एक ई निवारण के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए सीपी ग्राम्स में आप जाके डालें, अपना पैन नंबर दें, अपना नाम बताएं और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताएं, तो आपके ऊपर तुरंत कॉल आएगा। या मैं आपको सलाह दूंगा सीपीसी बैंगलोर में फोन नंबर उसका ऑनलाइन दिया हुआ है, आप निकाल के उसको फोन करें, क्योंकि ये तो आप फंस जाएंगे, समय कम है, 11 दिन बचे हैं, पता लगा कि इनका अक्षय जी का जो है मामला अटका रह गया तो हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर पेनल्टी लगे।
1: जी शरद जी, हमारे पास भी समय बहुत कम है तो इसीलिए हम लोग एक और लिसनर का जल्दी से प्रश्न ले लेते हैं। हरिद्वार से रवि जवालिया जी। जी रवि रवि जी।
10: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार
10: जी, मैं रवि जवाली हरिद्वार से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करो कोई बंदा मतलब इनकम टैक्स नहीं भर रहा है, तो वो 2-3 साल तक नहीं भर रहा है, तो उस पे क्या गवर्नमेंट क्या पनिशमेंट देगी? सर सर मैं इसकी जानना चाहता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
0: अरे अरे रवि जी, आप क्यों नहीं भर रहे हैं आप, पहले तो ये है, पर चलिए आपने पूछा है तो जवाब तो हमें देना पड़ेगा। बहुत तो उसमें सख्त पेनल्टी का प्रावधान होता है, उसमें आपके ऊपर टैक्स इवेजन का मतलब आपकी अगर 12 लाख से ऊपर है आप नहीं भर रहे हैं तो टैक्स इवेजन का शक आपके ऊपर बैठ जाएगा। पेनल्टीज बहुत भारी है। मैं पेनल्टीज बता के फरहद इनको डराना नहीं चाहता हूं, पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब जागे तब सवेरा, अब जितना हो गया सो हो गया, इस साल से आप फाइल करिए, और पिछले 2 सालों की भी आप रवि आप ITRU जिसका मैंने अभी जिक्र किया था ITR अपडेटेड फाइल कर सकते हैं। थोड़ा सा टैक्स फालतू जाएगा, कम से कम पेनल्टी से आप अपने आप को बचा पाएंगे।
1: और अब थोड़ा सा समय बचा है तो हम आप दोनों मेहमानों से चाहेंगे कि अपने श्रोताओं से एक अपील आप करें।
0: बस मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि पहली तो मैंने जो बोला उसको दोहराना चाहूंगा कि खुद फाइल करने की कोशिश करें और समय पर फाइल करें, सारे अपने कागजात अपने सामने रख के फाइल करें, और कोई भी इन्फॉर्मेशन देने से पहले एक दफे उसको दोबारा चेक कर लें, और सबसे जरूरी बात 26AS और AIS को एक दफे वेरीफाई कर लें। ऐसा तो नहीं वहां कोई एंट्री है जो आप नहीं दिखा रहे हैं, या कई बार AIS में फर्क ऐसी एंट्री आ जाती है जो आपकी होती नहीं है, किसी ने पैन नंबर गलत डाल दिया किसी और के, तो वहां पर फीडबैक का ऑप्शन होता है। तो 26AS और AIS को बिल्कुल ना भूलें। और एक जरूरी बात जल्दी से बता दूं, ऑटो फिल्ड रिटर्न्स आ रही हैं आजकल अपने आप भरी हुई, उसमें आप उस पर आंख बंद करके यकीन मत करिए, एक दफे उस इन्फॉर्मेशन को चेक जरूर कर लें।
1: बिल्कुल अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
3: जी बिल्कुल, और इसको हम इग्नोर नहीं करें और वेट नहीं करेंगे, 31 जुलाई के बाद एक्सटेंड होगा, यानी डेट एक्सटेंड होगी। डेट एक्सटेंड हो ना हो, आप 31 जुलाई लास्ट डेट मान के जो है रिटर्न भरिए।
1: जी, और अगर कोई सवाल हो तो आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी दोनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप स्टूडियो में मौजूद रहे और हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब।
0: शुक्रिया।
1: और इसके साथ ही मुझे भी दीजिए इजाजत। और हमने सीखा आज की ITR सिर्फ टैक्स का कागज नहीं है, ये आपकी आर्थिक पहचान भी है, तो जरूर भरें, टाइम से भरें। और इसके साथ ही फरहत नाज को दीजिए कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी है।

विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। ये मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति का गठन 2 सप्ताह के भीतर किया जाए और गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। अदालत ने समिति को केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बोझ साझा करने के तरीके और व्यवस्था की सिफारिशें करने का निर्देश भी दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं, जबकि पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani. The news read by Anuja Kumar. Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both Houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to six former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
1: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed seven adjournments, while the Rajya Sabha was adjourned six times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the Houses were also not taken up. Amid opposition uproar in the lower house, Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In the Rajya Sabha, when the proceedings began at 11 a.m., nine newly elected and re-elected members took oath as members of the upper house. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
0: Union Minister Jagat Prakash Nadda today met the representatives of the protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government this morning. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation, and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. President Draupadi Murmu today called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for the Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart Maia Sandu held delegation-level talks. President Murmu also paid floral tributes at the monument of Stefan Cel Marici Sfant in Chisinau. This is the first ever visit by an Indian president to Moldova. President is on a three-nation state visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In Jammu and Kashmir, four more people lost their lives in rain-related incidents across the Jammu division today, taking the death toll to 16 in the past 2 days. At least seven people are still missing as heavy rains continue to hamper rescue operations in flood-affected Rajouri and Pooch district. Chief Minister Umar Abdullah has announced an ex-gratia relief of 6 lakh rupees for the next of kin of each person who lost their life in rain-related incidents in Rajouri and Pooch districts. Meanwhile, Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha reviewed the situation following heavy rains, flash floods and landslides in several districts of the Union Territory. The IMD has issued a red colour warning for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh during the next 2 days. Similar weather conditions will prevail over Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal and parts of Northeast India during the next 2 to 3 days. Supreme Court today directed the Union Government to constitute a committee within 2 weeks to frame uniform guidelines governing the post-retirement facilities to be extended to retired Chief Justices and Judges of the High Courts across the country. A bench led by Chief Justice of India, Surya Kant, directed that the committee shall be constituted in 2 weeks and submitted its recommendations to both the Union Government and the Supreme Court within 3 months of its constitution. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी को सशक्त बनाने का आह्वान किया। उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ वार्ता की। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता एंड्री बर्नहैम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हुए जहाज एमवी गोल्डन लियो पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल की जान खतरे में डालना और समुद्री आवाजाही तथा व्यापार में बाधा डालना निंदनीय है। मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। भारत सरकार ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायल भारतीय के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की अपार संभावनाएं हैं।
3: आई एम ग्रेटली एनकरेज्ड बाय द ग्रोइंग कोऑपरेशन। देयर इज इमेंस पोटेंशियल फॉर कोलैबोरेशन अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स सच एज डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांसमेंट एट मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी। इंडियन कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ मोल्दोवा इन एनर्जी सेक्टर इंक्लूडिंग सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, स्मार्ट ग्रिड्स, ग्रीन हाइड्रोजन।
2: मोल्दोवा की राजधानी किशिनाव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक सहयोग को नई दिशा देगा।
3: इंडिया ऑल्सो ऑफर्स गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर मोल्दोवान कंपनीज फॉर ट्रेड एंड बिजनेस। वी रिमेन कमिटेड टू फॉस्टरिंग ए ट्रांसपेरेंट, प्रेडिक्टेबल एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली बिजनेस एनवायरमेंट। I invite Moldovan businesses to come and explore India. I also encourage Indian businesses to look at the opportunities in India. Your enterprise, vision and commitment will be instrumental in building enduring.
2: सैंडू ने आज व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, नवीकरणीय
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब पेश है प्रोग्राम मन भावन।

कार्यक्रम मन भवन के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का गीत गजल फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर के बोल है, मदन मोहन का संगीत है। सुनना चाहते हैं आप सब। गाजीपुर से अवधेश रॉय, प्रीति रॉय, नवनीत रॉय। गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल रॉय। बलिया से ओम प्रकाश, उषा और अमित कुमार और हैप्पी रॉय इसी गीत को पसंद करते हैं। जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहब बाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कार्तिक, युवराज। मालेगांव से सुनीता बाई घायल, सानिका और गजानन घायल। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, रशिका और रॉबिन। उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर। गोहद से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु मुबारक बारे, विलास मनोहर और तैमूर बारे। रावेर से अरशद तड़वी, आरिश, अरसलान, यूनुस। गोहद से ही मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना मुबारक परवेज, बिटिया रोजमीन और तैमूर तड़वी। अपनी पसंद का पहला गीत सुनिए गजल फिल्म से।

कार्यक्रम मन भवन इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लेते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। तीसरी मंजिल फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया आर डी बर्मन ने। सुनना चाहते हैं आप सब पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयदेव और मीका विरक। सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश सुनीता मुस्कान, जीतेन धर्मेंद्र मालाकार। रतलाम से बलवंत वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। झुमरी तलैया से छकुली इंगोले, देव इंगोले, छोटू दादा इंगोले, पेंटर रामचंद्र इंगोले, महेंद्र चौरसिया। हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम, रोहित सोनू मोनू ठोके। महाराष्ट्र से टेलर रामचंद्र, सिद्धांत इंगोले, टिंकू रमाबाई, मयूरी सुरभि, मंजूषा, गौतम।

गौतम, नामदेव, मास्टर विलास, शिंदे पाटिल और सुनील जबड़े। इसी गीत को पसंद किया मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। बीजलपुर से मोहनलाल, ललिता चौहान, प्रियंका, वर्णिका, पंकज, सोनू, राहुल, गुंजन, मुस्कान, अदव्या, अंकित, सलोनी, लड्डू, कान्हा और ऋषु चौहान। कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, ब्रजकांत, वीरेंद्र बेमेतरा से। इंदौर से इस गीत को पसंद करते हैं प्रमेंद्र कुशवा, कैलाश कुशवा, रमेश, कामिनी, मंजू, राम कुमार और मास्टर उत्तम श्रीवास्तव। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। तो लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की पसंद पर पेश है, तीसरी मंजिल फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रवि गरुड़ का बांसुरी वादन। आइए इनसे पहले सुनते हैं राग हंसध्वनि। संगीतकार तबले पर उल्हास राजहंस।

अभी आप सुन रहे थे बांसुरी पर बजाया राग हंसा ध्वनि, और लीजिए अब सुनिए राग पूरिया कल्याण, संगतकार तबले पर दिनेश शुक्ला।

अभी आप सुन रहे थे बांसुरी पर बजाया राग पूरिया कल्याण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रवि गरुड़ का बांसुरी वादन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्चस्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note today. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Amir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Our correspondent has the details.
4: The proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted due to the repeated adjournments following opposition sloganeering on the NEET paper leak case and other issues. The Lok Sabha witnessed 7 adjournments while the Rajya Sabha was adjourned 6 times due to the opposition protest. Due to the disruptions, question hour in both the Houses were also not taken up. Amid opposition uproar in the lower house, Union Minister for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In the Rajya Sabha, when the proceedings began at 11 a.m., 9 newly elected and re-elected members took oath as members of the upper house. Anand Kumar, Akashwadi News, Delhi.
3: Union Minister Jagat Prakash Nadda today met the representatives of protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government this morning. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. Mr. Nadda urged all the protesters to end their sit-in and assist the administration in restoring normalcy. President Draupadi Murmu today called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau today, referring to the vision of Viksit Bharat 2047. President Murmu said India seeks partnerships based on trust and shared prosperity, while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart Maya Sandu held delegation-level talks. President Murmu also paid floral tributes at the monument of Ștefan cel Mare și Sfânt in Chișinău. This is the first ever visit by an Indian president to Moldova. President is on a 3-nation state visit to Moldova, North Macedonia and Romania. In the United Kingdom, newly elected leader of the Labour Party, Andy Burnham, has took charge as country's new Prime Minister. King Charles III invited the 56-year-old mayor of Greater Manchester to form a new government following the resignation of Keir Starmer. In his inaugural speech at 10 Downing Street, Mr. Burnham said he will make politics more about problem solving.